सुप्रभात। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई सन 2026। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो के घड़ी में इस समय सुबह के ठीक 5:48 और 30 सेकंड हो रहे हैं। हम हाजिर हैं आपकी सेवा में पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, साथ ही साथ मननशील प्राणी भी। यूं तो संसार में बहुत से शक्तिशाली प्राणी मौजूद हैं, परंतु प्रकृति ने अपनी रचनाओं में से सिर्फ मनुष्य को ही कई गुणों से विभूषित किया है, जैसे मानवता, क्षमा, दया, सहनशीलता, विवेक, धैर्य इत्यादि। प्रकृति प्रदत्त अनेक गुणों में धैर्य एक ऐसा गुण है जिससे व्यक्ति अपने जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी संतुलन बनाए रखता है। संसार में रहते हुए जीवन में विपरीत परिस्थितियां अथवा आपत्तियां आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये हमारे विवेक और पुरुषार्थ को चुनौती देने ही आती हैं, परंतु जिनके पास धैर्य होता है वही चुनौतियों का सामना कर पाते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी महानता का कारण धैर्य ही है। धैर्य जीवन की वह कुंजी है जो सफलता के ताले खोलकर मंजिल तक पहुंचाती है, या यूं कहें कि धैर्य मानव जीवन की यात्रा के रथ का सच्चा सारथी है। वर्तमान समय के भौतिकवादी युग में आज का मानव है आधा अधूरा, परंतु उसे हर चीज पूर्ण चाहिए। किसी से भी आप मिले वह तन से तो आधा आपके सामने होता है, परंतु मन बुद्धि से आधा कहीं और होता है। वह आधा खुश दिखता है, आधा बेचैन। वह आज का काम आधा करता है, आधा काम छोड़ता है कल पर। जिसे देखो वो अधीर हो बैठा अपने और दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी करता रहता है। व्यक्ति के जीवन में समय और परिस्थितियां तो हमेशा एक जैसी नहीं होती। जीवन में कभी अच्छा समय भी आता है तो कभी बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। अवांछित परिस्थितियों से गुजरते भिन्न भिन्न मतों के व्यक्तियों संवाद

0: संबंध और संपर्क में आने से प्रतिकूल स्वभाव, संस्कार, व्यवहार को देखकर अक्सर मन बेचैन हो जाता है। परंतु यदि व्यक्ति में धैर्य होता है तो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण कर इन परिस्थितियों को सहजता से अपने अनुकूल बना लेता है। व्यक्ति को जीवन कुछ इस तरह से जीना चाहिए कि जब वक्त अनुकूल हो तो आप कभी गुरूर न करें, मगर जब वक्त आपके विपरीत हो तो आप धैर्य न खोएं। धैर्य तो प्रकृति की दी हुई वो सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न तो किसी के कदमों में और न ही किसी की नजरों से। यह धैर्य व्यक्ति की सहनशीलता की ऐसी अवस्था है जो मनुष्य को अधीर होने से बचाती है। धैर्य का मतलब हाथ पर हाथ धरे बैठना नहीं है, बल्कि बार बार असफल होने पर भी सफलता के लिए सदा प्रयासरत रहना है। जो व्यक्ति धैर्यवान होता है वही लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। प्रकृति भी हमें कई माध्यम से धैर्य का पाठ पढ़ाती है। जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में भी संघर्षों और कठिनाइयों के बाद ही नए अवसर प्राप्त होते हैं। एक नन्ही सी चींटी भी 10 में से 9 बार असफल होने के बाद भी दाना लेकर अपने बिल तक पहुँच ही जाती है। युद्ध में परास्त होने के बाद एक गुफा में छिपे राजा को एक मकड़ी ने धैर्य का पाठ पढ़ाया। गुफा की दीवार पर नीचे से ऊपर चढ़ने के क्रम में कई बार फिसल कर गिर जाने के असफल प्रयास के बाद भी मकड़ी अंततः ऊपर चढ़ने में सफल हो ही जाती है। धैर्य व्यक्ति को जीवन में अनुशासित भी बनाता है। यह हमारे अंदर सकारात्मक विचार उत्पन्न कर सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। धैर्य हमारे आत्मविश्वास को जगाता है और उसे सुदृढ़ बनाता है। यह हमारे जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां होते हुए भी उसे महसूस होने नहीं देता, मन को शांति प्रदान करता है। धैर्य व्यक्ति को अनुभवी भी बनाता है, हमें आगे सोचने के लिए सदैव प्रेरित भी करता है। जिस व्यक्ति में धैर्य की शक्ति होती है वह व्यक्ति अभाव से प्रभाव तक का सफर आसानी से तय कर लेता है। कई बार व्यक्ति तुरंत लाभ के लिए जीवन के नैतिक मूल्यों को दांव पर लगाने से परहेज नहीं करता, परंतु धैर्य ऐसे नकारात्मक विचारों का दमन कर व्यक्ति को सत्य की राह दिखाता है और सत्कर्म के मार्ग पर ले जाता है। हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों को संरक्षित रखने में भी धैर्य का महत्वपूर्ण योगदान है। हमें अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल करने के लिए धैर्य का होना अति आवश्यक है। संत कबीर दास जी ने अपने इस दोहे में धैर्य की व्याख्या बहुत ही सुंदर शब्दों में की है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचत सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। अधीरता का निर्माता हम खुद हैं। अब ये हम पर निर्भर है कि जैसे हमने अधीर होने की आदत डाली है, वैसे हम धैर्य रखने की आदत भी तो डाल सकते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, धैर्य से कोई बैर नहीं, जीवन में इसके बिना किसी की खैर नहीं। जीवन यात्रा में भ्रमण करना है तो यह समझ लीजिए कि धैर्य के बिना कोई सैर नहीं। जागिए, जीवन में इस गुण को जागृत कर लीजिए, क्योंकि धैर्य के बिना जीवन में कोई भोर नहीं।
1: ये था आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कृषि सूचनाएं, विषय है रजनीगंधा की खेती।
2: किसान भाइयों नमस्कार। रजनीगंधा की खेती आकर्षक और खुशबूदार फूलों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। इसके फूल सफेद रंग के होते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं। इसके फूलों का उपयोग गजरा बनाने, पूजा करने, शादी आदि में सजावट के लिए किया जाता है। इसकी भंडारण क्षमता भी काफ़ी अच्छी होती है, साथ ही औषधीय मूल्य भी इसका अच्छा है। इसके फूलों का उपयोग करके आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई जाती हैं। इनके फूलों से खुशबूदार तेल भी निकालते हैं, जिनका विभिन्न औद्योगिक उपयोग है। इसके तेल को इत्र और परफ्यूम बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके डंठल युक्त फूल को गुलदस्ता बनाने में उपयोग किया जाता है। इस फूल की खेती मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में की जाती है, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर अब बिहार में भी इसकी खेती होने लगी है। इसकी खेती से आमदनी ज़्यादा है, इसलिए किसान भाई इसकी खेती करें तो ज़्यादा लाभ होगा। इसकी खेती बलुई दोमट मिट्टी में की जाती है और इसके लिए जो उपयुक्त तापक्रम है वो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम और न्यूनतम 15 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये तापक्रम हम लोगों के यहाँ बिहार में भी होता है, तो इसकी खेती यहाँ पर ठीक ढंग से की जा सकती है। इसके फूलों को अच्छी तरह से खिलने के लिए पर्याप्त सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी खेती करने के लिए खुले जगह का चुनाव करना जरूरी होता है।

0: अब इसके किस्मों के बारे में आप जान लें तो ये कहरी श्रेणी की जो उन्नत किस्में हैं वो है रजत रेखा और प्रज्वल। दोहरी श्रेणी वाली किस्में जो हैं वो है स्वर्ण रेखा, सुवासिनी, और संकरण कर भी कुछ किस्में तैयार की गई हैं जिनमें वैभव जो है वो प्रमुख है। रजनीगंधा की खेती के लिए सभी प्रकार की मिट्टियों को का आप चयन कर सकते हैं, लेकिन बलुई दोमट और दोमट मटियार मिट्टी अच्छी रहती है जिसमें जल निकास की अच्छी सुविधा हो। अच्छी उपजाऊ जमीन में फूलों की मात्रा अधिक होती है। हल्की अम्लीय से क्षारीय भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच हो। जहाँ तक बात आती है खेत की तैयारी की तो इसके लिए एक बार जो है गहरी जुताई करें, इसके बाद नष्ट हुई फसल के अवशेषों को खेत से निकाल दें, खेत की सफाई कर दें और उसके बाद खेत में गोबर की खाद डाल करके ठीक ढंग से मिला लें और प्रत्येक जुताई के बाद जो है वो पाटा चलाना नहीं भूलें, क्योंकि पाटा चलाने से जो है ठीक ढंग से आप रोपण कर सकते हैं। रोपण के लिए 1.5 सेंटीमीटर व्यास के समान आकार के कंदों का उपयोग किया जाता है। कंदों को रोपने से पहले फफूंदनाशी दवा से उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बाद बीजों की रोपाई पैदावार प्राप्त करने के तरीके पर निर्भर करती है। यदि पौधों से तेल प्राप्त करने के लिए आप खेती कर रहे हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधों से पौधों की दूरी 15 सेंटीमीटर रखते हैं। फूल के लिए उगाने पर पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। एक एकड़ खेत में तकरीबन 1 लाख पौधों को लगाया जा सकता है। तो जाहिर है कि जब इतने पौधे लगेंगे तो ज़्यादा फूल भी मिलेंगे और ज़्यादा फूल मिलने के बाद जो है ज़्यादा आपको आमदनी भी होगी। कुछ खाद तथा उर्वरक भी डालने होते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया कि पहले आप सड़ी हुई गोबर की खाद 20 टन 1 हेक्टेयर खेत में डालें, उसके बाद 120 किलोग्राम नेत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर तत्व के रूप में देना चाहिए। देने का तरीका वही है कि पहले आधी मात्रा में नत्रजन वाले और फास्फोरस वाले उर्वरक डालें, उसके बाद से आधी मात्रा बाद में डालें। पर्याप्त नमी की आवश्यकता होती है इसके पौधों के लिए, इसलिए सिंचाई का आप विशेष प्रबंध रखें। शरद ऋतु में कम सिंचाई यानी कि 8 से 10 दिनों के अंतराल पर, और ज्यों ज्यों गर्मी बढ़ती है तो उसमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्रति सप्ताह या 3 या 4 दिनों के बाद जो है पानी देने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आप रजनीगंधा की खेती करें और लाभ उठाएं।
1: कृषि सूचनाएं कार्यक्रम में अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे रजनीगंधा की खेती कैसे करें, जानकारी दे रहे थे श्रीनिवास सहाय। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है, सुबह के 6 बजने को है और ये समय है हिंदी में समाचार का। इसे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
3: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
2: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है।

0: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया, जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं देश वंदना से।

आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में आगे प्रस्तुत है कुछ भजन। श्रद्धा का अर्थ है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का अर्थ है ईश्वर में विश्वास। और विश्वास में इतनी शक्ति है कि इससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है।

इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए रामचरितमानस से पाठ। मुख्य स्वर है रविंद्र साठे का।

रहा है। सच ही तो है कि कभी कभी सीधापन भी भ्रामक होता है, तभी तो लोग टेढ़े लोगों की वंदना करते हैं। किंतु प्रकट रूप में राम ने परशुराम के कुठार के आगे अपना सिर झुका दिया। बोले, स्वामी, जिस प्रकार भी आपका क्रोध शांत हो, आप वही कीजिए। भला स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? सच तो यह है कि मुनिवर का वीरों का सा वेश देखकर लक्ष्मण ने कुछ कह डाला। वैसे वास्तव में दोष लक्ष्मण का भी नहीं, उसने उनका नाम तो सुना था किंतु पहचानने में भूल हो गई। यदि वो मुनि के वेश में आते तो लक्ष्मण ने उनकी चरण धूली ले ली होती।

श्री राम के विनय भरे मधुर वचन सुनकर भी ऋषि परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शिव का धनुष तोड़ने का अपराधी होकर भी वो उन्हें ही ज्ञान सिखा रहे हैं। उनकी ये धारणा भी पक्की हो गई कि राम की सहमति से ही उनका छोटा भाई कटु वचन बोल रहा है। श्री राम ने मन ही मन में सोचा कि दोष तो लक्ष्मण का है और मुनि का क्रोध अब उनकी ओर बढ़ रहा है।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस से पाठ। लीजिए सुनिए स्वास्थ्य सूचनाएं, विषय है बढ़ी हुई धड़कन और कारण। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अनूप सिंह।
1: श्रोता और स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप सिंह जो कि इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान में हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। और डॉक्टर साहब से आज हम जानेंगे बढ़ी हुई धड़कन, कारण और उपचार। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, हमारे श्रोताओं के बीच।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब, ये धड़कन तो हम जानते हैं कि नॉर्मल जो हमारा हार्ट बीट होता है उसको हम धड़कन कहते हैं, बढ़ी हुई धड़कन कौन सी स्थिति होती है?
2: एक्चुअली जो हमारा रेगुलर जो धड़कन की गति होती है 72 से 80 के बीच में एवरी मिनट ये धड़कता है, हमारा दिल जो धड़कता है उसी को धड़कन बोलते हैं, इंग्लिश में इसे हार्ट बीट बोलते हैं। तो नॉर्मली हम जो कोई भी काम करते हैं, चलते हैं, कुछ भी

0: स्पोर्ट्स वगैरह में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं
1: हाँ
0: तो धड़कन बढ़ती है। धड़कन बढ़ने से होता क्या है, जब धड़कन हार्ट जब सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है,
1: हाँ
0: तो जितनी आप एक्टिविटी को बढ़ाएंगे उतनी बार वो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
1: हाँ
0: धड़केगा।
1: हाँ
0: तो जब आप कोई काम करते हैं तो उस समय आपको ब्लड सप्लाई शरीर में रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा होती है।
1: हाँ हाँ
0: यदि हार्ट बीट या धड़कन यदि नहीं बढ़े तो फिर आपको थकान सी महसूस होगी। तो एक नेचुरल प्रोसेस है
1: जी
0: कि धड़कन, जब भी आप कोई काम करेंगी तो धड़कन बढ़ेगा, शरीर का रिक्वायरमेंट है क्योंकि उस
1: हाँ
0: रेशियो में ब्लड सप्लाई ज़रूरी है। लेकिन रेस्टिंग के समय जब कोई आप काम नहीं करते हैं तो फिर धड़कन 72 से 80 के बीच में नॉर्मल होना चाहिए।
1: हाँ
0: और यदि रेस्टिंग में यदि आपका धड़कन 100 से ज़्यादा होता है तो ये एबनॉर्मल माना जाता है।
1: जी
0: जैसे हम लोग दिन में काम करते हैं, रात में सो जाते हैं, हमारे बॉडी को रेस्ट चाहिए,
1: हाँ
0: उसी तरह हार्ट को भी रेस्ट चाहिए। लेकिन हार्ट ऐसा ऑर्गेन है हमारे शरीर का जो कि 24 आवर्स धड़कते रहता है, सालों भर जब तक आप जीवित हैं धड़कते रहता है, बंद होगा तो हम भी बंद हो जाएंगे।
1: जी
0: तो एटलीस्ट हम इतना कर सकते हैं कि उसकी धड़कन को एक मिनिमम रखें ताकि उसे भी रेस्ट आए। इसीलिए हमारा जो बॉडी होता है इस तरह से हैबिचुएटेड रहता है कि जब हम लोग रेस्ट करते हैं, शरीर की रिक्वायरमेंट, ब्लड ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होती है, तो ऑटोमेटिक धड़कन नेचुरल 72 और 80 के बीच में नॉर्मल ये सेट रहता है।
1: हाँ
0: लेकिन यदि आप रेस्टिंग में यदि 100 के ऊपर जाए तो समझिए कि अब नॉर्मल है,
1: जी
0: और 60 के नीचे जाए तब अब नॉर्मल है, और इससे थोड़ा बहुत वेरिएशन 10, 5, 15 ऊपर नीचे हो सकता है।
1: हाँ
0: तो धड़कन बढ़ने का बहुत सा कारण है। यदि कोई कारण नहीं मिलता है तो उस धड़कन के रेट को, जो धड़कन की गति को कम करने के लिए हमें दवा लेने की ज़रूरत होती है। और जो हार्ट रेट जो बढ़ता है, धड़कन जो बढ़ती है, उसके
1: हाँ
0: बहुत सा कारण होते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसका रीज़न है वो है एंजाइटी, स्ट्रेस। जब कभी आप स्ट्रेस दीजिएगा धड़कन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, ये सब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल बोलते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। बट जो अननेचुरल है, जो हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं है हेल्थ पॉइंट व्यू से, स्ट्रेस जो रीज़न है, एनजाइटी, या फिर एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ कॉफ़ी, यदि आप ज़्यादा कॉफ़ी चाय वगैरह पीते हैं, या कोई भी स्टूमुलेंट लाइक कोक, स्मोकिंग, ये सब हमारे हार्ट रेट को, जो बेस लाइन हार्ट रेट है जो रेस्टिंग में होना चाहिए, उसको बढ़ा देते हैं, जो कि अच्छा नहीं है।
1: जी डॉक्टर साहब, कब आप कहते हैं कि ये बढ़ी हुई धड़कन जो है अब इसको इलाज की जरूरत है?
0: यदि रेस्टिंग हार्ट रेट कॉन्स्टेंटली 100 से ऊपर रहती है तो उसका इलाज करना जरूरी है, क्योंकि ये अब नॉर्मल है,
1: मतलब
0: विदाउट
1: उस अवस्था में आपको डॉक्टर के पास जाना
0: जाना
1: चाहिए।
0: चाहिए, और उस धड़कन को कम करने के लिए दवा आपको लेना जरूरी होता है।
1: जी, कैसे उपचारित होती है ये समस्या?
0: ये क्या होता है कि हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है, हमारे शरीर में एक सिस्टम होता है
1: जी
0: जिसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं।
1: हाँ
0: वो हमारे शरीर में एक्साइटमेंट लाता है। तो ये जो भी कैफीन, स्ट्रेस, एंजाइटी जब होता है ना, वो थोड़ा सा एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। हमारे हार्ट के भीतर एक छोटा सा नर्वस सिस्टम होता है,
1: हाँ
0: तो उससे फायरिंग ज़्यादा होती है तो हार्ट बीट वो बढ़ जाता है। तो हम लोग ऐसा ड्रग यूज़ करते हैं जो सिस्टम को थोड़ा सप्रेस करे, बैलेंस करे, डोज एडजस्ट करके हम लोग उसी रेशियो में दवा देते हैं ताकि उनका जो हार्ट रेट हो इस लेवल में बैलेंस हो सके।
1: जी श्रोता, हम बात कर रहे थे डॉक्टर अनूप सिंह से, विषय था बढ़ी हुई धड़कन, कारण और उपचार। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इस विषय पर हमें इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: स्वास्थ्य सूचनाएं कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बढ़ी हुई धड़कन, कारण और उपचार, इस विषय पर डॉक्टर अनूप सिंह से अजीता चौबे की बातचीत। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, आपको बता दें, आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हाल चाल। सुबह 7:25 पर प्रस्तुत करेंगे शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राजेंद्र कुमार सेजुवार से शास्त्रीय गायन राग अहिर भैरव।

दोपहर 12 बजे का समय है। कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत का। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे संस्कार गीत की पहली कड़ी। ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घरनी का प्रसारण होगा दोपहर 12:30 पर।

युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होगा शाम 4:30 पर। विविध खेलों पर आधारित कार्यक्रम खेल परिक्रमा आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल प्रस्तुत करेंगे शाम 6:30 पर। और खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं शाम 7:00।

0: रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में रूपम किशोर की आवाज में चंद गजल, और रात्रि 10 से 11 तक आप पुनः आनंद उठा सकते हैं फिल्मी गानों का फिल्म संगीत के कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, ये थे आकाशवाणी पटना से आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी पटना से बोल रहे हैं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, इसे दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्य वर्षस्य राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी इत्यस्याः आयोजने प्रश्नपत्रम् अनधिकृतरीत्या बहिरागमन विषयमालक्ष्य प्रकरणं पञ्जीकृतम्। शिक्षा मन्त्रालयस्य उच्च शिक्षा विभागात् प्राप्तस्य लिखित परिवादस्य आधारे संस्थया एतत् प्रकरणं पञ्जीकृतम्। संस्थया संसूचितं यत् विशेषाणां केन्द्रीयावेषणाभिकरणदलानां निर्माणं जातं, तथा प्रकरणम् अन्वेषणार्थं विभिन्नेषु स्थानेषु एतानि दलानि प्रेषितानि सन्ति। एषा नीट परीक्षा अस्य मासस्य तृतीय दिनांके राष्ट्रिय परीक्षण संस्थया आयोजिता आसीत्। नवदिल्ल्यां नीट परीक्षायाः निरस्तीकरण विषये वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् राष्ट्रिय परीक्षण संस्थायाः महानिदेशकः अभिषेक सिंहः अवदत् यत् राष्ट्रिय परीक्षण संस्था छात्रेभ्यः पुनः परीक्षाम् आयोजयिष्यति, सा च परीक्षा निष्पक्षरूपेण भविष्यति, पुनः परीक्षायै अतिरिक्त शुल्कं न भविष्यति इति। भारतं श्वः आरभ्य ब्रिक्स विदेशमन्त्रिणाम् उपवेशनस्य आतिथ्यं करिष्यति। अद्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः करिष्यति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संसूचयन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् उपवेशनावधौ ब्रिक्स

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़कम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवीके सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना। अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच कराने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को

0: देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान दौरे पर रहेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के अल्पकालीन अनुमानों और चौथी तिमाही के अनुमान जारी करने की तिथि संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दी है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि 7 जून को अवकाश होने पर अंतिम अनुमान पिछले कार्य वर्ष पर जारी किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये बदलाव आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में है। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। फलौदी, जैसलमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। वहीं जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिन तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है सूचनाओं और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हाल चाल। श्रोताओं, आज है 13 मई और आज का ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है कई महत्वपूर्ण कारणों से। 1638 में आज ही के दिन मुगल बादशाह शाहजहां की देखरेख में दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण शुरू हुआ था। 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत की संसद का पहला सत्र आयोजित किया गया। राज्यसभा और लोकसभा का गठन हुआ था। 1995 में चेल्सी स्मिथ मिस यूनिवर्स चुनी गई थी, तो वहीं 2000 में 13 मई 2000 को भारत की लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर भारत का मान बढ़ाया। 2008 में आज के दिन जयपुर में 12 मिनट के भीतर 7 सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए और 2018 में आज के दिन राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। तो श्रोताओं, जानकारियां तो और भी हैं, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन पहले सुनते हैं ये एक प्यारा सा गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।
3: दीवाना

श्रोतो, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फिट रहना हर किसी की प्राथमिकता बन गया है। कोई जिम जाता है, कोई डाइट फॉलो करता है, लेकिन एक ऐसा तरीका है जो सबसे आसान और असरदार माना जाता है, और वो है रोजाना वॉक करना, खासकर 1 किलोमीटर की सैर, जिसे हर उम्र का इंसान आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है। लेकिन अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर 1 किलोमीटर चलने से कितनी कैलोरी बर्न होती है और क्या इससे वजन कम किया जा सकता है। अगर हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो कोई व्यक्ति अगर 1 किलोमीटर चलता है तो वो लगभग 60 से 100 कैलोरी बर्न कर सकता है, और ये संख्या हालांकि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, क्योंकि ये उसके वजन, ऊंचाई और चलने की गति पर निर्भर करता है। अगर आप धीरे धीरे टहलते हैं तो कैलोरी कम बर्न होती है, और वहीं यदि आप तेज चलते हैं यानी ब्रिस्क वॉक करते हैं तो शरीर ज़्यादा ऊर्जा खर्च करता है। इसलिए अगर आप वेट लॉस का लक्ष्य रखते हैं, अगर आपको वजन कम करना है तो तेज गति से चलना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। रोजाना वॉक करने से और भी कई फायदे हैं। इससे हमारा दिल स्वस्थ रहता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, और ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद करता है। इसके अलावा वॉकिंग हमारे मानसिक तनाव को कम करती है और हमारे मूड को बेहतर बनाती है। सैर करने से पाचन तंत्र भी हमारा, डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर काम करता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं से राहत मिलती है, और जो लोग रोजाना चलते हैं उन्हें अच्छी नींद आने में भी मदद मिलती है। तो ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स और जानकारियां हमारे पास हैं। फिलहाल सुनते हैं ये एक प्यारा सा गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, इस गाने के साथ ही हालचाल का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। लीजिए सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में राजेश कुमार शाह से कुछ गीत।

अभी आप सुन रहे थे राजेश कुमार साह से गीत, प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में। आज सुनेंगे राजेंद्र कुमार सिजुवार से शास्त्रीय गायन राग अहिर भैरव। इनसे पहले सुनेंगे विलंबित, एक ताल में निबद्ध है, और फिर सुनेंगे द्रुत जो तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर इनका साथ दे रहे हैं शशि शंकर मिश्र और तानपुरे पर है अनुदीप डे। तो लीजिए सुनिए राग अहिर भैरव राजेंद्र कुमार सिजुवार से।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राजेंद्र कुमार सिजवार से राग अहिर भैरव। तबले पर इनका साथ दे रहे थे शशि शंकर मिश्र और तानपुरे पर थी अनुदीप डे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव। मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव। मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक प्रभु राम।
1: वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता।
0: सुनिए प्रतिदिन प्रातः 6:35 पर संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान।
2: भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं।

0: और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपाड़ी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
0: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में IAS अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि CPIM के राज्य सचिव P. शुनमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के

0: खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है।

0: मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लेटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति यूवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर है। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर-17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द।

0: कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समिट नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, नया भारत और बदलती सियासी समझ। संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, अब QR कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता। राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय NR कांग्रेस प्रमुख N रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन तमिलनाडु टर्न हेक्टिक अहेड ऑफ सी जोसेफ विजय लेड TVK गवर्नमेंट फ्लोर टेस्ट टुडे। ऑल इंडिया NR कांग्रेस लीडर N रंगासामी टू टेक ओथ as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And now the news in detail. In Tamil Nadu, political activities have turned hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test in the assembly today. In a dramatic turn of events, the AIADMK has split into two groups over extending support to the TVK government. Lone AMMK MLA S. Kamraj has decided to support the TVK government. We have more from our correspondent.
3: The TVK with allies like the Congress, VCK, CPI, CPIM and IUML had enjoyed a majority of 120 to form the government in Tamil Nadu. After the government was sworn in, now it has the support of 30 AIADMK MLAs from the breakaway faction and one AMMK MLA, having a total of 151 MLAs. TVK will now have to prove the strength of the government today. The AIADMK led by General Secretary E. Palaniswamy has already said that those who do not adhere to the rules of the whip will be expelled from the party. The party founded by MGR will be facing a major political crisis presently. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
2: Meanwhile, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay has reshuffled IAS officers in the state government, including former Chief Secretary N. Muruganandam and Finance Secretary T. Uday Chandran. The appointment of astrologer Ricky Radhan Pandit as officer on special duty and political wing secretary in the Chief Minister's office has triggered criticism from alliance partners. Congress MPs Sasikant Senthil and Jyoti Mani questioned the appointment, while CPIM State Secretary P. Shanmugam said the move went against the government's response.

0: all taken note of the NEET UG 2026 being cancelled on allegations of question paper leak affecting lakhs of medical aspirants across the country. NEET mess. NTA orders retest as CBI probes leak, writes in the Sun Times. The paper adds, what began as a social media claim has now snowballed into a massive examination scandal. Quoting the Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, the Hindu hints at fuel price hike as oil marketing companies mounting losses cause concern. PM cuts convoy, government departments to adopt austerity measures, reports the Times of India. Under the headline, in a shifting world order, five principles should guide India's diplomacy, notes an editorial in the Indian Express, adding, in foreign policy, there is no substitute for nurturing trusted partnerships, even while seeking new opportunities. Iran's Arakchi, Russia's Lavrov, to be in Delhi for BRICS huddle, reports the Indian Express. The Economic Times, noting the war impact on growth and current accounts, cites PMO stitching a plan to boost foreign fund flow with steps to ease FEMA rules. A headline in the Tribune writes early monsoon likely, Andaman Sea may witness onset by May 16. And finally, a trailblazing first in 145 years at the prestigious institution St. Stephen's College, ready for its first ever woman principal, writes the Pioneer. And with that, it's back to Anuja.
1: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Political activities in Tamil Nadu turn hectic ahead of C. Joseph Vijay-led TVK government's floor test today. All India NR Congress leader N. Rangasamy to take oath as Chief Minister of Puducherry today. Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi governments implement measures for fuel consumption following Prime Minister Narendra Modi's austerity appeal. Centre increases import duty on gold and other precious metals. IMD predicts early arrival of monsoon this year. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Sunrisers Hyderabad by 82 runs in Ahmedabad. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की कयादत वाली नौ मुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुदुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफायत शहरी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातों पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। IMD ने इस साल मानसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और IPL में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में आज टीवी के हुकूमत असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। वजीर आला सी जोसेफ विजय इस आजमाइश से पहले हिमायत हासिल करने की गरज से अपनी हामी पार्टियों के रहनुमाओं के साथ मीटिंग्स करते रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: तमिलनाडु में हुकूमत तश्कील देने के लिए कांग्रेस, VCK, CPI, CPIM और IUML जैसी इत्यादि पार्टियों के साथ TVK के पास 120 अरकान की अक्सरियत है। सरकार की हलफबरदारी के बाद अब TVK को AIADMK के 29 अरकान असेंबली की हिमायत हासिल है जो इस पार्टी से अलग हुए हैं। TVK को अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के एक MLA S कामराज की भी हिमायत हासिल है। अब असेंबली में TVK के पास कुल 151 अरकान हैं। जनरल सेक्रेटरी ई पलानीसामी की क्यादत वाली AIADMK ये कह चुकी है कि जो लोग व्हिप के जाब्तों पर अमल नहीं करेंगे उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इस पार्टी की बुनियाद MGR ने रखी थी और इसे फिलहाल एक बड़े सियासी बुहरान का सामना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
2: ऑल इंडिया NR कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। एक सादा सी तकरीब में जो लोक निवास में मुनाकिद की जाएगी, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के कैलाश नाथ जनाब रंगासामी को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। तफसील हमारे नामा निगार से।

पुडुचेरी में हलफ बरदारी की तकरीब मुनाकिद की जाएगी। एन रंगसामी वजीर आला के ओहदे की एक बार फिर जिम्मेदारी संभालने को तैयार है। 76 साल सियासी कदावर शख्सियत की वजीर आला के तौर पर यह पांचवीं मुद्दत होगी। इस तकरीब में वजीर आला के साथ साथ कुछ वजीरों को भी हलफ दिलाया जाएगा। मरकजी वजीर और बीजेपी के चुनाव इंचार्ज मनसुख पांडविया, बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन, बीजेपी पुडुचेरी के इंचार्ज निर्मल कुमार सुराना और रियासती बीजेपी के सदर वीपी रामलिंगम उन मुमताज रहनुमा

0: बीजेपी पुडुचेरी के इंचार्ज निर्मल कुमार सोलाना और रियासती बीजेपी के सदर वीपी रामलिंगम उन मुमताज रहनुमाओं में शामिल हैं जिनकी इस तकरीब में शिरकत की उम्मीद है। जनाब नवीन कल शाम पुडुचेरी पहुंचे थे। उन्होंने पार्टी अहदेदारों और पार्टी हेडक्वार्टर में कानून साज अरकान से बातचीत की थी। पुडुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: मगरबी बंगाल में हुकूमत की तब्दीली के बाद रियासती पुलिस ने नज़्म व ज़ब्त और सियासी तशद्दुद के माजी के मामलात के बारे में फौरी तौर पर एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इस सिलसिले में नज़्म व ज़ब्त के एडीजी ने कल सभी पुलिस कमिश्नरों, पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स और रेलवे हुकाम को एक तफसीली हिदायत जारी की है जिसमें बहुत से फौरी इकदामात के बारे में कहा गया है। इस हिदायतनामे में 2021 के असेंबली इंतखाबात के बाद तशद्दुद से मुतालिक सभी केसों का नए सिरे से जायजा लेने का हुक्म दिया गया है जिनमें वो केस भी शामिल हैं जिनमें कतई रिपोर्ट्स भी दाखिल कर दी गई है। इस हिदायतनामे में सरहद के बारे में मीटिंग्स और खुफिया मालूमात एक दूसरे को फराहम करके सरहद पार से की जाने वाली स्मगलिंग और जराइम के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया गया है। मगरबी एशिया के बहरान के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की किफ़ायत की अपील के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के वज़राए आला ने वज़ीरों, अरकान असम्बली और अवामी नुमाइंदों की सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के इकदाम का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर आला, वज़ीरों और दीगर अफसरान के गाड़ियों के काफिले में 50% कटौती करने का हुक्म जारी किया है और हिदायत दी है कि सरकारी काफिलों से गैर ज़रूरी गाड़ियों को हटाया जाए। रियासती सरकार ने PNG, मेट्रो खिदमात और सरकारी ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा इस्तेमाल पर जोर दिया है और मीटिंगें वर्चुअल वसीले से मुनक़िद करने, नीज हफ्ते में एक बार कोई गाड़ी नहीं चलेगी का उसूल अपनाने की हौसला अफजाई की है। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लोगों से कहा है कि वो कम ईंधन इस्तेमाल करें और सोने की गैर ज़रूरी ख़रीदारी से गुरेज करें। चीफ सेक्रेटरी, DGP और मुख्तलिफ महकमों के तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरियों और प्रिंसिपल सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग के दौरान योगी आदित्यनाथ ने हिदायत दी कि वज़ीर आला, वज़रा और दीगर के काफिलों में फौरी तौर पर 50% की कमी की जाए। उन्होंने हिदायत दी कि गैर ज़रूरी गाड़ियों को सरकारी काफिलों से हटाया जाए। वज़ीर आला ने रियासत में घर से काम करने के कल्चर को तरजीह देने की अपील की। उन्होंने PNB मेट्रो सर्विस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जरिए चलाई जा रही बसों के इस्तेमाल पर ख़ास तौर से जोर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि वज़रा, MP, MLAs और सरकारी नुमाइंदों को हफ्ते में कम से कम एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहिए। हर हफ्ते एक बार नो व्हीकल डे भी मनाना चाहिए। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने मजीद अहकाम जारी होने तक अपने काफिले में गाड़ियों की तादाद कम कर दी है। पीर को एक काबीना मीटिंग में जनाब यादव ने वज़ीरों की कौंसिल के अरकान से अपील की है कि वो कौमी मफाद के तहत पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी लाएं। उन्होंने सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। एक अफसर ने बताया कि उनके दौरे में जो रैलियाँ मुनक़िद की जाएंगी उनमें गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने भी वज़ीरों, अरकान असम्बली अफसरान और सरकारी महकमों से कहा है कि वो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल महदूद कर दें, कार पूलिंग यानी गाड़ियों को मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल करें और मेट्रो और बस खिदमात को तरजीह दें। हुकूमत ने सोने और दीगर कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी में इजाफा किया है जो आज से नाफिजुल अमल होगी। एक बयान में वजारत खजाना ने कहा कि सोने और चांदी के जेवरात के हिस्सों पर 5% ड्यूटी और प्लेटिनम के हिस्सों पर 5.4% ड्यूटी लगेगी। मजीद बरां कीमती धातुओं के इस्तेमाल शुदा कैटलिस्ट की शरह 4.35% मुकर्रर की गई है जो कि तामील के मेयारात को पूरा करने से मशरूत है। इससे पहले वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया में जारी बहरान के मद्देनज़र लोगों से सोना न खरीदने की अपील की थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो CBI ने मुबैना नीट पेपर लीक के मामले में शुभम खैर नार को हिरासत में ले लिया है। शुभम को राजस्थान पुलिस की दरख्वास्त पर नासिक पुलिस के क्राइम ब्रांच यूनिट ने कल महाराष्ट्र के शहर नासिक से गिरफ्तार किया था। मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट UG 2026 इम्तिहान

0: इस महीने की 3 तारीख को कराया गया था, जिसे कल पेपर लीक के इल्जाम के तहत मनसूख कर दिया गया। हुकूमत ने सीबीआई से कहा है कि वो बदउनवानी के खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी करे। एक और मुतालिका वाकये में नीट यूजी 2026 के एक उम्मीदवार के वालिदैन ने लातूर के एसपी ऑफिस में एक दरख्वास्त दाखिल की है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि एक प्राइवेट कोचिंग इदारे ने इम्तिहान से पहले एक मॉक टेस्ट लिया था, जिसमें मुबैना तौर पर 42 सवालात उन सवालात से यकसानियत रखते थे जो असल नीट पेपर में पूछे गए थे। एसपी अमूल तांबे ने सब डिविजनल पुलिस अफसर को हिदायत दी है कि वो फौरी तौर पर इंक्वायरी शुरू करें और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएं। इससे पहले राजस्थान पुलिस के खसूसी ऑपरेशंस ग्रुप ने मुश्तबा नेटवर्क और पैसे के लेन देन की तफ्तीश के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया था। इस ग्रुप ने कल एक मुबैना सरगना मनीष को जयपुर से गिरफ्तार किया है। हुकूमत ने सालाना मजमूई घरेलू पैदावार जीडीपी के आर्जी तखमीने और चौथी सहमाही के लिए जीडीपी के सहमाही तखमीने के इजरा की तारीख दोबारा मुकर्रर की है। पहले ये तारीख मई का कामकाज का आखिरी दिन होता था, लेकिन अब इसे हर साल जून की 7 तारीख कर दिया गया है। इजरा की तारीख में यह तब्दीली कौमी अकाउंट्स के आदादोशुमार से मुतालिक मुशावरती कमेटी के साथ सलाह मशवरे के बाद की गई है। वजारत ने कहा है कि इस तब्दीली का मकसद आदादोशुमार की क्वालिटी को मजीद मुस्तहकम बनाना है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की क़यादत में एक आला सतही भारतीय पार्लिमानी वफद आज से भूटान का दौरा करेगा। इसका मकसद भारत भूटान रिश्तों को मजीद मुस्तहकम करना है। इस 51 रुकनी वफद में राज्यसभा और लोकसभा के अरकान पार्लिमान और वजारत खारजा के अहलकार शामिल हैं। महाराष्ट्र के ज़िला सांगली की जाट तहसील में कल एक मजहबी तकरीब के दौरान दीवार गिरने से 6 अकीदतमंद हलाक और तकरीबन 15 जख्मी हो गए। तकरीब में 300 से ज़्यादा अकीदतमंद जमा थे, जब इलाके में तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश हुई। तकरीबन 30 अकीदतमंद एक दीवार के पास खड़े हो गए और इसी वक्त दीवार गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। जख्मियों को इलाज के लिए जाट और सांगली सिविल अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दीवार गिरने के हादसे में होने वाली अमवात पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की तमन्ना की। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान की ताज़ातरीन अमन तजवीज़ को मुस्तरद किए जाने के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में और भी कमजोरी पैदा हो गई है। जनाब ट्रंप ने ईरान की तरफ से की गई जवाबी पेशकश को कचरा बताया है। इस इल्ज़ाम तराशी के सबब मगरबी एशिया में तनाज़े को फैलने से रोकने की कोशिशों में गैर यकीनी पैदा हो गई है। जम्मू कश्मीर में फौज ने कल पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब दरअंदाजी की एक कोशिश नाकाम कर दी। कृष्णा घाटी सेक्टर में एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया गया। भारत में इस हफ्ते जुनूब मगरबी मानसून दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात IMD के मुताबिक इस हफ्ते के अख्ताम तक जुनूब मगरबी मानसून के जुनूबी खलीज बंगाल, अंडमान समुंदर और अंडमान और निकोबार जजायर के हिस्सों में आगे बढ़ने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मगरबी खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का हल्का कल उसी इलाके में बरकरार है। इसके साथ ही हवा का गिरदाबी निज़ाम सतह समुंदर से 4.5 किलोमीटर की बुलंदी तक फैला हुआ है। भारत के महकमे मौसमियात ने राजस्थान में शदीद गर्मी और लू के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। रियासत के सरहदी अजला में इस वक्त सख्त गर्मी है। कई मुकामात पर दर्ज हरारत 45 से 47 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि मगरबी बंगाल के अवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत की अवलीन तरजीह, रियासत के अवाम को आयुष्मान भारत सेहत बीमा स्कीम के फवायद हासिल होंगे। अखबार प्रताप ने भी इस खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, सदर जमहूरिया ने 15 नर्सिंग स्टाफ को नेशनल फ्लोरेंस नाइटेंगेल अवार्ड से नवाजा।

0: अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने हेमंत बिस्व शर्मा के मुसलसल दूसरी बार आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। अखबार इनकलाब ने वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल की इस बयान को अहमियत दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान की मदद की। हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से असलाह, धमाका खेज मवाद और 1 करोड़ नकद बरामद। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, भारत नेपाल सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश, 4 अफराद गिरफ्तार। अखबारात की अहम बैनुल अक्वामी खबरें इस तरह हैं, मुज़ाकरात में हो रही नाकामी पर ट्रंप का ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का मंसूबा ज़ेर गौर, दोबारा हमला हुआ तो 90% यूरेनियम अफजूदगी शुरू हो सकती है, ईरान का बयान।
1: खास खास खबरें एक बार फिर, तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय की क़यादत वाली नौ मुंतखबा टीवी के सरकार आज असेंबली में अपनी अक्सरियत साबित करेगी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के रहनुमा एन रंगासामी आज पुडुचेरी के वजीर आला का हलफ लेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई किफ़ायत शेयरी की अपील के बाद ईंधन की खपत से मुतालिक इकदाम पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। मरकज ने सोने और दीगर कीमती धातों पर दरामदाती ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। आईएमडी ने इस साल मानसून जल्द शुरू हो जाने की पेशगोई की है। और आईपीएल में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से शिकस्त दी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
5: इधर आइए, इधर।
6: इधर?
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
7: शुभ वाणी,
6: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रदेशवासियों से अपील, ईंधन की बचत के लिए जरूरत पड़ने पर ही वाहनों का उपयोग करें। कहा, प्रदेश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है। नई दिल्ली में आज 16वीं पेंशन अदालत का आयोजन। 37 मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 985 लंबित पेंशन शिकायतों का मौके पर ही होगा समाधान। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए टास्क फोर्स गठित करने के दिए निर्देश। और मौसम विभाग की आज जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा और सहरसा सहित आसपास के कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेशवासियों से ईंधन की बचत के लिए जरूरत पड़ने पर ही वाहनों का उपयोग करने की अपील की है। श्री चौधरी ने पटना में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षात्मक बैठक में कहा कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन ऊर्जा संकट को देखते हुए नागरिकों को ईंधन बचत करनी चाहिए। उन्होंने लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और इसके अधिक इस्तेमाल पर जोर देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और तेल कंपनियों को कॉलोनी और अपार्टमेंट में पीएनजी कनेक्शन शीघ्र उपलब्ध कराने पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में विस्तारित मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक आज सुबह 10 बजे से होगी। ये बैठक पटना स्थित मुख्य सचिवालय के सभागार में आयोजित की जाएगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 16वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस अदालत में 37 मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 985 लंबित पेंशन शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा कि 2017 में अपनी स्थापना के बाद से पेंशन अदालतें लंबे समय से लंबित और जटिल पेंशन शिकायतों के समाधान के लिए एक प्रभावी मंच साबित हुई हैं। प्रदेश में नई श्रम संहिताओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तर पर मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा। श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार नई श्रम संहिता के क्रियान्वयन के लिए कार्यस्थल पर जाकर श्रमिकों से फीडबैक लिया जाएगा। कानून का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण कार्य विभाग ने प्रदेश में ग्रामीण हाट बनाने के लिए 126 स्थलों को चिन्हित किया है। इन स्थलों पर जल्द ही हाट बनाने का कार्य शुरू होगा। विभाग के अनुसार मनरेगा जी रामजी योजना के तहत ग्रामीण हाट का निर्माण होना है। इन हाटों में किसानों की उपज के साथ साथ जीविका दीदियों के उत्पादों की भी बिक्री होगी। गौरतलब है कि विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों बांका, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज, शिवहर और सुपौल समेत 14 जिलों में 725 ग्रामीण हाट बनाने का निर्णय लिया है। संबंधित जिलों की ओर से अब तक 469 स्थलों का भौतिक सत्यापन किया गया है। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए हैं। पटना स्थित लोकभवन में उच्च शिक्षा विभाग और सभी कुलपतियों के साथ हुई बैठक में राज्यपाल ने उच्च शिक्षा व्यवस्था के अध्ययन और सुधार संबंधी सुझावों के लिए 3 अलग अलग टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए हैं। ये टास्क फोर्स अन्य प्रदेशों का भ्रमण कर वहां की सर्वोत्तम व्यवस्थाओं का अध्ययन करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट

0: करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। एजेंसी ने बताया कि मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीम विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 12वीं परीक्षा 2026 का परिणाम आज जारी किए जाने की संभावना है। अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम बोर्ड की वेबसाइट results.cbse.nic या cbse.gov.in पर देख सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि वेबसाइट पर अत्यधिक लोड होने से विद्यार्थी डिजी लॉकर और उमंग ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गौरतलब है कि परीक्षा परिणाम कल जारी होना था, लेकिन तकनीकी कारणों से इसे जारी नहीं किया जा सका। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि राज्य सरकार हर गरीब बच्चे को स्कूल तक ले जाने का कार्य करेगी। गोपालगंज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री तिवारी ने कहा कि विपक्ष को नकारात्मक राजनीति छोड़ इस काम में सहयोग करना चाहिए।
1: हमारी नजर बिहार के हर गरीब के झोपड़ी पर है, जहां से गरीब का बेटा बेटी को बिहार की सरकार के स्कूल में ले जाके हमें पढ़ाना है। हम उस काम में लगे हैं। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप भी थोड़ा हमारा सहयोग करिए। लेकिन आप प्रथम दिन से ही आप गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और आप अफवाह फैला रहे हैं। आपको बिहार की जनता माफ नहीं करेगी।
0: केंद्र सरकार ने उस वीडियो को गलत बताया है जिसमें कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी नागरिकों को मुफ्त रिचार्ज, मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटर, मुफ्त कार और वित्तीय सहायता देने का वादा करते दिख रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने बताया कि यह दावा फर्जी है और वायरल वीडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI द्वारा बनाया गया है। सरकार ने सभी नागरिकों को आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करने की सलाह दी है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने आज जमुई, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर और सहरसा सहित कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है।
3: 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के एक या दो स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, बांका, गया और अरवल समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। इस दौरान कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। खान और भूतत्व विभाग ने जब्त बालू की नीलामी मानसून से पहले करने के निर्देश दिए हैं। विभाग के निदेशक मनीष कुमार मीणा ने कहा कि मानसून को ध्यान में रखते हुए बालू घाटों की जल्द बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पटना में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में उन्होंने यह जानकारी दी है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति न्यायालयों में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी। ये समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी।

शिक्षा विभाग ने जनगणना कार्य में कार्यरत शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का पूरा डेटा ऑनलाइन दर्ज करने का निर्णय लिया है। विभाग के अपर सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त शिक्षकों की जानकारी 48 घंटे के अंदर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड कराई जाएगी। श्री राजेंद्र ने बताया कि भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के कार्य के लिए जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर शिक्षकों को प्रगणक और पर्यवेक्षक बनाया गया है, लेकिन विभाग के पास इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त कुल शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध नहीं है। अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET 1 जून से 15 जून के बीच आयोजित किया जाएगा। गया सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये परीक्षा निर्धारित तिथियों पर गया जी में आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए गया, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई समेत 11 जिलों से 38,040 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। राजधानी पटना में कल मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी त्यागराजन SM ने बताया कि कल शाम 7 बजे से 7:15 बजे के बीच पूर्व निर्धारित नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैकआउट किया जाएगा। जिलाधिकारी ने नागरिकों से इस दौरान अपने घर, दुकान और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सभी लाइटें बंद रखने की अपील की है। वहीं अररिया जिले में भी कल मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए 16 मई से रक्सौल और नरकटियागंज के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन सप्ताह में 2 दिन शनिवार और गुरुवार को चलेगी। इधर अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन फारबिसगंज, निर्मली और सरायगढ़ के रास्ते करने का फैसला किया गया है। रेलवे ने एक अन्य निर्णय के तहत पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जमुई स्टेशन पर ठहराव प्रदान किया है। यह ट्रेन 15 मई से जमुई स्टेशन पर रुकेगी। सुपौल जिले के भपटियाही स्थित राजकीय विद्यालय में सशस्त्र सीमा बल की ओर से सुरक्षा तथा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। SSB प्रशिक्षण केंद्र के उप महानिरीक्षक विजय सिंह के मार्गदर्शन में छात्रों को सुरक्षा, भूकंप से बचाव, रक्त श्राव नियंत्रण तथा CPR की जानकारी दी गई। अररिया जिले के महलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत करियात पुलिस कैंप के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक चार पहिया वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की है। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। किशनगंज जिले के टेढ़ागांज थाना क्षेत्र में पुलिस ने पशु तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 12 मवेशियों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। IPL क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच रायपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दोबारा देना होगा नीट, प्रश्न पत्र लीक होने के बाद परीक्षा निरस्त। निजी विद्यालयों की मनमानी पर दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, निजी विद्यालयों को फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, 9 लाख राज्य कर्मियों का वेतन बढ़ेगा, पेंशनरों को भी लाभ होगा। अखबार लिखता है, कैबिनेट को भेजा प्रस्ताव। प्रभात खबर लिखता है, प्रदेश में 16 मई तक जारी रहेगा आंधी पानी का दौर। आज अखबार की सुर्खी है, पुलिस निदेशक विनय कुमार ने कहा, दारोगा बनने पर पहली पत्नी को छोड़ दूसरी शादी की तो नौकरी जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रदेशवासियों से अपील, ईंधन की बचत के लिए जरूरत पड़ने पर ही वाहनों का उपयोग करें। कहा, प्रदेश में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है। नई दिल्ली में आज 16वीं पेंशन अदालत का आयोजन। 37 मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 985 लंबित पेंशन शिकायतों का मौके पर ही होगा समाधान। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए। और मौसम विभाग की आज जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा और सहरसा सहित आसपास के कई जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी।

0: इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभवाणी,
2: आकाशवाणी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक प्रभु राम।
1: वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता।
0: सुनिए प्रतिदिन प्रातः 6:35 पर संत तुलसीदास कृत रामचरितमानस गान।
2: भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती को प्रभु के अवतारों की कथा और अभीष्ट बता रहे हैं। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं तो पृथ्वी पर अवतरित होकर प्रभु असुरों का नाश करके देवताओं को स्थापित करते हैं।

यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। यह आकाशवाणी का पटना दरभंगा केंद्र है। पेश है उर्दू प्रोग्राम अंजुमन।

सामिन जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में अपने इस गज़ल को समाप्त किया। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की तामीर और तश्कील में बहुत सारे रहनुमाओं ने अपनी अजीम कुर्बानियाँ दी और अपने काविशों से इस मुल्क को इसकी बेहतरी के लिए बहुत सारे इकदाम उठाए और इसे सींचा, जिसकी तस्वीर आज हम देखते हैं। ऐसे ही एक अजीम रहनुमा, वकील और सियासतदान फखरुद्दीन अली अहमद थे। आज उनकी योम विलादत है। इनकी पैदाइश आज ही की तारीख़ यानी 13 मई 1905 को पुरानी दिल्ली के हौस काज़ी इलाके में हुई थी। फखरुद्दीन अली अहमद हिंदुस्तान के 5वें सदर की हैसियत से भी मुमताज़ रहे। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो गोंडा ज़िला उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट हाई स्कूल से मुकम्मल की और फिर इसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद इंग्लिस्तान चले गए, जहाँ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ की डिग्री हासिल की। सियासी ज़िंदगी का अगर हम आगाज़ देखें तो जवाहरलाल नेहरू से इनकी मुलाकात 1925 में होती है और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और 1942 की हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक के दौरान अपनी काविशों के सबब गिरफ्तार भी होते हैं और 3 साल कैद की सौबत भी बर्दाश्त करते हैं। आज़ादी के बाद अहमद की जो अहम सियासी अहदों पे है वो तकरीरी होती है, वो 1952 में

0: राज्यसभा और इसके बाद 1967 में लोकसभा के लिए भी मुंतखब होते हैं। इनके पास खुराक और ज़राअत, तआवुन, तालीम, सनअती तरक्की और कंपनी के कवानीन जैसे महकमे थे। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में हिंदुस्तान के सदर मुंतखब होते हैं और 24 अगस्त से लेकर के जो है वो अपनी वफ़ात 11 फरवरी 1977 तक अपने इस ओहदे पर फ़ाइज़ भी होते हैं। यकीनन इनकी जो काविशें हैं सामीन, उन्हें पूरा मुल्क फरामोश नहीं कर सकता है और इन तमाम जो रहनुमाओं की हालात ज़िंदगी के मुतालिक हम तमाम लोग की जब वाकफियत होती है तो हम तमाम लोगों के लिए एक मिशाले राह के तौर पे तस्लीम किया जाता है, क्योंकि अपने बुज़ुर्गों के ज़रिए छोड़े गए कदमों के निशान हमें हमारी मंजिल तक बआसानी पहुँचा सकते हैं। आइए सामीन, हम इस छोटी सी गुफ्तगू के बाद अपने अगले पेशकश की जानिब लीजिए मुतवज्जे होते हैं और आपकी समातों के हवाले किए दे रहे हैं ये मकाला बाउनवान उर्दू फिक्शन में ख़वातीन का किरदार, मकाला निगार डॉक्टर ज़रनिगार यास्मीन।
1: फिक्शन में आमतौर पर नावल और अफसाने को शामिल किया जाता है, हालांकि बाज़ नाक़िदीन ड्रामा निगारी को भी इसका हिस्सा मानते रहे हैं। ये बात भी तस्लीम शुदा है कि अदब की दूसरी असनाफ की तरह फिक्शन भी अपने अहद का परवरदा और आईनेदार होता है। इसलिए नज़ीर अहमद से लेकर प्रेमचंद से लेकर गयास अहमद गद्दी तक उर्दू अफसाना निगारों में हमेशा इस अहद और मुआशरे को अपनी तहरीरों में जगह दी है। मैंने महज मिसाल के तौर पर उर्दू के पहले नावल निगार और अफसाना निगार का नाम लिया है, वरना अपने अहद और अपने मुआशरे की आईनेदारी का सिलसिला उर्दू फिक्शन में कल भी मौजूद था और आज भी जारी है। नज़ीर अहमद के यहाँ जो मुआशरा मिलता है वो एक तरह से बदहाली का शिकार है और नज़ीर अहमद की तमाम तर काविशों का मकसद सिर्फ और सिर्फ उसकी इस्लाह है। इस्लाह मुआशरा का ये सिलसिला कुछ मुख्तलिफ अंदाज में अब्दुल हलीम शरर, राशिदुल खैरी और उनके मुआसिन के यहाँ भी दिखाई देता है, मगर ये बात जहन में भी रहनी चाहिए कि इस्लाह मुआशरा का कोई भी तसव्वुर औरतों के बगैर कामयाब नहीं हो सकता। नज़ीर अहमद ने औरतों को बुनियादी तौर पर ख़ानदान की खुशहाली या बदहाली का जिम्मेदार करार दिया है। मरातुल उरूस से लेकर अय्यामा तक हमें मुख्तलिफ किस्म की ख्वातीन मिलती हैं जो न सिर्फ हमारे मुआशरे की तकदीर हैं बल्कि उस पर असरअंदाज भी हुई हैं। अकबरी, असगरी, फहमीदा, नईमा, हरियाली, गैरतमंद बेगम, सादका वगैरह ख्वातीन के मुख्तलिफ रूप की नुमाइंदा हैं। ये सारी शक्लें 1857 से कबल के माशरे में मौजूद थीं, मगर काबिल ज़िक्र बात यह है कि नज़ीर अहमद के यहाँ औरत महबूबा की शक्ल में दिखाई नहीं देती, उसके बरखिलाफ़ शरर और सशार के यहाँ जो ख़वातीन मिलती हैं वो इश्क मोहब्बत के फूलों से अपना सिंगार करती हैं। राशिदुल खैरी के यहाँ औरत रंजोलम का मुजस्मा है जिसकी तकदीर गम से इबारत है। ये भी पता नहीं चलता कि उन औरतों के किस नाकर्दा गुनाह की सज़ा मिल रही है, ये वाकई उन्होंने कोई गलती की है। इस तरह मजमूई तौर पर इस पूरे अहद में उर्दू की पहली खातून नावल निगार रशीदतुन निसा की शख्सियत एक रोशन मीनार की तरह है। उन्होंने नावल में खातून का जो मरकज़ी किरदार पेश किया है वो कई एतबार से अहमियत का हामिल है, चूँकि फसूदा ख्यालात के हिसार से बाहर निकलने की जो चाहत उसके दिल में है वो अपनी सोसाइटी के एतबार से बेमिसाल है। प्रेमचंद से कबल उर्दू फिक्शन में, जिसे उर्दू नावल ही कहना चाहिए, ख्वातीन की पेशकश बहुत हौसला अफजा अंदाज में नहीं हुई है। प्रेमचंद उर्दू फिक्शन का एक ऐसा मोड़ है जहाँ से उर्दू नावल और अफसाना नई बुलंदियों की तरफ गामजन होता है। कफन के अलावा भी प्रेमचंद के दूसरे अफसानों में हम जिन औरतों को देखते हैं वो एक तरफ हालात का जबर भी झेल रही हैं और दूसरी तरफ उन हालात से लड़ने की कोशिश कर रही हैं। प्रेमचंद ने ज़्यादातर ख्वातीन के किरदार को अपने अफसानों में पेश किए हैं और उसकी एक वजह यह भी है कि वो जिस मुआशरे के परवरदा थे उसकी पेशकश को तरजीह देते थे। बहरहाल उन्होंने अपने नावलों में हिंदुस्तानी मुआशरे की जो तस्वीर कशी की है उसमें ख्वातीन का भी रोल

और हालात हाजरा के तहत ये शेर आपके रूबरू पेश कर रहा हूं, समाप्त फरमाइए। गरीबे शहर की बेटी सिसकर।

सामीन ये थे मुख्तार अहमद ख़ान जिनसे आप उनके कलाम समाप्त कर रहे थे। और अब आइए अगली पेशकश बज़्म मौसीकी, इसके तहत हम आपको ये गज़ल सुनवाते हैं। आवाज़ है सामीन ग़ुलाम अली की, लीजिए आपकी समातों के हवाले।

सामिन, अभी आपने ग़ुलाम अली की आवाज़ में हज़रत मोहानी के इस कलाम को सुना, और अब अगली गज़ल जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो चित्रा सिंह की आवाज़ में है। लीजिए आपकी समातों के हवाले।

सामीन चित्रा सिंह की आवाज़ में इस गज़ल को आप समाप्त कर रहे थे, और इसी के साथ हमारा आज का ये सफ़र यही तमाम होता है। कल फिर हमारी मुलाकात होगी। इस वादे के साथ इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।

आकाशवाणी के पटना दरभंगा केंद्र से अभी आप सुन रहे थे उर्दू प्रोग्राम अंजुमन। अगला कार्यक्रम कुछ ही देर में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है मीडिया वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए रसमंजरी।

श्रोता रस मंजरी कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं पहला गाना आलिशा चिनॉय की आवाज में। इस गाने को हमने लिया है मर्डर फिल्म से। बोल राहत इंदौरी के हैं और संगीत से सवारा है अनु मलिक ने।

ろうか。लीजिए, सुनिए अगला गाना शफकत अमानत अली की आवाज़ में, तनु वेड्स मनो फिल्म से। राजशेखर के बोले हैं और संगीत कृष्णा का।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से और आप सुन रहे हैं रसमंजरी कार्यक्रम में। लीजिए अगला गाना पेश है क्रिश फिल्म से, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। इस गाने को लिखा है नसीर फराज ने और संगीत है राजेश रोशन का।

रहना है तेरे दिल में। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गाना केके की आवाज़ में। समीर ने इस गाने को लिखा है और संगीत से सवारा है हैरिस जयराज ने।

0: बचना ऐ हसीनों, इस फिल्म का गाना अभी आप सुन रहे थे के और शिल्पा राव की आवाज में। इस गाने को संगीत से संवारा था विशाल शेखर ने और गाने के बोल थे अन्विता दत्ता गुप्तान के। श्रोताओं, इसके साथ ही रसमंजरी का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। लीजिए सुनिए परिवार कल्याण कार्यक्रम में आज का विषय है नवजात शिशुओं में टीकाकरण एवं खान पान। इस विषय पर डॉक्टर विवेक रंजन से बातचीत कर रहे हैं रुपेश कुमार।
1: श्रोताओं नमस्कार, परिवार कल्याण कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। बच्चे हमारे जीवन में काफी अहमियत रखते हैं और उनके जन्म लेने से ही, उनकी किलकारियों से ही हमारा आंगन खुशियों से गूंज उठता है और वो खुशियां दुनिया के सभी दौलतों से बढ़कर होती है। तो शिशुओं की कैसे हम रक्षा करें, उनको किस तरह से उनका पालन पोषण किया जाए, अपने बच्चों का जो माँ का जो दूध पीते हैं वो, और टीकाकरण किस तरह से उनके लिए इम्पोर्टेंट है, इस विषय पर आज बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक रंजन, जो एक शिशु रोग विशेषज्ञ हैं पटना के, और इस विषय पर हम उनसे बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: हाँ नमस्कार, और हमारे सभी सुनने वाले श्रोतागण को मेरा नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम लोग ये बात करें कि जो स्तनपान है किस तरह से, मतलब इसके इतना महत्व बढ़ा और ये बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो सर इसको थोड़ा आप ऐसा बताएं कि हमारे श्रोता कुछ नई चीजें आज जान सकें और उसको।
2: जी बिल्कुल, जैसा कि हम लोग जानते हैं एक शब्द हम लोग सुनते हैं अमृत, तो अगर धरती पे वो कुछ है तो वो माँ का दूध, माँ का दूध वो बच्चों के लिए या हमारे पूरे परिवेश में जो बच्चे पल रहे हैं उनके लिए अमृत हम लोग मानते हैं, और ये सच में अमृत है। नवजात बच्चे के लिए जो माँ का दूध होता है ये एक तरह से पूर्ण आहार होता है। ये बस केवल पेट भरने का चीज नहीं है, ये एक तरह का वैक्सीन का भी काम करता है, और इसका इतना लाभकारी है, ये इतना इसका अच्छा परिणाम है, अगर ये बच्चे माँ का दूध अगर लेते हैं फ्रॉम जन्म से ही अगर स्टार्ट करते हैं तो इनका आगे चल के इनका रोग से लड़ने की क्षमता, इनकी मानसिक विकास और इनका शारीरिक विकास पूरी तरह से संपूर्ण अच्छे हो जाते हैं।
1: सर मतलब जैसे ये जो स्तनपान की जो व्यवस्था हुई, ये प्रकृति ने एक अनुपम उपहार दिया है मानव को, सिवाय मानव के और कुछ स्तनधारियों के अलावा और किसी प्राणी में नहीं, तो सर इसको थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को कि किस तरह से ये व्यवस्था इतनी कारगर हुई आज।
2: जी बिल्कुल, हमारे ये जो पृथ्वी सृष्टि जो बनी है करीबन 4.5 बिलियन ईयर्स के बाद, मतलब पुराने हम लोग की अर्थ जो पृथ्वी बन पाई है 4.5 बिलियन ईयर पहले बनी थी, और उसके बाद ये एक सेल का इजाद हुआ, एक सेल के बाद धीरे धीरे धीरे यूनिसेलर के बाद मल्टी सेलर बना, मल्टी सेलर के बाद रेप्टाइल्स और बहुत सारे इसमें आयाम आए, उसके बाद लास्ट में मैमल्स बने जो कि करीबन 2.5 मिलियन ईयर पहले बने थे, और उसका सबसे अच्छा जो हम लोग स्वरूप है ये ह्यूमंस है, ह्यूमंस। तो मैमल्स ह्यूमंस हम लोग सबसे उत्कृष्ट कृति हैं हमारे ईश्वर की, जो कि मैमल्स है, और मैमल्स उस प्राणी को बोलते हैं जिसके पास स्तन होता है जो दूध पिला सकते हैं अपने बच्चे को। तो प्रकृति के पास क्या होता है कि अगर वो चीज़ कोई चीज़ ऐसा यूजफुल नहीं है तो प्रकृति उस चीज़ को छोड़ देता है, जैसे हमारे पूर्वजों में टेल था और हम लोग के पास अब पूछ नहीं है क्योंकि वो यूज नहीं था तो हट गया। तो लेकिन ऐसा क्या चीज़ था जो कि प्रकृति ने लाया, तो ये लाया था ब्रेस्ट, अस्तन को लाया था, और अस्तन को इसलिए लाया था क्योंकि प्रकृति को पता था कि अस्तन धारियों में अगर बच्चे दूध पिएंगे तो वो उससे अपने बच्चे को उम्र

0: बढ़ा सकते हैं और उनका बच्चे स्वस्थ रहेंगे। तो ये एक गॉड गिफ्ट है जो कि हम लोग को मिला है, ये ह्यूमंस को मिला है, मैमल्स को मिला है, और इस चीज़ को हमेशा हम लोग को प्रमोट करना चाहिए जिससे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए और अपने बच्चे को स्वस्थ रख पाए।
1: जी सर, कई बार ये लोग कहते हैं कि बच्चों को मतलब माँ का जो दूध पिलाना है उसका एक अवधि होती है कि कितनी अवधि में पिलाया जाए ताकि बच्चे हों, और कई बार कुछ बच्चे बहुत लंबे अवधि तक भी दूध पीते हैं। तो सर इस बारे में जरा सा विस्तार से बताएं कि बच्चे को कब से शुरू किया जाए और कितनी अवधि तक वो दूध पिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब आजकल से ये नया आधुनिक समय में लोग ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ उतना अवेयरनेस नहीं है, उनको लगता है चलो हम डब्बे के दूध पिलाकर शायद बच्चों को स्वस्थ रख पाए।
0: मैं करीबन 4 साल से यहाँ पटना में देख रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आज पटना के जो महिला है, जो शहर की महिला है, वो आजकल ज्यादा ब्रेस्ट फीड करा रही है।
1: जी
0: ये मुझे बहुत ही अचंभित करता है कि आजकल की जो अवेयर है महिला वो ब्रेस्ट फीड ही करा रही है। और

0: जाए ताकि बच्चे हों, और कई बार कुछ बच्चे बहुत लंबे अवधि तक भी दूध पीते हैं। तो सर इस बारे में जरा सा विस्तार से बताएं कि बच्चे को कब से शुरू किया जाए और कितनी अवधि तक वो दूध पिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब आजकल से ये नया आधुनिक समय में लोग ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ उतना अवेयरनेस नहीं है, उनको लगता है चलो हम डब्बे के दूध पिलाकर शायद बच्चों को स्वस्थ रख पाए।
1: मैं करीबन 4 साल से यहाँ पटना में देख रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि आज पटना के जो महिला है, जो शहर की महिला है, वो आजकल ज्यादा ब्रेस्ट फीड करा रही है।
0: जी,
1: ये मुझे बहुत ही अचंभित करता है कि आजकल की जो अवेयर हैं महिला वो ब्रेस्ट फीड ही करा रही हैं। और हम मुझे या आपको पता ही कि गांव देहात में महिला कराते ही कराती हैं। ब्रेस्ट फीडिंग हम लोग अमूमन आधे घंटे के अंदर स्टार्ट कर लेते हैं, और अगर सर्जरी हुआ है, जिनका सर्जरी से बच्चे हुए हैं, उनको हम लोग 1 घंटे के अंदर कर लेते हैं। इनका अगर आप जितना 1 घंटे के अंदर जितना पहले आप करा सकते हैं वो अच्छा माना जाता है। और चूंकि बच्चा उस समय एक्टिव रहता है और उस समय बहुत अच्छे से बच्चा इलाज कर सकता है और उस समय दूध पीता है, और ये अमूमन आपको 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव मतलब कि ब्रेस्ट फीड के अलावा आपको कुछ नहीं देना है, और ये एक पानी का बूंद भी नहीं देना है आपको। उस ब्रेस्ट फीड में पर्याप्त मात्रा में हर चीज़ पाई जाती है और आपको उसको पिलाना है। और इसके बाद हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग को 2 साल की उम्र तक कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे मजेदार बात है कि ब्रेस्ट फीडिंग हर एक माँ के हर एक बच्चे के लिए अलग अलग बनता है, ये डायनेमिक है। अगर एक बच्चा आपका नॉर्मल टर्म बच्चे हो रहे हैं तो उनका ब्रेस्ट मिल्क जो आएगा माँ का, उनका उसके हिसाब से आएगा, और अगर उन्हीं माँ का अगर प्री मैच्योर बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उनका जो मिल्क आएगा वो उसके हिसाब से आएगा। तो ये ब्रेस्ट मिल्क जो है अपने आप में ढाल लेता है बच्चे के अनुसार। कोई बच्चा अगर सिक है, मतलब किसी बीमारी से ग्रसित है, तो उनको भी माँ उसी टाइप का दूध प्रोवाइड
0: मतलब
1: करती है,
0: उनके मतलब
1: उनके अनुसार ढल जाता
0: आप आने
1: है,
0: लगता है
1: टेलर्ड हो जाता है ये मिल्क, टेलर्ड हो जाता है मदर का। तो ये कहीं से भी नहीं हो सकता, ये ईश्वर का ही वरदान है जो कि हम लोग डायनेमिक चेंजेस आता है ब्रेस्ट फीडिंग में, और ब्रेस्ट मिल्क को अमृत मानते हैं।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, की जो नवजात बच्चे होते हैं माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद कई तरह की दिक्कतें आती हैं, बहुत तरह की बीमारियां हैं, तो उससे बचाने के लिए हम लोग उनके लिए टीकाकरण की भी व्यवस्था करते हैं, तो टीकाकरण किस तरह से मतलब बच्चों को बचा रहा है और टीकाकरण क्यों आवश्यक है, तो ये भी सर हम लोग इस कार्यक्रम में।
1: जी बिल्कुल, हमारे नवजात बच्चे होते हैं टर्म या प्री टर्म बच्चे जो होते हैं उसमें इम्यून सिस्टम पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती है। इम्यून मतलब कि रोग से लड़ने वाली क्षमता वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती, इसीलिए अमूमन आप देखेंगे छोटे बच्चे में बार बार खांसी सर्दी होते रहता है, अमूमन 8 साल तक में होते रहता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम उनके एडल्ट का नहीं हो पाता है। और उसके चलते जो है हमारे जो इन्वायरमेंट में जो इन्फेक्शन रहते हैं वो बार बार उनको अटैक करता है, और इसके चलते हम लोग अगर पुराने जमाने में जाएं तो अगर देखें कि डायरिया और निमोनिया बहुत ही कॉमन थे, डायरिया और निमोनिया से बहुत ही जान जाते हुए हम लोग ने देखे, लेकिन ये वैक्सीनेशन के चलते जो हम लोग आज नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग अपने नवजात बच्चे को और जो भी बच्चे हैं उनको हम लोग जो वैक्सीन दे रहे हैं उसके अंतर्गत हम लोग ने इस बीमारी पे हद तक कंट्रोल कर पाया है, डायरिया निमोनिया और बहुत सारी बीमारी को हम लोग कंट्रोल कर पाए हैं और इनके आयु को हम लोग बढ़ा पाए हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो इम्यून सिस्टम जो इमेच्योर है उस समय हम लोग वैक्सीन लगाएं और रोग से लड़ने की क्षमता जो जो खतरनाक बीमारी उससे हम लोग डेवलप करा पाए।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, जन्म के तुरंत बाद बच्चों को कौन कौन से प्रमुख टीके जो लगने चाहिए, ये एकदम अनिवार्य है?
1: ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। और जन्म के बाद हम लोग 3 टीका मुख्य रूप से देते हैं, और सबसे पहले ओरल पोलियो वैक्सीन हम लोग देते हैं, BCG वैक्सीन लगता है और हेपेटाइटिस बी लगता है। ये 0 डोज मतलब जन्म के तुरंत बाद हम लोग इसको देते हैं
0: जी। उसके बाद अलग
1: उसके
0: अलग
1: बाद 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे
0: जी, उसका पूरा एक
1: अलग से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आपको मिलता है। आप अपने चिकित्सालय नजदीकी चिकित्सालय में जाएंगे तो आपको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का आपको चार्ट मिल जाएगा, आपको रजिस्टर्ड हो जाएगा, और इनफैक्ट कि आपको आजकल मैसेज भी आता है कि आपका वैक्सीनेशन का टाइम हो गया, आप आके।
0: सर अब कई बार ये सवाल होता है कि कई बार टीकाकरण को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में कुछ ऐसी भ्रांतियां हैं, जैसे टीकाकरण करने से बच्चे बीमार हो जाएंगे या उनकी तबीयत खराब होगी, तो कुछ क्या ऐसा कोई साइड इफेक्ट है उनका?
1: साइड इफेक्ट के नाम पे नगण्य है, उसको हम लोग बहुत ही कम है, उसको हम लोग कंसीडर करते ही नहीं है। लो ग्रेड फीवर और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, कभी कभी भी इंजेक्शन साइट पर दर्द होना या फिर वहाँ पे गुलटी बन जाना या वहाँ पे रेडनेस होना, ये सब होता है। तो बहुत रेयर केस में कुछ साइड इफेक्ट ऐसा

0: होता है जो कि नहीं देखा जाता, ये सब लिटरेचर की बात है।
1: और सर, जैसे जन्म के 1 घंटे के भीतर भी आपने कहा कि बच्चों को माँ का दूध पिला दिया जाना चाहिए, और कई बार हम लोगों ने ये देखा है कि मतलब स्तनपान एक तरह से टीकाकरण ही हुआ बच्चों के लिए। तो
0: जी बिल्कुल
1: ये दोनों जो मतलब विषय हैं, बच्चे का स्तनपान और उनका टीकाकरण, तो ये सर हम कैसे जोड़ कर देखें? क्योंकि
0: जी बिल्कुल। माँ जो इन्फेक्शन से इम्यूनिटी एक्वायर की है, मतलब वो जो प्रतिरोधक क्षमता अपने शरीर के अंदर ले रही है, वो दूध के थ्रू बच्चे में वो पहुंचाती है, तो वो एक तरह से वैक्सीन का काम करता है बच्चे। तो हम लोग उनको बोलते हैं कि माँ का दूध वैक्सीन का फर्स्ट शॉट है, और इसके चलते बहुत सारी बीमारी जो है आप बचा पाते हैं। और जो बीमारी जो कि हम लोग अमूमन देखते हैं कि जो अर्ली एज में आते हैं, जैसे डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस, ये सब बहुत पहले आते हैं, उसके लिए हम लोग वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन आप जैसे जानते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, वैक्सीन प्रिवेंशन है।
1: जी
0: और अगर हम बात करें पूरे भारत की, तो वैक्सीन के चलते हम लोगों ने बहुत सारे इकोनॉमिकल बर्डन को कम कर पाए हैं, और ये वैक्सीन बहुत ही लाभदायी है बच्चे लोग के हेल्थ के और इकोनॉमिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आप बहुत सारे जो फंड आप बच्चे को ट्रीट करने में, वो पहले ही आप बच्चे को उससे वैक्सीन देके प्रिवेंट कर पा रहे हैं, तो
1: जी
0: ये कॉस्ट इफेक्टिव और बहुत सारे बेनिफिट्स के साथ लेके आते हैं।
1: जी अच्छा डॉक्टर साहब, टीकाकरण के क्रम में एक जो बात आती है कि शेड्यूल का ध्यान रखना, ये कितना महत्वपूर्ण
0: जी
1: है?
0: बिल्कुल, ये शेड्यूल हमारे जो इंडिया के कंटेक्स्ट में बनाया गया है, और हर कंट्री के अलग अलग शेड्यूल्स रहते हैं, तो उनको हमेशा ध्यान दिया जाता है। अमूमन 1 सप्ताह 4-5 दिन अगर आगे पीछे होता है तो आप करा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कोई भी काम से अगर 1 महीना अगर छूट गया या कुछ भी, तो कैचअप प्रोग्राम है, आप नज़दीकी अस्पताल में जाके डॉक्टर से बात कर सकते हैं और अपना टीकाकरण को कंटिन्यू करा सकते हैं, और ये सब जगह उपलब्ध रहता है। कैचअप प्रोग्राम बोलते हैं, जो जिनका टीकाकरण छूट गया उनको फिर से हम लोग टीकाकरण देते हैं और वो पूरा डोज हम लोग करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आखिरी में चलते चलते हम लोग ये कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी हमारे देश में टीकाकरण की जो व्यवस्था है उसको लेकर के सरकार बहुत सारा काम कर रही है, आंगनबाड़ी है और बहुत सारे केंद्रों में ये जो सरकार का कार्यक्रम है टीकाकरण, और हमारे देश में एक जन कल्याण की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, ये कैसे आगे बढ़े?
0: सबसे पहले जो माँ और उनके जो गार्जियन है बच्चे को, वो रेगुलर अपने विजिट कराना है आपको। और टीकाकरण बस टीकाकरण ही नहीं होता है चिकित्सालय में, आपके बच्चे का पूरा प्रॉपर चेकअप होता है, पूरा प्रॉपर, जैसे वेट गेन हो रहा है कि नहीं, हाइट हो रहा है कि नहीं, आपका मानसिक शारीरिक और विकास हो रहा है कि नहीं, तो टीकाकरण के समय ही हम लोग पूरा तरह से उनके एग्जामिनेशन करते हैं और इवेल्यूएशन करते हैं। तो आपको ये जानना है कि टीकाकरण तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ इनका जनरल एग्जामिनेशन भी हो रहा है, तो ये चीज माँ को पता होना चाहिए। और ये लोकल स्तर पे आशा, आंगनवाड़ी सब लगी हुई है, हमारी जो भी हेल्थ वर्कर है पूरे लगे हुए हैं, और मुझे ये पूरी तरह से उम्मीद है और मुझे पता है कि ये ग्रामीण स्तर पे बहुत ही अच्छा हेल्थ मैनेजमेंट हो रहा है, हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं वो कर रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि हम लोग आज इस स्टेज पे पोलियो को उन्मूलन कर पाए, तो ये एक जीता जाता एग्जाम्पल है। ये जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं इसके लिए हम लोग अपने जितने हेल्थ वर्कर हैं उनको धन्यवाद देते हैं।
1: सर, जो नवजात बच्चों की माँ है वो स्तनपान को भी मतलब अपना सबसे प्राथमिक कार्य के रूप में ये रखे हैं, तो किस तरह से सर आप इसके लिए भी थोड़ा संदेश दें कि
0: स्तनपान, जैसे मैंने पहले ही बताया कि माँ का दूध अमृत है, और बच्चे को अगर आप अमृत पिलाना है तो आपको माँ का दूध देना ही है। बहुत सारे चीज है, न्यूरो डेवलपमेंट मतलब दिमाग का विकास करते हैं, और दूसरा ये है कि अगर आप रेगुलर स्तनपान कराते हैं तो बहुत सारी बीमारियां जो कि माँ को होती है वो भी आप बचा पाते हैं। जैसे सबसे कॉमन आपको ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, जो कि आज के डेट में आप बहुत दे रहे हैं। दूसरे कि बच्चे लोग जो कि दूध स्तनपान करते हैं उनमें जीवन में आगे चल के कार्डियक प्रॉब्लम बहुत कम होते हैं, ओबेसिटी कम होता है, उनका इंटेलिजेंस लेवल नॉर्मल बोतल फीडर से बहुत ज्यादा तेज रहता है। और दूसरी बात है कि आप एक सोसाइटी को डेवलप करते हैं। माँ अगर आप स्तनपान करा रही हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने बच्चे के साथ बॉन्डिंग बना रही है, अटैचमेंट हो रहा है, यही एक चीज है जहाँ पे आप सोसाइटी का निर्माण कर पा रहे हैं, एक स्ट्रांग भारत का निर्माण कर पा रहे हैं। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग आपको कराना ही कराना है, इसमें बहुत सारे चीज है, ब्रेस्ट फीडिंग आप कहीं भी करा सकते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे आप बच्चे को दे रहे हैं, ना ठंडा है ना गर्म, बच्चे के लिए दे रहे हैं, और इजिली आप हमेशा बच्चे को दे सकते हैं। और आज का कंसेप्ट है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है क्लू बेस्ड फीडिंग, क्लू बेस्ड फीडिंग का मतलब होता है कि बच्चा अगर आपके तरफ देख रहा है, मतलब कि आपको समझना है कि बच्चा अब हमको दूध मांग रहा है। तो अगर ऐसा है कि दो दो तीन घंटा सो रहा है तो कोई बात नहीं, आप सोने दीजिए, लेकिन अगर बच्चा क्राई कर रहा तो ऑब्वियसली आप दीजिएगा ही, लेकिन क्लू बेस मिलेगा। अगर बच्चा आपको देख रहा है, मुंह आपके निपल की तरफ कर रहा है या आपको टच कर रहा है, तो

0: आपको उस समय भी कराना है। तो जितना आप कराइएगा बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग, उतना आप बच्चे को लाभ दे पाइएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने टीकाकरण और स्तनपान पर इतने विस्तार से, इतने अच्छे तरीके से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने अपने बहुमूल्य समय निकाला, हमारे बीच उपस्थित हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक है, धन्यवाद हमारे श्रोतागणों को, और आशा करता हूँ कि हर एक माँ और उनके गार्जियन ब्रेस्ट फीडिंग और नेशनल इम्यूनाइजेशन पर, वैक्सीनेशन पे ध्यान देंगे और हमारे भारत को सशक्त करने में अपना सहयोग करेंगे।
2: परिवार कल्याण कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे, नवजात शिशुओं में टीकाकरण एवं खान पान का ख्याल कैसे रखें, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विवेक रंजन। इनसे बातचीत कर रहे थे रुपेश कुमार रूप। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, आओ साथ चलें। कार्यक्रम में प्रस्तुत है हमारे बिहार की विरासत, स्वर सहयोग है संजय किशोर का और प्रस्तुति है मोहम्मद शाहिद सबा की।
3: श्रोताओं, जब हम विरासत शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान पुरानी इमारतों की ओर जाता है, लेकिन आज हम जिस विरासत की बात करेंगे वह सिर्फ ईंट पत्थरों की नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृति और संस्कारों की है। आज के आओ साथ चले प्रोग्राम में हम बात करेंगे हमारी बिहार की विरासत की, वह धरती जहां इतिहास खुद करवटे लेता है। श्रोताओं, बिहार की विरासत का जिक्र हो और नालंदा की बात ना हो यह मुमकिन नहीं। वह दौर जब दुनिया के कोने कोने से लोग यहां पढ़ने आते थे। नालंदा और विक्रमशिला सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं थे, वे इस बात के गवाह थे कि हमारी विरासत कलम और किताब की रही है। वैशाली की धरती को देखिए, जिसने दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, और मगध, मगध का वो साम्राज्य जिसकी सीमाओं ने सुदूर देशों को छुआ। हमारी विरासत में सम्राट अशोक का धम्म भी है और शेरशाह सूरी की प्रशासनिक सूझबूझ भी। ये वो मिट्टी है जिसने बुद्ध को ज्ञान दिया और महावीर को निर्वाण। लेकिन विरासत सिर्फ किताबों में नहीं, यहाँ की हवाओं में घुले गीतों में भी है। चलिए बिहार की लोक संस्कृति के मिठास के लिए एक गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे बिहार के गौरवशाली इतिहास की, लेकिन हमारी असली विरासत तो हमारे आंगनों में बसती है। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग को ले लीजिए। मिथिला की महिलाओं ने अपनी कला से आज पूरी दुनिया के म्यूजियम्स में जगह बना ली है। और हमारी भाषाएं, मैथिली की कोमलता, मगही का अपनापन और भोजपुरी की वो मिठास। जब हम का हाल बा कहते हैं तो उसमें सदियों का भाईचारा झलकता है। हमारी विरासत हमारे स्वाद में भी है। लिट्टी चोखा का वो सोंधापन, गया का तिलकुट और मनेर के लड्डू, ये सब मिलकर बिहार की एक अलग पहचान बनाते हैं। विरासत वो नहीं जो हमें मिलता है, बल्कि वो है जिसे हम संजोकर अपनी अगली पीढ़ी को सौंप देते हैं।

0: श्रोताओं, समय कम पड़ जाता है जब बिहार जैसी महान विरासत की बात हम करते हैं। सासाराम का मकबरा हो, बोधगया का मंदिर या पटना साहिब का गुरुद्वारा, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हम एक महान परंपरा के वारिस हैं। आज जरूरत है कि हम अपनी इन धरोहरों का सम्मान करें, अपनी जबान, अपनी लोक कला और अपने स्मारकों को सहेजें, क्योंकि जिस समाज के पास अपनी विरासत की समझ होती है, उसका भविष्य हमेशा उज्जवल होता है। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आओ साथ चलें। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वार्ता हमारे बिहार की विरासत। स्वर सहयोग था संजय किशोर का और प्रस्तुतकर्ता थे मोहम्मद शाहिद सबा। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। एक अंतराल के बाद सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडी वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम ऑन एयर फरमाइश।

0: ऑन एयर फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका रेडियो दोस्त संजय किशोर आपके कॉल्स लेने के लिए हाजिर हूँ। आपके कॉल्स आने लगे हैं, लेते हैं आपका कॉल। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार संजय बाबू
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम सुजीत पासवान, डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर बिहार, तारारंजन प्रखंड, वार्ड नंबर 6 से बात कर रहे हैं सर।
0: जी बहुत बहुत स्वागत आपका। कुछ और बताएं अपने बारे में।
1: बहुत बढ़िया है सर, आप अपना बताइए।
0: हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा, सब अच्छा चल रहा है।
1: बढ़िया रहना चाहिए सर।
0: जी बिल्कुल रहना चाहिए, जब बढ़िया है तभी सब कुछ आप अच्छा से कर पाएंगे।
1: रेडियो खोले हुए हैं, सुन रहे हैं।
0: जी
1: ठीक है सर,
0: कुछ बताइए अपने बारे में।
1: हम तो सर दृष्टि बाधित हैं।
0: अच्छा अच्छा जी,
1: संगीत से थोड़ा लगाव है।
0: क्या क्या करते हैं संगीत में, कुछ बताइए।
1: तो गाना उना गा लेते हैं।
0: अच्छा, तो कुछ कार्यक्रम वगैरह करते हैं क्या?
1: हाँ हाँ, कार्यक्रम भी शादी उदी में।
0: अच्छा, तो अभी तो आपका बढ़िया समय चल रहा है, लगन का समय है।
1: बहुत बढ़िया चल रहा है जी सर।
0: तो
1: बहुत बढ़िया चल रहा है,
0: आमदनी हो रही है।
1: हाँ हाँ, आमदनी अभी हो रही है।
0: बहुत अच्छा, लगे रहिए और अपनी क्वालिटी को और बेहतर कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। आपको भी अच्छा लगेगा और इस कार्यक्रम को आप सुनते हैं तो आप एक अच्छा वाला गाना भी जरूर बताएंगे अपनी पसंद का।
1: गाना है सर अंटी नंबर 1 का, बुलबुला रे बुलबुला।

0: हेलो सर
1: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
0: नमस्ते। हाँ, हम ठीक हैं।
1: आप पूरा नाम पता एक बार फिर से बताइए।
0: जमुई जिला से मैं नरेश बरनवाल, ग्राम नागवे, पोस्ट सिमुलतल्ला, थाना
1: जी
0: सिमुलतल्ला, जहाँ आवासीय विद्यालय है।
1: क्या हालचाल है बताइए।
0: क्या सब ठीक है? छोटा मोटा दुकान है, चलाता है बेटा सब। और हमको गाना सुनना है, मुझे तुम भी, कोई जानता नहीं हम क्या करें।

0: ऑन एयर फरमाइश।
1: नमस्कार सर, हम विद्यापति बाईपुर से बोल रहे हैं, समस्तीपुर जिले से, राम भरोस पासवान।
0: जी जी, स्वागत है आपका। अपना
1: सर,
0: हाँ जी,
1: हाँ हाँ,
0: अपने बारे में कुछ और जानकारी दें।
1: जानकारी तो हम सर जी आपका रेडियो 1992 से सुन रहे हैं, और चौपाल खेती गृहस्थी और क्या कहता है ये ऑन एयर फरमाइश और सुबह में रामचरित मानस पाठ
0: जी,
1: प्रादेशिक समाचार, ये सारे प्रोग्राम आपको सुनते हैं रहते हैं
0: जी। रेडियो तो बहुत बढ़िया से सुन रहे हैं आप, जैसा कि आपने बताया, और करते क्या हैं इसके बारे में भी कुछ बताइए हमें।
1: हम तो सर जानकारी दे रहे हैं कि हम चापाकल समरसेबल बोरिंग गाड़ रहे हैं, मिस्त्री लोग को लगा के, हम ब्लाइंड आदमी है लेकिन मेहनत के बदौलत हमने अपना जीवन को सार्थक किए हुए हैं।
0: जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बताई आपने। हर आदमी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो करना चाहते हैं, इससे आय भी हो, और आप बहुत बेहतर कर रहे हैं।
1: आपने संघर्ष के बदौलत क्या कहे कि अपना जीवन सार्थक किए हैं, एक हमारा बेटा है, इसका नाम भी संघर्ष से रखते हुए हैं।
0: अच्छा जी,
1: हाँ, और आपके प्रोग्राम से, रेडियो से हमारा सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है सर जी। रेडियो हमारा एक सच्चा दोस्त, सच्चा साथी
0: रेडियो है।
1: हाँ, एकदम रेडियो से हमने सारा ज्ञान प्राप्त किए हैं। आज हमारा पहली बार कॉल लगा है, बहुत दिनों पहले से सुन रहे थे लेकिन आज पहली बार कॉल लगा।
0: कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत खुशी हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: बाकी दिन लोगों को सुनते रहे और आज खुद आपने कॉल मिलाया, बातचीत हो रही है, आपको खुशी हो रही होगी।
1: आपका काम से हमको बहुत खुशी हो रहा था। पहले जो आपके करीबन 20 साल पहले जो सारे प्रोग्राम सुनते थे
0: जी,
1: बहुत अच्छा लगता था, बहुत आज भी सुन रहे हैं
0: जी। ठीक, धन्यवाद, आपने कॉल किया। बताइए क्या सुनवाया जाए।
1: बगावत बगावत का गाना है ना, और रफीका मेरे महबूब, पूछे सलाम।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार सर, हम उमेश कुमार बोल रहे हैं सर, डुमराव से।
0: डुमराव से उमेश कुमार जी, स्वागत है आपका। कुछ बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: जी सर, हम खेती वेती करते हैं सर।
0: अभी क्या कर रहे हैं खेत में?
1: अभी तो सर खेती में कुछ नहीं है, अब बिया हुआ डलाएगा सर धान का।
0: तो अभी तो समय है, अभी बारिश होगी, खेत जोतिएगा, उसके बाद ही कुछ होगा ना।
1: तो वहीं खेती होती होता है और गाय भैंस है, भैंस है घर पे, तो वहीं सब सब चलता है।
0: अच्छा, तो सिर्फ धान की खेती करते हैं कि कुछ और भी?
1: धान के बाद भी सर, इसके बाद गेहूं बोआता है ना।
0: गेहूं की कटनी हो चुकी है इसका मतलब?
1: हाँ, तो गेहूं की कटनी होने के बाद फिर धान बोआता है। धान का यहाँ सब खेती होती, मतलब
0: गेहूं और
1: होता है।
0: धान, गेहूं और धान यही चल रहा है
1: जी
0: जी। ठीक है, बढ़िया है। और रेडियो के कार्यक्रम आप सुनते हैं? पहली बार कॉल आया क्या या पहले बातचीत हो चुकी है?
1: बातचीत तो सर हमसे पहले नहीं हुआ है सर।
0: आज पहली बार हो रही है
1: जी सर।

0: जी, तो कैसा लग रहा है, कुछ अपनी फीलिंग्स बताएं हमें।
1: कार्यक्रम तो बहुत अच्छा लगता है सर रेडियो का। एक कार्यक्रम ऐसा जो सोमवार को आता है 12:30 बजे से 1 बजे तक, वो सर हमको बहुत अच्छा लगता है। अब कार्यक्रम का नाम तो उतना नहीं ध्यान पड़ रहा है, लेकिन वो सर गाने वाला आता है वो
0: सुरों
1: बहुत
0: का
1: अच्छा
0: सफर।
1: लगता है। जी सर, सुरों का सफर।
0: जी, नहीं अच्छा है, आप सुनते रहिए, कार्यक्रम भी बहुत अच्छा है। आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, धन्यवाद। इस कार्यक्रम में आपने फोन किया है, क्या मन बनाया है, क्या सुनेंगे आप?
1: तो दिल फिल्म का गाना सुनवा दीजिएगा, ओ प्रिया प्रिया।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: नमस्कार संजय जी।
0: जी स्वागत आपका। कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम मोतिहारी जिला से बोल रहे हैं सर, दीपक
0: जी। दीपक जी, क्या करते हैं?
1: सर ये खेती बाड़ी करते हैं सर। अभी मूंग का खेती, गेहूँ काट कर मूंग का खेती किए। अभी मक्का लगा हुआ है खेत में, जहाँ जहाँ बारिश हो रहा है अभी।
0: मध्यम बारिश, ये फायदेमंद है या नुकसानदेह?
1: ज़्यादा पानी होने पर सर मकई को मूंग को नुकसान करता है
0: अच्छा,
1: जी। प्रोग्राम
0: ओ
1: तो बहुत अच्छा आपका लगता है हमको,
0: जी, और कुछ बताइए।
1: सुबह का प्रोग्राम सुनते हैं, हाल चाल 7:05 पर आता है, और समाचार सुनते हैं,
0: जी
1: और
0: जी
1: 1:30 बजे न्यूज, 10:30 या फिल्मी संगीत, 1:30 बजे फिल्मी संगीत, यही सुनते हैं जी।
0: मतलब लगभग बहुत सारे कार्यक्रम आप सुन लेते हैं।
1: हाँ, वही क्या बोलते हैं, बूथ का बूथ आता है शाम को, खेल खेल परिक्रमा, वो भी सुनते हैं जी।
0: खेल परिक्रमा के बारे कुछ बताना चाहेंगे?
1: सर सुन के हमको अच्छा लगता है, और नया नया जानकारी उसमें शामिल कीजिएगा
0: खेल में रुचि है आपकी?
1: जी। क्रिकेट से हमको बहुत अच्छा लगता है, क्रिकेट।
0: जी, तो ये खेल परिक्रमा में क्या ज्यादा अच्छा लगता है? हम लोग आधे घंटे का इस कार्यक्रम को बनाते हैं।
1: सर क्रिकेट के बारे में यह कोई जानकारी नहीं रहता है, जानकारी हमको मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा जी, बहुत अच्छा।
1: ये गाना सुना दीजिए,
0: हाँ,
1: क्या हमारा एक प्यार फिल्म का समय, ये गाना वो मुझसे मोहब्बत का इजहार करना।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार जी।
0: जी कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम सुपौल बाजार बिरोल दरभंगा से बोल रहे हैं सर।
0: जी नाम पता कुछ बताएंगे?
1: हाँ जी, हमारा नाम शत्रुघ्न सहनी हुआ।
0: अच्छा सहनी जी, आप तो हमारे श्रोता हैं।
1: जी
0: जी, क्या हाल चाल है, बताइए क्या कर रहे हैं?
1: ठीक है सर।
0: कुछ काम धाम हो रहा है अभी?
1: हाँ जी सर, अभी तो ऐसे बैठा रही है।
0: क्यों ऐसा
1: हो गया? तो अब ऐसे आदमी बैठे हुआ।
0: क्या हो गया?
1: मखाना का खेती।
0: अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं? मखाना की खेती में से जब मखाना निकाल लिया,
1: या कोई कोई फैक्ट्री है ना, कोई कल कारखाना है जो उसमें लगा रहेगा। अब नदी तालाब भी भर गया जो उसमें मच्छी भी पकड़ेगा, मंगा लो। बस वो मखाना पे निर्भर है हमारे गांव क्षेत्र का लोग का।
0: तो सिर्फ मखाना ही लेते हैं साल में एक बार कि कुछ और?
1: बस उसमें तो मखाना ही होता है साल में एक बार सर। खेती और हम लोग तो फोड़ने का काम होता है, किसान लोग करता। हम लोग तो मजदूरी करने लड़का लोग जाता है मखाना रोपने के लिए, मला लोग।
0: तो मखाना का जो फोड़ने का काम है वो तो साल भर होना चाहिए?
1: नहीं सर, वो तो खेती सीजन पे ही होता है। 6 महीना निकालने में फिर लगता है फोड़ने में।
0: तो बाकी 6 महीना आप लोग क्या करते हैं? जो मजदूर हैं इसमें जो लगे हुए हैं वो क्या करते हैं, उनकी आय कैसे होती है?
1: बस सर मजदूरी उजूरी करता है इधर उधर, जो मजदूर लोग हैं अपना देश परदेश खटा नहीं। तब तो पहले नाव चलाता था, मच्छी पकड़ता था। अब नाव नहीं चलता है ना मच्छी पकड़ता है। एक मलाह का जो है ना वो मखाना पर ही निर्भर है दरभंगा जी। हाँ, उसी विधाता में से गाना कोई सुना दीजिए सर।

0: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। अपना नाम पता बताएं।
1: सर मैं सोनू कुमार।
0: हाँ जी सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या हो रहा है
1: जी? कुछ नहीं सर, बस बैठे थे तो सोचा कॉल लगा लेते हैं।
0: अच्छा, बढ़िया किया आपने कॉल लगा लिया, कुछ काम तो हुआ। जी जी वैसे करते क्या आप?
1: जी सर पढ़ाई करते।
0: अच्छा जी, आप तो पहले भी हमसे बात कर चुके हैं।
1: जी सर एक बार कॉल कर चुके हैं आप।
0: जी जी याद आ रहा है मुझे। तो पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है आपकी?
1: जी सर
0: जी, थोड़ा मन लगाइए और समय भी उसको दीजिए, क्योंकि आप विद्यार्थी हैं और अगर आप पढ़ाई पर थोड़ा मन लगाएंगे, समय देंगे, तो आपका जीवन बेहतर होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। क्या करते हैं और?
1: कुछ नहीं, बस घर पर रहते हैं।
0: ज़्यादातर समय कैसे बिताते हैं आप घर पर रहकर?

0: बस ऐसे ही सोए सोए कभी इधर उधर।
1: हाँ, तो उसमें थोड़ा परिवर्तन लाइए। सुबह थोड़ा जल्दी जागिए, सोए सोए मत रहिए, और विद्यार्थी हैं,
0: मतलब
1: पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई को लेकर आप थोड़ा सा और सीरियस हो जाइए और उसको करिए, ठीक है?
0: जी सर,
1: चलिए, हाँ, क्या सुनेंगे ये बताएं।
0: जी सर, एक गाना था, मेरी नसीब में तू है कि नहीं।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: हम कैलाश मंडल लखूचक से बोल रहे हैं
0: जी। स्वागत है कैलाश जी, क्या हो रहा है बताइए।
1: ठीक है, समाचार बहुत बढ़िया है, वर्षा हो रहा है, ठंडा है।
0: अच्छा जी, तो मौसम का मजा ले रहे हैं।
1: हाँ, मौसम का मजा ले रहे हैं, हमको एक गाना सुनना है।
0: हाँ, सुनवाएंगे। और सिर्फ मजा ले रहे हैं या कुछ काम वाम भी हो रहा है उधर?
1: नहीं, मजे से बैठेगा खेत में, बोरिंग पर बैठ करके फुलबाड़ी में मजा ले रहे हैं।
0: पानी पटा रहे हैं?
1: हाँ।
0: बारिश भी हो रही है और पानी भी पटा रहे हैं?
1: सब्जी पटा रहे हैं।
0: अच्छा, वो जो बारिश हो रही है उससे काम नहीं चलेगा?
1: बारिश बहुत कम होता है, लेकिन सब्जी में पानी खोजता है, दिन बाद एक दिन है।
0: अच्छा, ज्यादा पानी चाहिए होता है सब्जी। वैसे हाँ। कौन सी सब्जी है?
1: है कद्दू है, परोर है, करेला है, यही सब है।
0: हाँ, तो इन सब सब्जियों को पानी चाहिए होता है।
1: हाँ ठीक है, हमको गाना सुनना है।
0: हाँ
1: हाँ, गंगा की सौगंध, गंगा माँ हूँ ना मानुष पानी हूँ।

आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हो तो हमें प्रत्येक बुधवार को दिन के 10 बजे से 10:30 के बीच कॉल कीजिए। और अब हमारे फोन नंबर नोट कीजिए, 0612-22-22-500। फोन नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं, 0612-22-22-500। और अब कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हरिंद्र आजाद के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। फोन इन कार्यक्रम ऑन एयर फरमाइश में

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम ऑन एयर फरमाइश। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: कहां चलती है? इधर तो
5: इधर आइए, इधर
6: इधर।
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी।
0: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं। पहली सभा के कार्यक्रमों को जारी रखते हुए सुनते हैं कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत। कार्यक्रम में आप सुनिए संस्कार गीत।
1: भारतीय संस्कृति की आधारशिला है संस्कार। जैसे सोने और चांदी को आग में तपाकर खड़ा किया जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति को सुसंस्कृत बनाने के लिए संस्कारों की कल्पना की गई है। यूं तो लोक साहित्य में संस्कार गीतों के क्रम में जन्म के गीतों को पहले स्थान दिया गया है, किंतु सृष्टि से पूर्व सृजनकर्ता का अस्तित्व दिखाया जाना अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है। इसलिए संस्कार गीतों की कड़ी का आरंभ हम सबसे पहले विवाह से करना चाहते हैं। एक नए और पवित्र प्रेम बंधन में बंधने का नाम है विवाह। एक नए जीवन का प्रथम अध्याय है विवाह। नया परिवेश, नए संबंध, नए परिजन, नया घर, नए रिश्ते, सब कुछ नया नया हो तो आंखों में नए नए सपने भी पलने लगते हैं। ये सब कुछ मंगलमय हो, इसलिए इस संस्कार का आरंभ ही मंगल गीत से होता है। राम और सीता का विवाह हो रहा है। गज मोतियों से चौक पूरा जा रहा है, सोने के कलश भरे जा रहे हैं। दोनों की युगल जोड़ी बनी रहे और अयोध्या में सुख सुहाग बरसता रहे, यही मंगल कामना है इस मंगल गीत के रूप में।

घरों में मंगल गीत होने लगे तो वर कन्या दोनों के यहाँ सगुन भेजा जाने लगा। वर पक्ष की ओर से कन्या को सगुन भेजा गया तो कन्या पक्ष द्वारा भी वर के लिए पहले सगुन के रूप में दही मछली, दूसरे सगुन के रूप में तिल चावल और तीसरे सगुन के रूप में फल फूल और नारियल भेजे गए। घर के परिजनों ने लगन परिछने का काम किया। इसी भाव को लिए प्रस्तुत है एक सगुन गीत।

लोक जीवन में विवाह के अवसर पर शिव विवाह के गीत गाने की प्रथा है। मिथिला में ये गीत नचारी नाम से जाने जाते हैं। प्रस्तुत गीत में शिव को एक भिक्षा मांगने वाले जोगी यानी योगी के रूप में चित्रित किया गया है। उत्तर के राज्य से एक योगी आकर राजा के द्वार पर बैठ गया। दासी के हाथ से वह भिक्षा नहीं लेकर घर की कुंवारी कन्या को देखना चाहता है। गौरी की माँ कहती हैं, हे योगी, यदि तुम मेरी कन्या के प्रति आकर्षित हो तो इसके लिए सिंदूर, आभूषण और बहुमूल्य वस्त्र ले आओ। शिव कहते हैं, हे सासू जी, हमारे देश में ये पदार्थ नहीं होते। हमारे यहाँ तो भभूत, मुंडमाल और मृगछाल से विवाह होता है। आप इन्हीं से मेरा विवाह होने दें।

प्रत्येक परिवार के अपने कुल देवता होते हैं। विवाह या अन्य शुभ अवसरों पर कुल देवताओं का आवाहन किया जाता है। कुल देवता के इस गीत में बताया गया है कि किस प्रकार बांस काटकर मंडप सजाया जाएगा, किस प्रकार कुल देवता के पूजन के लिए उचित सामग्री तैयार की जाएगी। हे स्वामी, सोने के हंसुए से बांस के टुकड़े काटे जाएंगे और चांदी के उपकरण से मंडप सजाया जाएगा। उस मंडप में कुल देवता की पूजा होगी। उसी बांस से पूजा की डलिया तैयार की जाएगी, जिसमें उड़हुल के फूल भरकर पूजा की सामग्री से बंदी देवता की पूजा होगी। उसी देवता ने मेरी मनोकामना पूर्ण की है।

उत्तर राज्य से एक कोयल आकर आम की डाल पर बैठ जाती है और लगन लगन का उच्चारण करने लगती है। कैसा देश है ये जहाँ कोई जागता नहीं, कौन लगन सोचेगा और कौन लगन लिखेगा। कन्या के बाबा चौंक कर उठते हैं और निश्चय करते हैं कि वे विवाह का लगन शुभ मुहूर्त निकलवाएंगे और लगन स्वीकार कर उसे सिर माथे पर धारण करेंगे। एक लगन गीत में ऐसा ही चित्र खींचा गया है।

राम और सीता की कल्पना की गई है। सगुन करने और लगन लिखने के बाद बारी आ गई है राम के रूप में वर के तिलक चढ़ने की। महारानी कौशल्या मचिया पर बैठी हैं, सिंहासन पर राजा दशरथ हैं। आज राम का तिलक है और इस शुभ कार्य में सम्मिलित होने आए हैं वशिष्ठ मुनि, नगर के ब्राह्मण और परिजन स्वजन भी। राजा जनक भी तिलक चढ़ाने को आए हैं। सब मिलकर आज आशीर्वाद दें कि राम अपने भाइयों के साथ जुग जुग जिए। प्रस्तुत है एक तिलक गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिहार का लोक संगीत। कार्यक्रम में आप सुन रहे थे संस्कार गीत। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।

0: प्रस्तुत है ग्रामीण महिला कार्यक्रम घरनी।
1: घरनी कार्यक्रम में सभी सखियन और श्रोता बंधु के निमिषा सिन्हा के प्रणाम। कहथिन अपने सबन कैसन हथिन, अपने ठीक होथिन हम आशा रख रखिये। और सखी हमने अपन परिवार के ठीक रखेला और उनकर सुरक्षा ला हर सुरक्षा पे ध्यान देवे, चाहे वो घर पे रहे या बाहर में। अब सखी बाहर में सड़क पे सुरक्षा ला हमने के खासे ध्यान देवे के चाहे, काहे कि हमने के देश में सड़क दुर्घटना में हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों के जान चल जाए है, जिनमें पैदल यात्री, साइकिल चालक और मोटरसाइकिल चालक के खासे हिस्सा होवे है। और WHO के अनुसार विश्व स्तर पे हर साल 11.9 लाख लोगों के मौत हो जाए है, जे रोज 3,400 मौतों के बराबर है। मतलब कि हर 26 से 37 सेकंड पे एक लोग के जान चल जाए। और हर साल लगभग 5 करोड़ लोग सड़क दुर्घटना में घायल या विकलांग हो जा हथिन। WHO के अनुसार इमें पैदल यात्री, साइकिल चालक और मोटरसाइकिल सवार जैसन असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता के कुल में से आधा से ज़्यादा हिस्सेदार होवा हथिन। ये ला हर साल विश्व स्तर पे सड़क सुरक्षा सप्ताह मनावल जाए है, जे कि इस बार 8 मई से 14 मई तक मनावल जा रही है, जेकरा के UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक या संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में जानल जाए है। ये एगो द्विवार्षिक अभियान है जे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के सहयोग से आयोजित कल जाए है। और ई वर्ष के थीम है जीवन ला सर के पैदल चले के सुरक्षित बनाथिन और साइकिल चलावे के सुरक्षित बनाथिन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा ला 2021 से 2030 के दशक के वैश्विक कार्ययोजना के तहत 2030 तक ला सड़क यातायात दुर्घटना में होवे वाला मौत के आधा करे के लक्ष्य में दिशा में काम कर रही है, जेमें कमजोर ये उपयोगकर्ता जैसे कि पैदल यात्री, साइकिल चालक के सुरक्षा और ब्लैक स्पॉट प्रबंधन के सुधार पे ध्यान केंद्रित कर गई है। वैश्विक गतिविधि में मेक ए सेफ्टी स्टेटमेंट अभियान के तहत संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत जीन टोड द्वारा फरवरी 2026 में भारत में शुरू कर गए ये अभियान है, जे ज़्यादा जोखिम वाला व्यवहार जैसे कि तेज गति से वाहन चलावे के, हेलमेट या सीट बेल्ट ना पहने के, या गाड़ी चलावे घड़ी मोबाइल फोन के उपयोग करे के, ये सब के लक्षित कर गई है। हमनी के सरकार भी सड़क सुरक्षा ला कई तरह के रणनीति और राहत योजना चला रहे थी। दुर्घटना के कम करेला AI आधारित यातायात निगरानी, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और फास्टैग सक्षम निगरानी पे जोर देवे गई है। और बुनियादी ढांचे में सुधार कर गई है, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग के 21 नेटवर्क के संगे तीव्र राजमार्ग विकास 146,000 किलोमीटर, जिनमें सुरक्षा सुविधा, दुर्घटना अवरोधक और बेहतर रोशनी की व्यवस्था पे एकीकृत कर गई है। और हमने के भारत सरकार भी एक ठो अभियान चला रही थी ने, जे PM राहत योजना के नाम से जान जाए है। सरकार दुर्घटना पीड़ित के 1.5 लाख रुपया तक के नकद उपचार प्रदान कर रथिन, एकर पहल शुरू कर गई है। एकर उद्देश्य है कि तत्काल चिकित्सा देखभाल के अभाव के कारण होवे वाला मौत के रोके के। PM राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ित ला कैशलेस, मतलब कि बिना पैसा के उपचार करल जाए है। ई केंद्र सरकार के एगो खासे पहल है, जे दुर्घटना के तारीख से लेके 7 दिन तक के इलाज के मुफ्त करे है। इमें 1.5 लाख तक के इलाज कैशलेस उपलब्ध है और इमें कोई भी आपातकालीन स्थिति में इलाज करवा सका थीं। ई योजना में गोल्डन आवर के बहुते महत्व होवे है। गोल्डन आवर दुर्घटना के तुरंत बाद के पहल का 60 मिनट के समय होवे है। ई अवधि में सही प्राथमिक उपचार और चिकित्सा मिले पे मृत्यु दर के काफ़ी कम कर जा सके है। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार गोल्डन आवर में घायलों के मदद करे के वाले लोगों के

पुरस्कार भी मिले हैं, जेमे पुलिस या एम्बुलेंस के सूचित करे पे 25,000 तक के इनाम मिल सके हैं। दुर्घटना स्थल पे घायल के तुरंत मदद ला आपातकालीन नंबर ला अपने एम्बुलेंस ला 108 पे या पुलिस के 100 या 112 पे कॉल कर सका थीं। और देखी हमनी के गोल्डन आवर के महत्व समझे के चाहिए, कहे कि ई वो अवधि है जे में सही मदद मिले से केको के जीवन बचावल जा सके।

और हेलमेट के उपयोग करे के चाही, काहे कि अपने के जीवन बहुते महत्तम रखे, अपने के परिवार ला और अपने के समाज ला। और देखी हमने के हर समय अगर खुशहाल रह भाई, सड़क पे सुरक्षित रह भाई, तो मन करते कि हमेशा खुशी से गीतनाथ सुने के। और गीत में हम अपने का सुना रही है आज विद्यापति गीत, कलाकार हथिन श्यामा झा, तो सुनती इनका से ई गीत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: अपने के विज्ञापन से पहले सुना रही हल विद्यापति गीत, कलाकार हलथिन श्यामा झा, तिनका के ई गीत ला बहुते बहुते धन्यवाद। और आगू हम अपने के सुने भाई इनका से और गीत। और सखी देखा हमने की धरती पे ऊर्जा सीमित मात्रा में है और ऊर्जा का संरक्षण हम महिला लोग के भी जिम्मेदारी है। कहे कि हर घर में अगर महिला ऊर्जा का संरक्षण कर रहीन तो घर घर से नगर में संरक्षण हो जाए और नगर नगर से देश में संरक्षण हो जाए। तो ऊर्जा संरक्षण में महिलाओं के का भूमिका है, एक से संबंधित वार्ता है। वार्ता के विषय है ऊर्जा संरक्षण में महिलाओं की भूमिका और वार्ताकार हथिन शालिनी सिंह। सुनती इनका से ई वार्ता।
4: ऊर्जा हमारे जीवन का आधार है। आज का युग विकास का युग है। हम आधुनिक सुविधाओं से घिरे हुए हैं। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, मोबाइल, मशीनें और न जाने कितनी तकनीकी इन्हीं ऊर्जाओं पर निर्भर है। ये सभी हमारे जीवन शैली को आसान बनाते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज का जीवन ऊर्जा पर निर्भर है, बल्कि वर्तमान ही नहीं भविष्य से भी गहराइयों से जुड़ा हुआ है। बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल जैसे ऊर्जा स्रोतों के बिना आज का जीवन अधूरा है। आज के समय में इन संसाधनों के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इन सुविधाओं के पीछे जो ऊर्जा लगती है वह असीमित है या सीमित? ऊर्जा सीमित है, इसके स्रोत भी सीमित हैं। जिस तेजी से हम ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं उसी तेजी से हमारे प्राकृतिक साधन समाप्त हो रहे हैं। इसलिए ऊर्जा संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। यह एक अत्यंत शोचनीय विषय है कि अगर ये संसाधन खत्म हो गए तो क्या होगा। इसलिए आज जरूरत है कि हम ऊर्जा को बचाएं। अब प्रश्न यह उठता है कि इसमें महिलाओं की क्या भूमिका है। असल में इस काम में महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका हो सकती है। महिलाएं घर की धुरी होती हैं। महिलाएं घर की जिम्मेदारी संभालती हैं और घर से ही बदलाव की शुरुआत होती है। घर के अधिकांश कार्य जैसे खाना बनाना, बिजली का उपयोग, पानी का उपयोग, इन सब का प्रबंधन महिलाओं के हाथ में होता है। ये प्रबंधन महिलाएं ही करती हैं। यदि महिलाएं जागरूक हो जाएं, तो हर घर ऊर्जा का संरक्षण का केंद्र बन सकता है, क्योंकि महिलाएं घर की आधारशिला होती हैं। ये घर का संचालन करती हैं, रसोई से लेकर बच्चों की शिक्षा तक, हर चीज में उनकी भागीदारी होती है। अगर घर की प्रबंधक ही ठान ले तो हर घर में ऊर्जा संरक्षण का एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाए और यह प्रयास क्रांति का रूप ले लेगा तथा नई पीढ़ी की आदतों में शुमार हो जाएगा। अब हम जरा इन बातों पर भी गौर डालेंगे और अपनी इस चर्चा को विस्तृत रूप से समझेंगे कि आखिर ये परिवर्तन हम महिलाएं किस प्रकार ला सकेंगी। सबसे पहले बात करेंगे रसोई में ऊर्जा बचत की। खाना बनाते समय प्रेशर कुकर का उपयोग करना गैस की खपत को कम करता है। गैस की बचत और समय की बचत होती है यदि हम खाना प्रेशर कुकर में पकाएं। बर्तन ढककर पकाने से भी ऊर्जा कम खर्च होती है। एलपीजी गैस का सही उपयोग और लीक की जांच भी बहुत जरूरी है। यह बचत के साथ साथ सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। आगे हम चर्चा करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण ऊर्जा की, जिसका उपयोग हम घंटे दो घंटे नहीं बल्कि अनवरत करते हैं। दिनचर्या का अहम हिस्सा बिजली। जी हाँ, बिजली जिस पर हम कुछ इस तरह से निर्भर हैं जैसे इसके बिना अच्छे जीवन की कल्पना भी ना कर पाए। इस पर निर्भर या इसके द्वारा उपयोगी वस्तुओं का अगर हम नाम लेना शुरू करें तो सूची खत्म ही नहीं होगी। पर विडंबना यह है कि हम सबसे ज्यादा इसकी बचत को नजरअंदाज कर देती हैं। घर में पंखा, बल्ब, गीजर, मोटर, एसी, हीटर, वाटर हीटर, चिमनी और न जाने कितनी वस्तुओं का उपयोग हम लापरवाही से करते हैं।

0: पंखे का उपयोग ही देखें तो कमरे से निकलने के बाद भी पंखा चालू रहता है। यही हाल रोशनी करने वाले सारे संसाधनों का है। दिन के उजाले में भी बल्ब ट्यूब जलाकर छोड़ दिए जाते हैं। अब यहीं पर जरूरत है हम महिलाओं को घर के सभी सदस्यों को बताने की और आदत डालने की कि अगर जरूरत ना हो तो संसाधनों को बंद कर दें। माँ ही बच्चे की पहली शिक्षक होती है। यदि महिलाएं अपने बच्चों को बचपन से ही ऊर्जा बचाने की आदत डालेंगी तो आने वाली पीढ़ी भी जागरूक बनेगी। टीवी, पंखे, बल्ब, मोबाइल चार्जर जैसे वस्तुओं को अनावश्यक रूप से चालू ना रखें। बच्चों में ये आदत डालना जरूरी है। एलईडी बल्ब का उपयोग भी ऊर्जा की बचत है। बिजली की बचत में महिलाओं का या यूं कहें माओं का बहुत योगदान साबित हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे घर के पंखे, बल्ब और अन्य उपकरणों में ऊर्जा का अनावश्यक उपयोग नहीं करते वे अपने कार्य स्थलों पर भी अनुशासित व्यवहार ही रखते हैं, क्योंकि उन्हें ऊर्जा संरक्षण की शिक्षा घर से मिली होती है। इसी ऊर्जा संरक्षण के प्रयास की अगली कड़ी भी महिलाओं से ही जुड़ी है, क्योंकि हम महिलाएं जो आधी आबादी कही जाती हैं आबादी को पूरा करते हैं। सुबह की पहली किरण से लेकर चांदनी की शीतल आभा में सिमट के सोने तक हम महिलाएं जल, पानी, नीर की धाराओं में उलझी रहती हैं। जी हाँ, पानी भी ऊर्जा का स्रोत है। हम सब यह सुनकर ही बड़े हुए हैं कि जल ही जीवन है। महिलाएं पानी के इस्तेमाल को व्यवस्थित कर सकती हैं, जैसे कम गंदे पानी को पेड़ पौधों में डालना, ब्रश करते समय पानी का सही तरह से उपयोग करना, बारिश के पानी को जमा करना जैसी बातें ध्यान में रखने योग्य हैं, और महिलाएं इस प्रबंधन में माहिर हैं। घर में बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि पानी और ऊर्जा का गहरा संबंध है। पानी को पंप करने, साफ करने और सप्लाई करने में बिजली का उपयोग होता है। घर में ऐसा माहौल और अनुशासन हो कि कोई नल खुला ना छोड़े, जरूरत के अनुसार ही पानी का उपयोग करें। इससे हम अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा की बचत में अपनी भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार महिलाएं आने वाली पीढ़ी को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक बना सकती हैं। ऊर्जा संचयन या संरक्षण की एक कड़ी और है जिससे महिलाएं ऊर्जा संरक्षण की भागीदार बन सकती हैं। वो है सोलर चूल्हे का इस्तेमाल। गांव में महिलाएं बायोगैस, सोलर चूल्हे आदि का इस्तेमाल कर ना सिर्फ ऊर्जा का संरक्षण करती हैं, बल्कि अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा करती हैं। सोलर का उपयोग ऊर्जा संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। ऊर्जा संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने में महिलाएं सबसे आगे रह सकती हैं। जरूरत है ऊर्जा के महत्व को समझने की, ऊर्जा के क्षय से होने वाली असुविधा और संकट को महसूस करने की। यह प्रयास हर परिवार, मोहल्ले, गांव, कस्बा, शहर, बड़े नगर एवं महानगर की महिलाओं को करनी है। ऊर्जा के संरक्षण के लिए महिलाओं को अपने अंदर की ऊर्जा को जागृत करना होगा, क्योंकि अपने घर, परिवार और समाज की धुरी हैं। महिलाएं केवल अपने घर तक सीमित नहीं हैं, वे समाज को भी जागरूक कर सकती हैं। महिला मंडल, समूह शक्ति एवं आंगनबाड़ी इस ऊर्जा संरक्षण की जागरूकता का माध्यम बन सकती हैं। हम सोचते हैं कि हमारी छोटी छोटी आदतों से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही छोटी आदतें मिलकर बड़ा बदलाव लाती हैं। बस जरूरत है तो इस बात की कि एक बल्ब बंद करना, एक बाल्टी पानी बचाना, ईंधन का उचित इस्तेमाल करना, एक पेड़ लगाना। ये छोटे कदम बच्चों में एक ऐसी आदत का संचालन करेंगी जिससे देश और दुनिया को बचाने में मदद मिलेगी। जरूरत है एक संकल्प की, नारी के संकल्प की, कि ऊर्जा को व्यर्थ न गंवाएं। आज जो हम बचाएंगे कल वही काम आएगा। ऊर्जा बचाएं, भविष्य बचाएं।
1: वाह, बहुत नीमन एक वार्ता, ऊर्जा संरक्षण में महिलाओं की भूमिका, और वार्ताकार हलथिन शालिनी सिंह। तो इनका के ई वार्ताला बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत निमन से फरिया के बतलथिन कि हमनी के ऊर्जा संरक्षण में महिलाओं के काका भूमिका है। अगर उठान लेथिन तो हमनी के समाज के बदल सकथिन और ऊर्जा के आगे वाला भविष्य ला बचा सकथिन। तो ये वार्ता के बाद हम सुना रही है अपने के एगो प्यारा सा गीत, और अभी लगन के समय है तो सुनथिन श्यामा झा से विवाह गीत।

वाह, ब्याह गीत श्यामा झा के आवाज में, तो ई गीतला इनका के बहुते बहुते धन्यवाद। और सखी, अब समय हो गई है घरेलू नुस्खा के, और आज अपने के हम साझा कर रही है आम के अचार ला कुछ टिप्स। देखा, अभी बाजार में कच्चा आम मिल रही है, और घर में हमने कच्चा आम के कई तरह के व्यंजन बना रहे, और संगे संगे एक अचार बना के रखेला हर घर ने ना भूला हथिन। लेकिन कभी कभी आम के अचार में कुछ बात पे ध्यान ना देवे पे ये जल्दी खराब हो जाए, ये ला अपने से कुछ नानी दादी के नुस्खा पे ध्यान देथिन, जेकरा से अपने अचार के अगल का साल तक भी खराब ना होते। आम के अचार बनावे घड़ी अपने सबसे पहले नीमन आम के चुनाव करथिन, ये करत होवे के चाहिए, ताज़ा और हरा होवे के चाहिए, एकरा में दाग धब्बा ना रहे के चाहिए। ज़्यादातर आम के अचार

ला आम के हमनी बाहरे से कटवा के लाब ही, जेकरा से ई बिना धोले कटावल जाए। इहे ला छिलका पे आम के लसा रह जाए। यह से कटल आम के अपने फाँक के ओकरा के एक दो घंटा ला पानी में छोड़ देथिन। फिर एक दो घंटा बाद ओकरा के फिर से साफ पानी से धो के ओकरा के धुप्पा में फैला के सुखा देथिन। और धुप्पा दिखा के काटल आम के नमक हल्दी लगा के 4 से 5 घंटा तकला रात या रात भर चरेला छोड़ देथिन। और एकरा के बाद में पानी निकाल के अगल का दिन आम के फिर से धुप्पा दिखा देथिन। इसे अपने के अचार कड़क बनल रहते और ख़राब न होते। अचार के जार के भी धुप्पा दिखातीन, इसे तभी अचार में भरथिन। अचार के जार में तेल इतना होवे के चाहिए कि इमें आम टुकड़ा के टुकड़ा जो रहे डूबल रहे। और अचार लगावे के 3-4 दिन बाद तक भी ओकरा के उलट पुलट करते रहथिन, जेकरा से ई एक समान तैयार होते। और अचार बनावे घड़ी और बाद में हमेशा छुए से पहले हाथ के साफ और सूखल रहे के रखे के चाहिए। और सूखल बर्तन के भी उपयोग करे के चाहिए और चम्मच के भी, तभी अपने के आम स्वादिष्ट बनल रहते और अपने के हमेशा निमन लगते। तो इतना बढ़िया बात कर ली तो गाना सुना वही एगो निमन सा गीत तो सुनथिन देवी गीत श्यामा झा के आवाज़ में।

0: श्यामा झा के आवाज में ई रहल गीत। तो इनका के ई गीत और सभी गीत ला बहुते बहुते धन्यवाद। सखी ई है के संग कब समय ओरिया गले अपने से बातचीत करे में पता न चल। तो अपन निमिषा बहिन के देथिन विदा प्रणाम।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिला कार्यक्रम घरणी, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब हिंदी में समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वित्री कड़गम सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया, जबकि 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। प्रमुख विपक्षी दल डीएमके ने कार्यवाही के दौरान विधानसभा से वॉकआउट किया। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने विजय को सदन में अपना बहुमत साबित करने का आदेश दिया था। विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी को 108 सीटें मिली थीं। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में

0: शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगा स्वामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के एन नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली की मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से ये कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,881 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। सेंसेक्स 201 अंक बढ़कर 74,760 पर, जबकि निफ्टी 77 अंक के साथ 23,457 पर पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत।
2: परिवार समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसमें मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण की नींव रखी जाती है। इस दृष्टि से परिवार ही व्यक्ति के चरित्र और विकास की प्रयोगशाला है। यहीं से वह जीवन के मूल्य और संस्कार ग्रहण करता है और एक सुसंस्कृत मनुष्य बनता है। जैसा कि हम जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर 2015 को एक अनूठी मुहिम की शुरुआत की, जिसका नाम है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस राष्ट्रव्यापी अभियान का मुख्य लक्ष्य है राष्ट्रवादी

विचारों का प्रचार प्रसार। आजादी के समय लौह पुरुष सरदार पटेल ने 562 रियासतों का भारत में विलय कराकर विविधता में एकता का जो स्वप्न देखा, उसी को साकार करने की दिशा में एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा बुलंद हुआ। यह केवल एक नारा नहीं, 21वीं सदी के दूसरे दशक में निर्धारित किया गया एक बड़ा लक्ष्य है, जो समस्त पूर्वाग्रहों और दुराग्रहों का निराकरण करके भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करेगा। पर यह तभी संभव है जब देश का प्रत्येक नागरिक इस मुहिम के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध हो। आए दिन जब हम अखबार में युवाओं के बीच फैली कुंठा, भय, भ्रम, द्वेष, हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें पढ़ते हैं, तो श्रेष्ठ भारत का स्वप्न खंडित होता प्रतीत होता है। इसके कारणों की पड़ताल करने पर हम पाते हैं कि जैसे माली के संरक्षण और देखरेख के बिना पौधा सही आकार नहीं ले पाता, वैसे ही संस्कारहीन बचपन की नींव पर एक सुगठित भविष्य का भवन खड़ा नहीं हो सकता। जैसे पेड़ की वयस्क शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं, इस क्रम में वे टूट जाती हैं, जबकि पौधे की कोमल टहनियों को काटना छांटना आसान होता है, इसी तरह बाल्यकाल ही जीवन के मूल्य और संस्कार आरोपित करने की आदर्श अवस्था है। प्रारंभिक शिक्षा और शिक्षकों का इसमें बड़ा योगदान है, किंतु विद्यालय जाने से भी पहले परिवार बच्चों की प्राथमिक संस्कार शाला है। विद्यालयों की शिक्षा से बालकों का बौद्धिक विकास होता है, किंतु परिवार बच्चों के भावनात्मक विकास की आधार भूमि है, जहां उनके व्यक्तित्व में करुणा, प्रेम, सत्य और सौहार्द जैसे मानवीय गुणों को रोपा जाता है। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहां देश के उन्नयन और सुंदर भविष्य के लिए योग्य नागरिकों को गढ़ा जाता है, उनके व्यक्तित्व निर्माण की नींव रखी जाती है। नींव जितनी पुख्ता होगी, इमारत उतनी बुलंद होगी, और नींव की मजबूती घर के वातावरण पर निर्भर करती है। अरस्तु ने परिवार को सामाजिक जीवन की मूल इकाई माना है, जहाँ बालक मातृभाषा और आचार विचार का प्रशिक्षण पाता है। इसमें माता पिता की प्रमुख भूमिका है। पास पड़ोस और परिजनों का योगदान भी महत्वपूर्ण है। स्वस्थ परिवेश और अच्छी परवरिश से तैयार बालक ही सुसंस्कृत और चरित्रवान युवक बनते हैं। कानून और संविधान के नियमों के प्रति ऐसे सचेतन नागरिक ही श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर सकते हैं। कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत को मानवता का महासमुद्र कहा है, क्योंकि यहाँ विविध संस्कृतियों, जातियों, भाषा भाषियों, मत मतांतरों के लोग एक ही आकाश तले रहते हैं। हम न केवल देश अपितु संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने वाली वसुधैव कुटुंबकम की भावना के प्रतीक हैं। इस मूल भावना की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए जाति, संप्रदाय, धर्म और लैंगिक भेदभाव से ऊपर उठकर भारतीयता के रंग में रंगना होगा। यह कोई त्वरित क्रिया नहीं है, वरन एक लंबी क्रमिक प्रक्रिया है, जिसकी प्रस्थान भूमि परिवार है। परिवार में देखी सुनी गई बातों का, पर्व त्योहार, व्यवहार और संस्कृति का बालक अनुसरण करता है। ऐसे में अभिभावक जाति और धर्मगत भेद का जहर बोने की बजाय बालक के मस्तिष्क को मानवता, एकता और राष्ट्रीयता की अमृत धारा से सींचेंगे, तो निस्संदेह एक स्वस्थ, विचारवान और विवेकशील मनुष्य निर्मित होगा। चारित्रिक बल ही मनुष्य को पशु से अलग करता है। संस्कृति ही चरित्र निर्माण की जननी है। परिवार में स्थापित मूल्य, रीतियाँ, आस्था और जीवनचर्या ही संस्कृति के अंग हैं। प्रत्येक समाज और परिवार में संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता है। भारतीय परिवारों में जिन परंपराओं का निर्वहन होता है, वे सब मानव मात्र को ईश्वर, प्रकृति और पर्यावरण के प्रति समर्पित होना सिखाती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार हम कण कण में ईश्वर का वास मानकर वस्तुतः प्रकृति को ही पूजते हैं। सूर्य नमस्कार करके, तुलसी को जल देकर, पीपल की पूजा कर प्रकृति को नमन करने वाला क्या बड़ा होकर कभी पेड़ों को काट सकता है? हर भारतीय के लिए धरती और नदी माता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी और कावेरी जैसी नदियों को माँ कहने वाला बड़े होने पर क्या नदियों को दूषित कर सकता है? आज भी हिंदू घरों में शमी का पेड़ लगाने को शुभ माना जाता है। हिमालय, विंध्याचल, माउंट आबू और कैलाश पर्वत आदि पहाड़ों को पूजा जाता है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान है।
छठ जैसे पर्व में उदीयमान और अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना की जाती है। भले ही हम चांद पर पहुंच गए हों, किंतु स्त्रियां आज भी करवा चौथ पर चांद की पूजा करती हैं। सृष्टि के इन उपहारों में आस्था व्यक्त करना एक प्रकार से प्रकृति के प्रति

0: कृतज्ञता ज्ञापन ही तो है। जब कोई बालक परिवार में ऐसे आचरण का साक्षी बनता है तो अनायास उसके विचारों में शुचिता का समावेश हो जाता है। ऐसा बालक युवा होने पर न संस्कारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, न सार्वजनिक स्थलों और बाग बगीचों पर गंदगी फैलाएगा, बल्कि नदियों पेड़ों के प्रति अनुराग उसे स्वतः पर्यावरण का संरक्षक बना देगा। परिवारों से संस्कारित नौनिहाल ही देश के कर्णधार बनकर भारत की समृद्ध विरासत की रक्षा करते हैं और बखूबी सिद्ध करते हैं कि परिवार ही श्रेष्ठ भारत निर्माण की प्राथमिक पाठशाला है। हमारे परिवारों में दादी नानी की कहानियों और लोक गीतों के माध्यम से अबोध बालकों के मन में प्रेम और करुणा के भाव भरने की परंपरा रही है। बिना गंभीर उपदेश दिए बच्चे जान जाते थे कि पशु पक्षी इस संसार में हमारे रहवासी हैं। एक ओर गाय हमारे लिए मातृवत श्रद्धेय है तो दूसरी ओर शिव की आराधना में हम नंदी और गणपति के रूप में हाथी को पूजते हैं। चींटियों चिड़ियों और मछलियों को बच्चों के हाथ से दाना खिलाया जाता है। इन बातों में अनायास प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा का मंत्र छिपा है। आज विस्मृत हो रही परंपराओं के पुनर्पालन की आवश्यकता है। जब घर आंगन पास पड़ोस साफ स्वच्छ होगा, नदियां प्रदूषण रहित और पेड़ पौधे स्वस्थ होंगे, हवा शुद्ध और पर्यावरण सुरक्षित होगा, तभी श्रेष्ठ भारत की संकल्पना साकार होगी और इसे क्रियान्वित करना देश के जन जन का दायित्व है, विशेष तौर पर युवाओं का। यह सौभाग्य की बात है कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम है। इस लिहाज से श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को साधना कठिन नहीं है, बशर्ते कि प्रत्येक परिवार अपने बच्चों के लालन पालन में अनुशासन नैतिकता और राष्ट्र प्रेम की घुट्टी बचपन में ही घोलकर पिला दी। आज समाज में प्रेम चुकता जा रहा है, दाम्पत्य में हिंसा और बुजुर्गों का अकेलापन गंभीर समस्याएं बन चुकी हैं। जिस देश में गृहस्थ को एक महत्वपूर्ण आश्रम और विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है, वहां आज लिव इन और समलैंगिक संबंध विवाह संस्था पर चुनौती बनकर खड़े हैं। पर समय समय पर सागर पर उछलती लहरों की तरह ऐसे अंशकालिक परिवर्तन होते रहते हैं, सागर अपने गर्भ में शांत थिर रहता है। हमारी परंपराएं भी दृढ़ता से अपनी जड़ों से जुड़ी हैं। अब भी विवाह संस्कार को ही परिवार की धुरी माना जाता है, जो संतान की परवरिश के लिए सर्वोत्तम परिवेश का निर्माण करता है। सदियों से संयुक्त परिवार उत्तम नागरिकों की निर्माण स्थली रहे हैं, जहाँ 2-3 पीढ़ी के लोग साथ साथ पलते और बढ़ते थे। न बच्चों के लालन पालन की चिंता, न सेवकों की जरूरत, न ही उन्हें क्रश में छोड़ने की व्यवस्था होती थी। जीवन की चौथी अवस्था में अशक्त होने के बावजूद घर के बुजुर्गों को सम्मान से वंचित नहीं रहना पड़ता था, न ही ओल्ड एज होम जाना पड़ता था। आज हम कितनी ही दुखद खबरें सुनते हैं जिसमें कामकाजी माता पिता के छोटे बच्चे और शिशु परिवार की देखरेख न मिलने के कारण दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। कई बुजुर्ग अवसाद ग्रस्त होकर आत्महत्या तक कर बैठते हैं। ये घटनाएं संयुक्त परिवारों के महत्व को सिद्ध करती हैं। कई बार पर्यटन स्थलों पर विदेशियों के साथ दुर्व्यवहार, महिला सैलानियों के साथ दुराचार की घटनाएं सुनकर मन को गहरी चोट पहुंचती है, जबकि भारत वह देश है जहां अतिथि देवो भव का सूत्र गुंजायमान होता रहा है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण खबरें हमें शर्मिंदा करती हैं। कच्ची उम्र में ही बच्चों को बूढ़ों, रोगियों, अतिथियों, भिक्षुकों की सेवा की सीख दे दी जाए तो कभी किसी पर्यटक के साथ अनहोनी नहीं होगी। कोई सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की तस्वीर खींचने या बटुआ झपटने जैसा गर्हित कार्य नहीं करेगा। श्रेष्ठ भारत निर्माण की प्राथमिक पाठशाला परिवार में किताबी पाठ्यक्रम की बजाय जीवन के मूल्य और संस्कार देने वाले शिक्षकों अर्थात माता पिता की गुरुतर जिम्मेदारी है कि वे बच्चों में राष्ट्र के प्रति अगाध प्रेम और एकता की भावना कूट कूट कर भरें, ताकि देश का एक एक नागरिक अटूट संकल्प शक्ति से एक एक ईंट हाथ में लिए अभिनव भारत की नव प्राचीर गढ़ने बढ़ चले। तब वह दिन दूर नहीं होगा जब समस्त विकृतियों से उबरकर हमारा भारत श्रेष्ठ भारत बनकर विश्व के प्रशस्त पायदान पर खड़ा होगा।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक

क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है देशगान महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में।

0: और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले।
1: चुप क्यों हो गए? और सुनाओ।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी।

हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ताल फिल्म के इस गीत को। संगीत AR रहमान का है और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश क्रांतिवीर फिल्म से, अमित कुमार, सुदेश भोसले, पूर्णिमा और सपना मुखर्जी की आवाज में। संगीत आनंद मिलिंद का है और गीत के बोल समीर ने लिखे हैं।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी पटना से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम में। अगला गाना सुनिए बॉम्बे फिल्म से, चित्रा की आवाज में। संगीत यार रहमान का है और गीतकार है महबूब।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म में सुनिए। अलका याग्निक, उदित नारायण और अमित कुमार की आवाज़, गीत के बोल समीर ने लिखे हैं।

हसीना मान जाएगी फिल्म में आप सुनिए संजय दत्त, गोविंदा, अलका याग्निक, सुदेश भोसले और सोनू निगम की आवाज़। गीत के बोल समीर ने लिखे हैं।

0: हाय तेरे को कैसे मालूम था अपना कम पड़ जाएगा यार।
1: अरे सीधी बातें ना यार मोनू, हर गाने के फिनिश में हसीना मान जाती है यार।
2: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ क्षणों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की गई है। सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। वहीं छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 257% से बढ़ाकर 262% कर दिया गया है। इसके साथ ही पांचवें वेतनमान वाले कर्मियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 474 से बढ़ाकर 483% कर दिया गया है। प्रदेश की सरकार ने

0: किशनगंज में सीआईएसएफ ट्रेनिंग सेंटर के लिए 110.12 एकड़ जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को मुफ्त हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के महाविद्यालयों में 132 नए पदों के सृजन की मंजूरी भी मिली है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इन वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने की योजना बनाई है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत महिलाओं समेत अन्य वर्गों को DBT के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेशवासियों से ईंधन की बचत के लिए जरूरत पड़ने पर ही वाहनों का उपयोग करने की अपील की है। श्री चौधरी ने कहा कि ऊर्जा संकट को देखते हुए नागरिकों को ईंधन बचत करनी चाहिए। उन्होंने लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और इसके अधिक इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने कारकेड में वाहनों की संख्या न्यूनतम रखने का निर्णय लिया है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सभी राजस्व कर्मचारी अपने अपने हलके में सप्ताह के 5 दिन कार्य करेंगे। श्री जायसवाल ने अंचलाधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है कि प्रतिदिन कार्यालय में होने वाली बैठक को समाप्त कर राजस्व कर्मचारियों की अपने हलके में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि केवल शनिवार को राजस्व कर्मचारी अंचल कार्यालय में बैठक के में शामिल होंगे, साथ ही आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाइन माध्यम से बैठक में शामिल हो सकते हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसके अंतर्गत पहले चरण में मकान सूचीकरण का कार्य किया जा रहा है। इससे पहले 7 मई से 21 मई तक स्वगणना की प्रक्रिया की गई थी। मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी सह निदेशक रंजीता ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि मकान सूचीकरण के तहत प्रगणक स्वगणना के दौरान दर्ज गलत जानकारी को संशोधित कर सकेंगे। उन्होंने लोगों से इस बीच साइबर फ्रॉड को लेकर भी सतर्क रहने के लिए कहा है। राजधानी पटना, अररिया और कटिहार समेत प्रदेश के 6 जिलों में कल ब्लैक आउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत कल शाम 7 बजे से 7:10 तक पूर्व निर्धारित नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैक आउट किया जाएगा। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन SM ने बताया कि इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सार्वजनिक लाइटें बंद कर दी जाएंगी। जिलाधिकारी ने लोगों से अपने घर, दुकान और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सभी लाइटें बंद रखने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जमुई, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर और सहरसा सहित कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष मानसून का आगमन निर्धारित समय से पहले होने की संभावना है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
2: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-आला सम्राट चौधरी की सदारत में हुई पहली काबीना की मीटिंग में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया गया है। 7वें शरह तनख्वाह वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। वहीं 6ठे शरह तनख्वाह वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 257% से बढ़ाकर 262% कर दिया गया है। इसके साथ ही 5वें शरह तनख्वाह वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स का महंगाई

0: खाता 474 से बढ़ाकर 483% कर दिया गया है। रियासती हुकूमत ने किशनगंज में CISF ट्रेनिंग सेंटर के लिए 110.12 एकड़ ज़मीन मरकज़ी वजारत दाखिला को मुफ्त मुंतकिल करने की मंजूरी दी है। आला तालीम को फ़रोग देने के लिए रियासत के कॉलेजों में 132 नए ओहदों को मंजूरी भी मिली है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ख़रीद पर सब्सिडी देने का मंसूबा बनाया है। इलेक्ट्रिक गाड़ी पॉलिसी 2023 के तहत ख़वातीन समेत दीगर तबकों को DBT के ज़रिए हौसला अफजा रकम दी जाएगी। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने रियासत के बाशिंदों से ईंधन की बचत के लिए ज़रूरत पड़ने पर ही गाड़ियों का इस्तेमाल करने की अपील की है। जनाब चौधरी ने कहा कि तवानाई बहरान को देखते हुए शहरियों को ईंधन की बचत करनी चाहिए। उन्होंने लोगों से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ख़रीद और उसके ज़्यादा इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया है। वज़ीर आला ने अपने कारकेड में गाड़ियों की तादाद कम अज़ कम रखने का फ़ैसला लिया है। वज़ीर इस्लाहात एराजी व महसूलात दिलीप जायसवाल ने कहा है कि सभी महसूलात मुलाजमीन अपने अपने हलके में हफ्ता में 5 दिन काम करेंगे। जनाब जायसवाल ने सर्किल अफसरान को जारी हिदायत में कहा है कि रोज़ाना दफ्तर में होने वाली मीटिंग को ख़त्म करके महसूलात मुलाजमीन अपने हलके में मौजूदगी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ सनीचर को महसूलात मुलाजमीन सर्किल दफ्तर की मीटिंग में शामिल होंगे, साथ ही ज़रूरत पड़ने पर ऑनलाइन के ज़रिए मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। मर्दमशुमारी 2027 का पहला मरहला 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसके तहत पहले मरहला में मकान की फहरिस्त साजी का काम किया जा रहा है। इससे कबल 7 मई से 21 मई तक खुदशुमारी का अमल किया गया था। चीफ प्रिंसिपल मर्दमशुमारी अफसर नीज़ डायरेक्टर रंजीता ने आकाशवाणी समाचार से खसूसी बातचीत में बताया कि मकान फहरिस्त साजी के तहत शुमार कुनिंदगान खुदशुमारी के दौरान दर्ज गलत मालूमात को दुरुस्त कर सकेंगे। उन्होंने लोगों से इस बीच साइबर फ्रॉड को लेकर होशियार रहने के लिए कहा है। राजधानी पटना, अररिया और कटिहार समेत रियासत के 6 ज़िलों में कल ब्लैक आउट मॉक ड्रिल का इनाकाद किया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत कल शाम 7 बजे से 7:10 तक कबल से तयशुदा शहरी तहफ़ुज़ कोशिशों के तहत ब्लैक आउट किया जाएगा। पटना के ज़िला मजिस्ट्रेट त्यागराजन SM ने बताया कि इस दौरान इमरजेंसी खिदमात को छोड़कर सभी प्राइवेट लाइटें बंद कर दी जाएंगी। ज़िला मजिस्ट्रेट ने आवाम से अपने घर, दुकान और सनती इदारों की सभी लाइटें भी बंद रखने की अपील की है। महकमे मौसमियात ने आज जमुई, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर और सहरसा समेत कई अजला में बारिश और बिजली गिरने के पेश नज़र अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गर्द आलूद आंधी चलने की भी तंबीह जारी की गई है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि इस साल मानसून की आमद मुकर्रा वक्त कबल होने का इम्कान है। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है रोजगार सूचना। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आलोक में कुल 1230 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनायक अनुदेशक हवलदार इंस्ट्रक्टर के कुल 122 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

0: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF ने कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के कुल 9,175 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु पद के अनुसार 23 से 27 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.crpf.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग SSC ग्रेड सी और डी के लिए स्टेनोग्राफर के कुल 731 पदों भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु ग्रुप डी के लिए 27 वर्ष एवं ग्रुप सी के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ssc.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब दोपहर समाचार प्रसारित होंगे आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और IPL क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है।

0: एडापड़ी पलानीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। बिपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
2: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष सीबीएसई की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। सीबीएसई ने एक बयान में बताया कि 17

0: 68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेज मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
1: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
0: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रदीप वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक

0: बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल पहली जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अधिक संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9, 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदाम्बी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14, 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम, सुख समृद्धि के रचे आयाम।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है।

0: इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी अर्मी हूँ।
1: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
1: तो श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर
0: जी,
1: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
0: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए
1: जी।
0: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं। और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
1: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
0: जी विमलेश जी, नौ तपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
1: जी,
0: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
1: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती है और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
0: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
1: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
0: जी,
1: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
0: तो विमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
1: जी अजीत जी, श्रोताओ, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
0: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
1: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
0: जी,
1: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
0: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
1: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
0: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
1: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80 से 90% तक पानी होता है।
0: जी,
1: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
0: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
1: जी,
0: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
1: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
1: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।

0: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
1: अकर बकर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
2: अब तेरी बारी है।

0: था, कौआ लाया कंकर, खड़ी में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
1: बहुत अच्छी कहानी थी भाई, कौवे ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
0: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
1: हाँ चलो चलो, वहाँ पे पानी
0: चलो,
1: होगा।
0: चलते
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुई। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
3: कौन है?
1: दीदी,
3: कौन है?
1: दीदी।
0: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
1: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
0: हम थोड़ा पानी पी लें?
4: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
1: हाँ,
0: हाँ
1: बड़ा ठंडा पानी था।
0: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
4: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो, मैं कौन हूँ?
1: कौन है आप?
4: नहीं समझे?
1: नहीं।
4: अच्छा, तो फिर ये पहेली सुनो।

0: जलते हैं।
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम।
1: अब गर्मी अम्मा है।
2: अब बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
0: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
2: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू। यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी
2: शुरू हो जाती है। हाँ
0: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
2: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
0: चलो।
3: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
2: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
3: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
0: अम्मा, आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा, ये आपके हाथ में क्या है?
2: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
2: अम्मा, दे दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
2: सोचो, मेरे मौसम का सबसे स्वाद

0: फल जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
2: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
2: कौन सा फल है?
1: कौन सा फल
0: नहीं समझी?
1: है? नहीं।
0: अच्छा तो फिर सुनो,

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: आ,
2: आ, तुम तो बड़ी समझदार हो।
3: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, कुल्फी वाला बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो,
2: आइसक्रीम। बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
1: अरे कोई खाने को दे तब ना।
2: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
4: लाओ अम्मा,
1: लाओ अम्मा,
2: लो।
1: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
2: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
2: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
4: Sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hills, the prelude to the final assault.
5: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
3: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप

भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में ही इतनी ठंड है, तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
3: हाँ।
2: लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: हाँ, हाँ। पहनावे से तो कोई कबायली लगता है।
2: हाँ।
3: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
2: हाँ।
3: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: हाँ, आने दो, आने दो।
4: ए, कौन हो तुम? रुका, रुका। जाओ वहीं, रुक जाओ, रुका।
5: कौन हो तुम?
6: साहब, मैं एक चरवाहा हूँ साहब। मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
5: क्या सूचना?
6: साहब, साहब, दुश्मनों के बारे में।
5: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
6: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
6: सर, हम एक चरवाया है।
0: आगे बताओ।
6: सर, ये 3 मई की बात है। कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
6: साहब, मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा हैं।
0: क्या?
6: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
0: कितने लोग रहे होंगे?
6: साहब, पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
0: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
6: साहब, मेरा गांव है घरकोन। ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
0: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
1: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
0: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही

0: पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्को, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
1: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
0: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
1: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
0: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
1: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
2: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
3: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
2: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
4: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
2: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
3: जी,
5: यस सर।
2: ये मेज के चारों ओर।
3: जी सर।
5: उधर से।
2: हाँ। जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
3: जी सर।
2: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
3: जी सर।
2: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
3: जी सर।
2: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
3: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
6: यस सर।
2: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
3: जी जी सर।
2: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
3: सर, जी सर।
2: कोई शक?
3: नो सर।
2: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
6: यस सर।
5: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
7: धीमे बोलो, धीमे।
5: जी,
7: उन्हें पता ना चल जाए।
5: जी सर।
7: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
5: जी।
7: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
5: ठीक है सर।
7: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
5: जी सर। जी सर।
7: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे।

0: पास। अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू कर रेंगेंगे।
1: जी सर।
0: कोई भी उठकर नहीं छोड़ेगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
1: हाँ सर।
0: Everybody ready?
2: Yes sir.
0: Yes sir. अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज रहे हैं। इसी के साथ हमारी आज की प्रथम सभा समाप्त होती है। हम पुनः आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:28 से। जय हिंद।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी सप्रेम नमस्कार। क्या हालचाल?
1: बस सोनाली बिल्कुल हालचाल एकदम ठीक है।

0: और तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मुझे लगता है सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे, और सब इंतजार भी करें कि आज सोनाली और मंजरी बहुत दिनों बाद मिले हैं इस सखी सहेली मंच पर, और ये इतनी सारी बातें लेकर के आई हैं, तो देखते हैं ये लोग क्या क्या करती है ना। तो इशारे तो समझ ही रहे हैं ना कि सब लोग, आज कुछ खाने पीने की बात भी होगी, कुछ बताया भी
1: बहुत
0: जाएगा।
1: मजेदार चटपटी चाट का जिक्र
0: हाँ,
1: होने वाला
0: क्योंकि
1: है।
0: दो आरजे के साथ में दो धुरंधर कुक भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, है ना। कोई किस में
1: जी
0: महारत हासिल रखता है, कोई किस में महारत हासिल रखता है ना सोनाली।
1: बिल्कुल।
0: तो आज तुम कुछ कहने वाली थी ना, कि मतलब गाने सुनाने सुनाने से पहले कुछ तुम्हारा था मन।
1: मुझे ना ये गानों की आवाज तो बाद में आएगी, पर ये आपकी जो छन छन छन छन चूड़ी की जो आवाज आ रही है ना, वो बार बार आपके हाथों की तरफ आकर्षित कर रही है
0: अच्छा,
1: कि क्या है इतनी सुंदर चूड़ियां हाथ में पहनी हुई
0: तो
1: है।
0: एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम अपनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपनी दे देती हूँ, है
1: ये
0: ना।
1: बातचीत बाद में करेंगे, पहले हम विषय बता
0: विषय
1: दें।
0: बता देते। देखो, व्यंजन की बात आज करने वाले हैं, तो उसमें भेलपुरी और दाबेली है ना, जिसमें तुम भेलपुरी मेरे लिए बना के नहीं लाई, बोली दाबेली बाद में खिला
1: ये
0: दूंगी।
1: जो ऐसे आइटम होते हैं ना, भेलपुरी और दाबेली, ये ऐसे बनाए और तुरंत खाए, बना
0: हाँ,
1: के
0: ये बात तो
1: लेकर नहीं
0: सही
1: आ
0: है,
1: सकते
0: सही
1: ना
0: बात है,
1: इसको, है ना।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने। और शब्द हमारे, विचार आपके में, हम बात करेंगे आज आत्मविश्वास के ऊपर।
1: जी, जो सबसे जरूरी है हर क्षेत्र में, यानी अगर जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो अपनी जो है ना बेहतरीन पेशकश दे सकता
0: और
1: है।
0: इस शब्द पर तो हमारे साथी लिखकर संदेश भेजेंगे भेजेंगे, और उन्हीं को तो हम पढ़ने वाले हैं ना।
1: और साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम पश्मीना साड़ी के बारे में जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है। और साथ ही
0: खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते
1: ये
0: हैं।
1: सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि भाई मंजरी जी, आप खाने के लिए जीते हैं सिर्फ जीने के लिए खाते हैं?
0: नहीं भाई, तो मैं तो भाई जीने के लिए खाती हूँ, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना कि वो सब एक जैसा ही हो
1: भाई मंजरी जी, मैं तो खाने के लिए जीती हूँ, है ना,
0: ना।
1: क्यों मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, इतने अच्छे अच्छे आइटम्स है, इतने
0: तो
1: सुंदर
0: तब भी आप
1: सुंदर
0: मेंटेन है ना, ये
1: तो
0: बात हो
1: वही तो
0: जाती है।
1: बात
0: तो
1: है
0: इसमें
1: कि
0: हमें संतुलन रखना है ना।
1: हाँ, पौष्टिक खाना खाना है और उसमें अपने स्वाद का भी ध्यान रखना है, वही तो जीवन, उसी में तो जीवन का सही में आनंद है ना,
0: बिल्कुल
1: ये
0: आनंद है, और
1: संतुलन जरूरी है।
0: संतुलन बहुत जरूरी है, और गीतों का भी तो आनंद है ना, तो क्यों ना पहले गीत सुनाते फिर बातें करते हैं।
1: जी, तो सुनते हैं गीत।

0: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन, बोरीवली पश्चिम, मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो सोनाली, हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में, है ना?
2: तो कश्मीर चले?
1: बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियाँ, जिन्हें पश्मीना साड़ियाँ भी कहा जाता है, कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है जो 4 अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मी नेह से लिया गया है, जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है।
2: और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ियाँ आमतौर पर सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है, क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है, जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है।
1: और पश्मीना ऊन और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली पश्मीना साड़ियों में कश्मीर

0: कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियाँ बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियाँ, कश्मीरी रेशम की साड़ियाँ, क्रेप साड़ियाँ और जॉर्जेट साड़ियाँ। यानी कितनी खूबसूरत साड़ियाँ, जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है, तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी वो,
1: कितनी
0: है ना।
1: पतली होती होगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक होती हैं। और कश्मीरी साड़ियाँ कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियाँ हैं। और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है। और कश्मीरी साड़ियाँ खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती हैं, जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे कि आरी वर्क और तिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिज़ाइन दिखाई देते हैं।
0: बिल्कुल। और कश्मीरी साड़ियाँ अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंग तक कई रंगों में उपलब्ध होती हैं। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफ़ेद, बेज, काला, पीला और नीला हैं। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियाँ आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है।
1: अब जैसे प्लेन स्टाइल यानी प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियाँ चटक रंगों की होती है, जिनमें कोई मोटिफ कढ़ाई, डिज़ाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें एक खास आकर्षण होता है और इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये साड़ियाँ ऑफिस या कार्यस्थल के लिए एकदम सही है। प्लेन कश्मीरी साड़ियाँ कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं, जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी, सफ़ेद, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं।
0: और कानी बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी बुनाई शैली है, जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफ़ी समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियाँ उत्कृष्ट वस्त्र हैं और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती हैं। ये भव्य साड़ियाँ किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प हैं, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजन पूर्ण समारोह। ये साड़ियाँ हर जगह शोभा बढ़ाती हैं। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियाँ, ये वाली पश्मीना की साड़ियाँ पहन के निकलती होंगी, तो चार चांद लग जाते होंगे महफिल में, है ना।
1: सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये एक अनूठी यहाँ की शैली है जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टांकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियाँ कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं।
0: और सोजनी कश्मीर की एक बहुत ही अनूठी कढ़ाई शैली है, जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न को बनाया जाता है और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की जा सकती है, यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई, आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत यह है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी, लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिज़ाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है।
1: और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियाँ और पश्मीना सिल्क साड़ियाँ पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध हैं। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं, जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर, बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू, ज्यामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियाँ रेशम में सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौक़ों पर पहना जा सकता है।
0: और कश्मीरी साड़ियाँ दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती हैं। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिज़ाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियाँ 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध हैं और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है। फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानीपूर्वक हाथ से काता जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं। रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस तरह काफ़ी मेहनत लगती है इन साड़ी को बनाने के लिए, और 1-2 महीने का समय लग जाता है। बहुत अच्छी डिज़ाइन उभर कर आती है। और सोनाली, हमारी एक साथी ने कमेंट भी लिखकर भेजा है, तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ।
1: हाँ
0: साड़ियों का संसार, पश्मीना ये जम्मू कश्मीर में बनाई जाती है, वहाँ की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ महीने पहले मेरे घर में शादी थी, तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी। क्या बात है। और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम मुलायम होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूट और शॉल भी

0: मिलते हैं, एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्ड्रोब में। बिल्कुल, आपकी वार्ड्रोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना।
1: अब हम भी खरीदने वाले हैं, हमारी सखी ने खरीद लिया, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कि
0: जी
1: हमें भी पश्मीना साड़ी खरीदना है।
0: बिल्कुल।
1: बहरहाल गाना सुनना है, सुनते हैं गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो
1: भर
0: हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भर के
0: संदेश
1: कमेंट्स लिखे
0: भर
1: हैं।
0: भर के लिखे हैं कमेंट्स। और देखो मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना, वो तो
1: बहुत
0: बहुत
1: महत्वपूर्ण।
0: महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीज़ों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज़ हमारे पास होगी या नहीं होगी। हम सब चीज़ें खरीद लाते हैं। हमारे यही कारण है कि हमारे देश में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देवी को याद करते हैं। और देखो पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई और रात का खाना सादा, सब सादगी पूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन धीरे
1: बहुत
0: धीरे
1: स्वस्थ रहते
0: बहुत
1: थे
0: स्वस्थ
1: और
0: रहते थे।
1: काम कितना करते थे पुराने जमाने के लोग।
0: बहुत लोग, सब लोग घर में चक्की भी चलना है तो
1: हाँ,
0: गेहूं भी पछोरना है, ये
1: पानी
0: सारे काम,
1: भरना
0: पानी
1: है,
0: भरना है,
1: कुएं से पानी निकालना है,
0: हाँ
1: कितना सारे काम
0: बहुत सारे
1: करते थे।
0: काम थे, तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भाग दौड़ की जिंदगी जो हो गई है, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है। उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को, वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं।
0: हाँ
1: पर ऐसी बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खा के, यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खा के ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे तो हमारे भोजन में तो
0: आहार
1: इतनी आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
0: ते हर सीजन में देखो, हर सीजन की सब्जियां
1: हाँ
0: मिलती, हर सीजन के फल मिलते हैं। अगर हम उनको भी खाएंगे ना तो हम स्वस्थ रह सकते हैं,
1: रह
0: जीवन
1: सकते हैं।
0: गुजार सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाएं, जंक फूड पर जाएं,
1: जी
0: है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है। यानी ईट टू गो, ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा, तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी ये काम की, मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का रस स्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है
1: एक
0: जी।
1: हमारी सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूँ उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई, तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें जीने के लिए खाना चाहिए, ना कि केवल खाने के लिए जीना चाहिए। संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुन ले,
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

0: मंजरी
1: तिरक रही थी इस गाने पर, है ना। जब
0: हाँ
1: अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो
0: हाँ
1: हमारी पायल थिरकने लगती है, हमारी
0: हाँ
1: पायल
0: भाई मैं
1: बजने
0: देख रही
1: लगती
0: थी। तो देखो हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है, सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में ना जाने खाने को मिले या ना मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है
1: बहुत सारे हमारे
0: हमारे, अच्छा
1: साथियों
0: एक
1: ने।
0: साथी और लिखते हैं, सुना ली हम पढ़ लेते हैं कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होती रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भरकर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए,
1: और
0: है
1: अब
0: ना।
1: लेते हैं एक
0: अंतराल
1: ब्रेक।

0: तो सोनाली क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से?
1: बहुत सुंदर हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा

0: जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
1: क्या
0: क्या
1: बात
0: बात
1: है।
0: है, बहुत सुंदर
1: और
0: बात।
1: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजी है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सुनाली, एक किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के एक खिड़की थी, तो वहां खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की है काफी हैवी थी, वो चढ़ी वहां बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी, और अंकल चिप्स थे उसके, चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूँ फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी,
0: नहीं
1: ऐसा
0: देखिए,
1: लग रहा था।
0: खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो वो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी अब बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए, जैसे हमने भेलपूरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊंगी कि
1: क्या बात
0: ऐसा
1: है।
0: नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते
1: ले
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं, मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए, सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए, डब्बा बंद और गैर मौसमी फल सब्जी और अनाज से बचना चाहिए, अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए। यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ उगने वाली जो सब्जियाँ होती हैं, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा
1: बिल्कुल।
0: होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं, वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने जो है ना जाम अमरूद खाते थे,
1: हाँ,
0: बेर
1: सारे
0: खाते
1: फल।
0: थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन्स मिनरल्स मौजूद
1: अरे,
0: होते हैं।
1: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे
0: खाया
1: मतलब
0: जाता
1: खाया
0: है।
1: जाता है, चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो नहीं बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है।
0: तो उन्हें कैसे मालूम होगा, हमने ही नहीं बताया तो।
1: हाँ, हम नहीं बता रहे उनको, हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए
0: जी।
1: थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही। कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ही ज्यादा खा लिया जाता है, तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर तो सभी सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें ले लिखी हैं। और हम अपने साथियों से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है। वैसे
0: पढ़ने
1: मैंने
0: में
1: आपका
0: दिक्कत
1: पढ़
0: नहीं
1: लिया,
0: आती है
1: हाँ, वो
0: ना।
1: इजली सी आंखों में अटैक कर जाता है,
0: जी।
1: हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है, ऐसी कोई
0: एक हमारे
1: दिक्कत नहीं।
0: साथी लिखते हैं, मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद, विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों, व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। ये सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है। मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ ऊर्जावान रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सुनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब तक है जीना, जब तक खाएंगे खाना। तो ये बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार आपका संदेश हिंदी के शब्दों में आए, है ना? और क्या करें, सुने गीत,
0: सुन लेते हैं गीत।

0: तो सुनाली, कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं, बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है। इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
0: क्या बात है। और हमारे साथी जो है, उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्माना, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार, शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, एक प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियट कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण ये दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियट के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं, वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए, उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए। परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं, बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे लगता, तुमने ये पढ़ा है
1: ये पढ़
0: क्या? अच्छा, तभी
1: दिया
0: तुम इशारे कर रही थी। चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो देख, दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं, वे ही खाने के लिए जीते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवा पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत, जो लोग खाने के लिए जीते हैं, खाते हैं, वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलित भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते, कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों, कि लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा, तो पता चलता है दूसरा इशारा।

0: कर रहा होता है ना। ये
1: अब
0: टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है
1: लेकिन
0: ना, इसमें मजा आता है, जिसको लगा रहे मैंने दोबारा पढ़ लिया।
1: पर अगर हमने गलती को है ना, अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि हाँ
0: हाँ
1: हमने गलती कर ली,
0: तो
1: तो
0: कोई
1: वो
0: दिक्कत
1: आत्मविश्वास भी
0: नहीं,
1: अच्छा लगता है
0: बिल्कुल
1: ना।
0: बिल्कुल।
1: आज ये शब्द हमारा, विचार आपके इस विषय में, हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। वो सचमुच मंजरी, आत्मविश्वास जो ऐसी ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है ना, तो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर
0: बिल्कुल
1: वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
0: बिल्कुल। हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें हम अपनी अक्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो, वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौतियों का सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए। मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी आपने।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, ना कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब
0: क्या
1: एक दिन।
0: बात है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है। वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचे कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी। पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें, तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं, तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास से ही वो शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं, तो उससे पहले एक गाना सुन लें, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि मुझे सब पता है, इसका मतलब पता ना होने पर भी सीख लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है। क्या
1: क्या
0: बात
1: बात
0: है,
1: है।
0: बहुत सुंदर
1: और
0: विचार।
1: इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर, जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी।
0: तो
1: तो
0: बता
1: हमारे
0: दीजिए।
1: साथियों ने भेजी, तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता और सूखे नारियल को भून कर पीस कर तैयार कर लीजिए। मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला, 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है, जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है। जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गर्म करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला, मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेब डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें। एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में 1 बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं, है ना।
0: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिलाते हैं तो
1: बहुत अच्छा
0: बच्चे बड़े
1: लगता
0: खुश हो
1: है।
0: जाते हैं ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और उन्हें उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं क्योंकि बनाना जो है आसानी होता है। बस
1: बिल्कुल
0: तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहें, वरना
1: बिल्कुल
0: बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी
1: बिल्कुल
0: सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है। इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी, गिरगांव, जुहू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री इन्होंने बताया है कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी या चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे
1: क्या
0: एक मैं
1: बात।
0: पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के
1: क्या
0: बारीक
1: बात
0: बारीक
1: है।
0: छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना, फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए
1: क्या बात
0: और ये
1: है।
0: पौष्टिक भेल सर्व कीजिए।
1: हाँ,
0: यानी
1: बहुत
0: हमें
1: खास बात है आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े
0: हाँ यानी
1: और
0: आलू के
1: रागी।
0: बदले हम
1: हाँ,
0: शकरकंद
1: शक्करकंद,
0: का इस्तेमाल कर सकते
1: बहुत
0: हैं
1: अच्छी, सुंदर
0: और
1: बताई,
0: बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की
1: रागी की
0: सेव
1: से।
0: यूज कर सकते, या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही खुश रह सकते, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खा के भी हम

0: खुश रह सकते हैं।
1: बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि
0: गीत
1: कमेंट्स पढ़ोगी?
0: एक कमेंट्स पढ़ दीजिए।
1: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली, कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तुम्हें मिला।
0: दाबेली, कच्ची दाबेली है, डबल रोटी, देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है, और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना, और पैकेट बना के बना सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है।
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: अब गीत सुन ले, सुनते हैं गीत।

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम
1: देखो हमारे
0: खाने की चीजों से, भले ही
1: साथ
0: डॉक्टर कितना भी मना कर दे कि ये
1: लेकिन
0: नहीं खाना है वो नहीं खाना
1: अरे
0: है।
1: आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, तो हम उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले, और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं
0: और फिर
1: व्हाट्सएप
0: क्या
1: पे।
0: होता है ना, जब हम मॉल में जाते हैं ना तो उस वक्त हमें आ जाता है, अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी
1: हाँ
0: थी, उसमें ये डालना है, ये पाउडर डालना है, ये सब डालना है, और लेकर आते
1: एक्स्ट्रा
0: हैं
1: शॉपिंग कर लाते हैं, फ्रिज पूरा भर लेते हैं
0: और
1: चीज
0: कभी
1: बटर
0: कभी
1: से
0: बनाते भी नहीं है, वो पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो
1: रखे रहते।
0: जाता है।
1: देखो हमारे साथी लिख कर बैठते हैं, रेसिपी सुनकर नाना करते दाबेली बनाकर खा भी बैठे हैं। और एक लिख रहे हैं कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। और एक लिखते हैं खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते हैं, इस बारे में इंदौरियों से पूछे, हर इंदौरी खाने के लिए जीता है, किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई यहाँ नाश्ते खाने

0: कि इतनी विविधता जो है, वाकई में सही बात है
1: सचमुच
0: हमारे
1: इंदौर
0: देश
1: बार
0: में।
1: बार जाने को
0: जी,
1: जी करता है।
0: और देखो हमारे हर शहर में, हमारे देश में कई सारे शहर हैं, सबके अलग खान पान है, सबका अलग स्वाद है। तो जब जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए, चाहे आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप गुजरात आ जाइए, चाहे महाराष्ट्र आ जाइए, राजस्थान चले जाइए, और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सभी शहरों में जाइए, वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए,
1: और खूब
0: है ना।
1: खाइए और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए, ताकि
0: बिल्कुल।
1: है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम
0: फिलहाल
1: स्वस्थ रहेंगे।
0: फिलहाल तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी हैं उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा,
1: और
0: है
1: आप
0: ना।
1: सभी को सोनाली पाठक
0: और मंशी वर्मा का नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
0: सखी सहेली।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं। घर से निकले थे हौसला करके, लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां, उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके

0: दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया, यहां हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
0: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
1: जी, वो बहुत प्यारा जमाना था। और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया। और वो ऊर्जा, वो उत्साह, वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी, खुश हुआ जी।
0: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
1: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा, अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो मैदान हो, गांव हो, बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से काम हुआ और हो रहा है।
0: बिल्कुल, अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस्ड था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
1: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में, और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुन कर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए, सुनने के भी, सीखने के भी, बोलने के भी, समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए। और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाज़ें कानों को इतनी अच्छी लगती हैं, फिर वो फिल्म म्यूजिक की तो मैं बाद में बात करूँगा, जिनको हम सुनते थे, चाहे रेडियो ड्रामा हो, अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे।
0: जी जी,
1: उनकी आवाज़ सुना, आम अनाउंसर, न्यूज़ रीडर्स, ये सब जो है। तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते हैं, अच्छा अनाउंसर है आप, ये अनाउंसर का वो दर्जा था मतलब, और वो पॉपुलरिटी थी। तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं आपको, लेकिन अगर अनाउंसर है आप, अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है। फिर रेडियो सिंगर होना, रेडियो आर्टिस्ट होना, ये बड़ी बातें थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे, तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता, तो ये सब हुआ। और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी इंद्र शुरू हुआ था।
0: जी जी,
1: तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक के रूप में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे, पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये, कि आज मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उस दरबार का फिल्म म्यूजिक का तो खैर कहना ही क्या
0: जी।
1: तो जिनको, जिस चैनल को सुन सुन के, वो संगीत सरिता, वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें, बड़े बड़े संगीतकार, फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिन को सुन के हम लोग बड़े हुए, विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा
0: जी,
1: और न सिर्फ आऊंगा
0: बल्कि हेड करेंगे
1: उसका कार्यक्रम का, मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा, और पूरे चैनल को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा। तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
0: वाह वाह वाह,
1: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ, और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ। कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस

0: एक सेप्टेम्बर में क्या नाम लूँ, और पूरी अच्छी टीम और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके, और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया
1: क्या
0: भर का।
1: बात है, क्या बात है। मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युववाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युववाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताज़ा हो गई होंगी। मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताज़ा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युववाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युववाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था, या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
0: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, आपको एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा,
1: बिल्कुल
0: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज़्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर का आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था,
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े
0: है?
1: दिग्गज
0: बड़े
1: लोग वहां
0: दिग्गज
1: से आते
0: लोग,
1: हैं
0: नंदलाल शर्मा जी,
1: जी,
0: फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहाँ पे काम
1: गंगा
0: कर।
1: प्रसाद जी।
0: हाँ, तो ये सब जो उसका मेयार था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
1: जी जी
0: और
1: जी
0: कर रहे थे, है ना? तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उत्तर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पे उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
1: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
0: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि
1: जी
0: मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है। हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो
1: वाह,
0: सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट, और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए। तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला, हम लोग
1: यहां
0: बड़े।
1: एक पल के लिए रुकना
0: जी
1: चाहता हूं कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो
0: जी
1: जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है, इसके
0: हाँ,
1: बारे में
0: बिल्कुल
1: थोड़ा
0: सही है,
1: बताएं।
0: वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं,
1: जी
0: तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर, और मेरी पिताजी जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे, उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ। लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार, हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहां से निकल चुके थे
1: जी
0: नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई। तो ये है आंध्रा और जयपुर का सेतु।
1: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस
0: क्लियर?
1: बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का, एक
0: बिल्कुल
1: बुनियाद का
0: बिल्कुल
1: शहर रहा है, और
0: जी
1: आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और
0: जी
1: संगीत की जयपुर में रही है। तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
0: हाँ, ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसडी जा चुके थे। हाँ,
1: ओके
0: और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे, और एक सीखने का प्रोसेस जारी था।
1: जी
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का
1: वाह,
0: तुगलक,
1: क्या बात है
0: जो इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था,
1: जी,
0: क्लासिक प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूँ कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको क्रेडिट नहीं मिला, उनको काम नहीं मिला, जिसके वो हकदार थे वो दिलीप कुमार थे, वो
1: बिल्कुल
0: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ। तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग, और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे, हम लोग देखते थे अंधायुग, ये
1: जी
0: सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के

0: तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे, थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक के कंसर्ट्स भी होते थे
1: बिल्कुल,
0: जयपुर
1: आज जयरंगम जैसी
0: में।
1: चीजें
0: हाँ
1: चल रही हैं, तो कैसा लगता है आपको
0: नहीं, बहुत
1: कि
0: अच्छा लगता है, बहुत
1: परंपराएं
0: अच्छा
1: आगे
0: लगता है।
1: हैं?
0: मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के और प्लेज लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे और अच्छा चल रहा है मुझे।
1: जी, और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे। मुझे लगता है कि जिस जिस दौर की हम बात करें, उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए, तो
0: ओ
1: हाय रे
0: बढ़िया।
1: वो दिन क्यों ना आए,
0: हाँ,
1: अनुराधा
0: बहुत
1: फिल्म का
0: अच्छा है,
1: गाना
0: बहुत
1: है
0: अच्छा
1: ना,
0: है।
1: ये
0: हाँ
1: गाना
0: मेरा
1: सुनते हैं।
0: पसंदीदा गाना है।
1: बिल्कुल।

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था, जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुनाओ,
0: बिल्कुल,
1: हाँ, तो वो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल वो राज मंदिर, और उसमें वो राज वाला वो भी था,
0: जी शाही,
1: जंजर शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे फिल्म, तो बाद में थिएटर पहले देखते
0: हाँ
1: थे।
0: वो टूरिस्ट मैप पर
1: हाँ
0: था
1: हाँ
0: वो।
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका,
0: जी
1: तो राज मंदिर, जेम, पोले विक्ट्री, ये सब उस वक्त तो फिल्में भी मतलब आज कहीं नहीं इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी
0: जी
1: बात होती है
0: बिल्कुल,
1: ना, इसने 100 दिन पूरे किए हैं। तो उस वक्त वो जमाना था जब जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर थे, और फिल्मों का तो खैर दोहर ही अलग था, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे, ये सब भी होता था।
0: जी
1: और
0: ये
1: तो
0: हुआ है, लेकिन स्कूल से
1: जमाना
0: भाग के देखना भी हुआ है।
1: उपकार जैसी फिल्म हमने
0: जी
1: देखी थी।

0: और कई फिल्में थी, और लंबी लंबी लाइनें,
1: जी
0: और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात ना। तो ये वो दौर देखा है हमने, जबकि थिएटर में जाकर फिल्म देखना और स्कूल से भाग के भी देखना और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब
1: बिल्कुल
0: दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध
1: जी
0: भारती चल रहा है, फिल्मी गाने कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था और म्यूजिक
1: जी
0: ही था,
1: जी
0: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
1: अच्छा, क्योंकि गाना चलता
0: ये
1: था।
0: गाना चलता नहीं था,
1: जी,
0: मैं गाता
1: खुद
0: रहता था।
1: गाते
0: तो वो घर वाले भी बार बार बोलते, तो मुझे फिल्मी गानों का शौक,
1: जी
0: गुनगुनाने का शौक वो बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उस पर धुनें भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वो एक अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
1: क्या बात है। और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका
0: हाँ, मैंने
1: जारी
0: कहा ना,
1: रहा है।
0: गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी और बड़े भाई साहब आज भी गायक हैं, वो
1: जी
0: सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से।
1: जी रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहां जिक्र हो जाए?
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया।
1: जी
0: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था। हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने ही उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प।
1: जी
0: वो अभी भी चल रहा है, वो मेरा बाकी जो दोस्त है वो चला रहा है, हरि नारायण उसका नाम है। तो हम 4 लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था,
1: वाह वाह,
0: और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल की जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की, और उस वक्त मैं ज़्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज़्यादा काम हुआ। और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी, नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
1: वाह वाह,
0: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
1: क्या बात है।
0: और एक नाटक जिसको बहुत ज़्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका,
1: हाँ,
0: जिसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी का ड्रामा कंपटीशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो, उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था। मतलब आज
1: बिल्कुल।
0: इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं, होली हो, ईद हो, और गणेशोत्सव हो। तो गणेशोत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेशोत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं हम।
1: वाह वाह,
0: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया।
1: गजब।
0: तो एक नाटक था शाम फड़के का, कॉमेडी, काका किशाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी,
1: हाँ,
0: तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल
1: क्या बात है,
0: इस नाम से किया। और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा,
1: वाह
0: रविंद्र
1: वाह
0: मंच पर टिकटेड
1: जी,
0: हाउसफुल वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब प्रसन्न किया, और उसके बहुत शोज हुए।
1: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे। कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौर
0: नहीं,
1: में?
0: मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद एक किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ, लेकिन
1: अच्छा,
0: उस दौरान में नहीं, वो जयपुर से जा चुके
1: जा
0: थे
1: चुके
0: तब।
1: थे उस दौर में
0: हाँ,
1: जब आप
0: तो वो
1: सक्रिय हुए।
0: तो हमसे काफी से, तो लेकिन उनकी एमआर रोड से 5 बत्ती के पास में ही सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है,
1: जी
0: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी। फिर
1: बिल्कुल,
0: हमारे जो सीनियर पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा
1: जी जी बिल्कुल,
0: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही,
1: हाँ
0: तो लेकिन
1: हाँ
0: इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो स्टार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे ये।
1: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे, उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत
0: बिल्कुल,
1: बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे। किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
0: बहुत बड़े नाम थे, और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना, जब नाटक में तो नंबर 1 हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे, और उसके अलावा वहाँ पे जो आधा आधा घंटे के या एक एक घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा, आपने नाम
1: जी
0: सुना होगा,
1: बिल्कुल,
0: गणपत लाल डांगी,
1: हाँ,
0: जिनका हवा महल में काफी
1: आज भी
0: होता
1: हवा महल में
0: था,
1: उनके नाटक
0: है ना,
1: ब्रॉडकास्ट होते हैं।
0: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे और जिनके प्लेस लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये।
1: जी, और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी।
0: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था,
1: जी
0: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको।

0: और आज भी
1: अच्छा
0: शायद वही होगा कि
1: जी
0: अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहाँ पे कोई कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है। अजमेर को लिंक किया हुआ है यह है।
1: जी तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
0: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था,
1: जी
0: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका,
1: बहुत ही मशहूर
0: हिंदुस्तान
1: अखबार।
0: का उस वक्त राजस्थान का नंबर वन अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था,
1: जी
0: वो राजस्थान में पहली बार हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा यार। उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था, उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था। उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे, और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहाँ काम किया, और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ। यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया, और पहली पोस्टिंग मेरी आई जालंधर।
1: अच्छा,
0: ये 1980 की बात है,
1: क्या बात है।
0: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जालंधर हुई। मैंने वहाँ ज्वाइन किया, 1 साल वहाँ काम किया, फिर
1: तो वहां
0: जयपुर।
1: तब पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहां जगजीत सिंह गाया करते थे।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब, और जगजीत सिंह, सुदर्शन फकीर,
1: जी,
0: इन लोगों के नाम से वो,
1: ऐतिहासिक
0: हाँ,
1: स्टेशन है जलंधर।
0: और वहाँ पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
1: बिल्कुल,
0: पंजाबी राइटर्स, सोहन
1: यस
0: सिंह मीशा,
1: जी,
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी में अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पातर, ये सब लोग वहाँ पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पातर लुधियाना से, सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था, एक तरह से
1: बिल्कुल।
0: पंजाब का जयपुर था वो। वहाँ बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट, और बहुत एक्टिव शहर था,
1: जी
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहाँ पे, हिंदी का
1: हाँ
0: प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहाँ पे, हिंदी का पैक्स था वहाँ पे मैं, लेकिन एक से एक प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं
1: दिक्कत
0: थी,
1: नहीं
0: मतलब
1: थी जी।
0: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
1: कितने वक्त तक आप जलंधर
0: एक
1: में
0: साल,
1: रहे
0: एक साल।
1: जी, और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा,
1: जी
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहाँ पे,
1: जी
0: जो सुरजीत पातर, वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले, मेरे सब कुछ में
1: बिल्कुल।
0: मिश्रा साहब को भी मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
0: हाँ, लिखना तो मेरा जयपुर में शुरू हो चुका था,
1: जी
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे, सब कुछ। और गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलन में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ, तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था, या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार थे,
1: बिल्कुल
0: पूरे उनके
1: बिल्कुल।
0: नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे।
1: सुबह तक
0: तो
1: लोग सुनते
0: हाँ,
1: थे और सबसे
0: तो
1: लास्ट में उन्हें
0: हाँ,
1: पढ़वाया
0: तो
1: जाता
0: जी,
1: था।
0: और मेरा वो शुरुआती दौर था,
1: जी
0: तो नीरज जी थे वहाँ पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया, पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी,
1: अरे
0: तो ये
1: गजब,
0: एक आशीर्वाद था जो मुझे
1: क्या
0: मिला
1: बात
0: जो।
1: है। क्या वो गीत याद है आपको?
0: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ाई इधर उधर तरन्नुम
1: जी
0: में सुना हूँ, सुनिए।
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत है।
0: जिंदगी की बस्ती में

0: नवगीत का शुरू हुआ था, तो ये
1: जी
0: अंत देख, बात क्या करे कोई हाफती हवाओं
1: हाँफती हवाओं से
0: से,
1: क्या बात है।
0: बात

मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी पटना। हमारे स्टूडियो घड़ी में संध्या के 4:30 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: जिंदगी एक सफर है और हर सफर में नए रंग, नए जज्बे और नए सीखने के मौके होते हैं। हर दिन हमें कुछ नया सिखाता है।
1: बिल्कुल भारती, जो हमें प्रेरणा दे, हमें समझदारी सिखाए और हमें आत्मनिर्भर और जागरूक बनाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रचा और हम लेकर आए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी।
0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त भारती। आज हम लेकर आए हैं कार्यक्रम में कुछ विशेष बातें जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे।
1: बिल्कुल भारती, आज हम बात करने वाले हैं उनके बारे में जिसने अपने जीवन में सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए बहुत कुछ किया। जी हाँ दोस्तों, फारुकदीन अली अहमद, जिनकी आज जन्मदिवस है, हम आज उनकी कुछ यादों और उपलब्धियों को याद करेंगे।
0: बिल्कुल चचा, साथ ही आर के नारायण, जिन्होंने हमारे साहित्य को अमूल्य उपहार दिया। उनकी कहानियों के माध्यम से हमें आम जीवन के छोटे छोटे पलों में खूबसूरती और गहन अर्थ दिखाई देता है। हम उनके बारे में भी बात करेंगे।
1: जी बिल्कुल, और भारती, आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे जो हमारे आसपास की असली संपत्ति है, यानी प्रकृति के बारे में। हम अपनी धरती को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे।
0: अच्छा हाँ, सुरक्षा से याद आया कि हम अपने श्रोताओं को साइबर क्राइम से कैसे बचाना है और कैसे सुरक्षित रहना है रखना है वो भी हम जानेंगे ऋचा।
1: अरे वाह, और

0: और तो और रोचक तथ्य भी जानेंगे, साथ ही सुनेंगे मन पसंदीदा गाने जो आपको झूमने पर मजबूर कर दे।
1: तो दोस्तों कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सुनते हैं ये धमाकेदार गाना।

0: में रोजगार के जो अवसर हैं वो व्यापक हो चुका है, और हम लोग जो पहले खेल को नजरअंदाज करते थे, हमको प्राथमिकता नहीं मिल पाता था, आज एकदम से स्थिति बदल गई है। बच्चों से लेकर गार्जियन से लेकर सभी लोग आज खेल की दुनिया में इंटरेस्टेड हो गए हैं, और इसलिए इसमें सरकार के माध्यम से भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे खेलो इंडिया के माध्यम से गांव-गांव तक हमारी पहुंच बन गई है, और प्रतिभा का वहां पे उनको मंच दिया जा रहा है आगे आने के लिए। खेलो इंडिया, फ्री इंडिया, और राज्य सरकारें भी इसमें आगे आ रही हैं। अभी हमारे बिहार में बहुत सारे योजनाएं चल रही हैं, जिसमें एकलव्य सेंटर अभी बिहार में 8 सेंटर पे प्रारंभ किया जा रहा है, और जिसका ट्रायल पिछले ही महीने मार्च 30 से शुरू हुआ था, और इसमें बच्चों को क्लास 6 में एडमिशन से लेकर उनके पढ़ाई लिखाई, पोशाक, खेल सामग्री, खाना पीना सारी व्यवस्था की गई है। मैं तो चाहूंगा हमारे जो गार्जियन है, अगर बच्चों में कुछ उनको दिखता है, कुछ प्रोत्साहन सबसे पहले पेरेंट्स से आना चाहिए
1: जी,
0: खेल कार्यालय में जाकर पता करना चाहिए किस एज ग्रुप में ये बच्चों का सिलेक्शन होता है, कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होता है, और ये हमें गांव-गांव तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारी प्रतिभा गांव में ही है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं वो सारे पेरेंट्स के लिए और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है।
1: जैसा कि अविनाश जी ने जिक्र किया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में बहुत सारे ऐसी प्रतिभाएं हैं लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाती हैं, तो उनके लिए पर्याप्त ट्रेनिंग सरकार के द्वारा, ताकि वो इसके माध्यम से, क्योंकि खेल तो करियर अपने आप में है ही, इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे?
2: देखिए, स्पोर्ट्स में एज ए स्पोर्ट्स आपका करियर है तो स्पोर्ट्समैन है, लेकिन यदि आप स्पोर्ट्स में नहीं सक्सेस होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर खिलाड़ी नेशनल इंटरनेशनल ही हो जाए, लेकिन उसके अलावा बहुत बड़ा करियर है स्पोर्ट्स में। आज देखिए बिहार में ही राजगीर में खेल यूनिवर्सिटी खुल गया, तो आप यदि स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं तो आप CPED, DPED, MPED, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, ट्रेनिंग स्टाफ, कोचिंग स्टाफ, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, इतना ज्यादा कोर्सेज अब स्पोर्ट्स में खुल चुका है। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को ही ले लीजिए कि वो भी रास्ता है, तो आप यदि स्पोर्ट्स में नेशनल इंटरनेशनल चैंपियन नहीं बन पाते हैं तो इन कोर्सों को भी कर करके आप स्पोर्ट्स से जुड़े भी रह सकते हैं और आपका करियर भी सेफ रहता है।
1: राजीव रंजन श्रीवास्तव जी, आप खेल विशेषज्ञ हैं, खेल को बड़े ही बारीकी से आपने देखा है, लंबे समय तक आपका अनुभव है। सरकारी रोजगार के अलावा खेल में ही कौन कौन से ऐसे जैसे हैं कि जो खेल में जुड़े रहकर अपना करियर को बना सकते हैं?
3: बिल्कुल, जैसा कि आपने शुरू में कहा कि पहले हम लोग सिर्फ खेल को मनोरंजन के रूप में लेते थे।
1: जी जी,
3: समय बहुत तेजी से बदला है और मनोरंजन के साथ साथ लोगों ने समझा कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी खेल को अपनाना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। फिर बात आती है कि जब खेल में कुछ दक्षता प्राप्त करते हैं तो कहीं चैंपियनशिप में भाग लेने जाते हैं, वहाँ कुछ चैंपियन बनते हैं, मेडल जीतते हैं, तो आपके यश प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती है, मान सम्मान मिलता है, नाम कमाने के लिए हम लोग खेलते हैं। अब बात जिस पर हम लोग चर्चा करें, रोजगार की, रोजगार पहले से खेल में मिलता आ रहा है, जैसा कि प्रेमचंद झा जी ने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, लेकिन रोजगार के अवसर कई गुना बढ़े हैं। अब बिहार सरकार ने 23 में मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना की शुरुआत की। अगर आप ओलंपिक में मेडल जीतते हैं तो आप सीधे राजपत्रित अधिकारी के रूप में आपकी नियुक्ति हो सकती है, और अगर आप एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में, तब भी आप सीधे वो ऑफिसर कैडर में जा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर राष्ट्रीय स्तर के किसी भी खेल में अगर आप सेमीफाइनल में गए, क्वार्टर फाइनल में गए या चैंपियन बने, तब भी आपके लिए बहुत सारे रोजगार के अवसर खुले, सीधे नियुक्ति पत्र सरकार देती है। अब जैसे कि मान लीजिए कि खेल में आप रोजगार चाह रहे हैं, तो अब बिहार में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, वहाँ इसी वर्ष से 4 वर्षीय शारीरिक शिक्षा और खेल में स्नातक का पाठ्यक्रम शुरू हुआ है, खेल प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा का पाठ्यक्रम शुरू हुआ है, इसके अलावा आपको खेल पत्रकारिता में पाठ्यक्रम शुरू हुआ, तो एसोसिएटेड फील्ड है। सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक खिलाड़ी हो ग्रामीण क्षेत्रों से आए, तो प्रखंड स्तर पर खेल सुविधाओं का विकास हो रहा है। जब खेल सुविधाओं का विकास होगा तो वहां से नए नए खिलाड़ी हमको चाहिए, उसके लिए कोच चाहिए, तो खेल प्रशिक्षण में अगर आप डिप्लोमा करते हैं बिहार के खेल विश्वविद्यालय से, तो इस बात की संभावना आपके लिए बढ़ जाती है कि बिहार में जो खेल प्रशिक्षक आप रोजगार के अवसर आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका पृष्ठभूमि खेल का है, और जैसा कि अभी झाजी ने भी कहा कि कोई जरूरी नहीं कि हर कोई खिलाड़ी बनकर ही रोजगार पाए, तब भी आप खेल पत्रकार बन के या प्रशिक्षक बन के, या एक और फील्ड जिसके बारे में हम लोग चर्चा करनी चाहिए वो है रेफरी और एम्पायर का, ये बहुत महत्वपूर्ण है।

0: आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो सारा
1: बिना
0: कुछ
1: इसके
0: एम्पायर पर निर्भर
1: बिल्कुल
0: करता है।
1: बिना इसके
0: एम्पायर की
1: संभव नहीं,
0: भूमिका काफी महत्वपूर्ण है,
1: बिल्कुल
0: फुटबॉल
1: बिल्कुल
0: हो, हॉकी हो, कोई खेल हो, उसमें रेफरी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
1: जी
0: तो वो
1: जी
0: भी तो खेल
1: एक
0: का
1: पार्ट
0: बैकग्राउंड होगा,
1: होता है
0: तभी तो होगा।
1: जी।
0: हम चैंपियन नहीं बन पाए तो उसका कोर्स करके उसमें रोजगार पा सकते हैं। कॉरपोरेट सेक्टर आजकल खेलों को अपना रहे हैं, उसमें कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, आप कमेंटेटर बन सकते हैं।
1: एक तरह से फिटनेस उद्योग को भी इसमें डेवलप कर सकते हैं। प्रशिक्षक की बात की आपने कि एक प्रशिक्षक भी बन सकते हैं, हमारे साथ प्रशिक्षक भी हैं अविनाश चंद जी। प्रशिक्षक एक खिलाड़ी प्रशिक्षक के तौर पर वो अपना जो करियर शुरुआत कर सके, इसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं?
2: इसमें जो हमारे स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के प्लेयर्स हैं
1: जी जी
2: उनको तरजीह दी जाती है
1: जी
2: मिनिमम क्वालिफिकेशन। जैसे हमारे यहाँ भारत में डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग,
1: जी
2: डिफरेंट स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में डिप्लोमा के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है।
1: जी
2: लेकिन अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर हैं तो उसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। ग्रेजुएशन 1 साल 9 मंथ्स का ये डिप्लोमा कोर्स होता है
1: जी
2: और डिफरेंट डिसिप्लिन में ये डिप्लोमा कोर्स होता है। 4 सेंटर हमारे हैं, पटियाला है, बेंगलोर है, कोलकाता है और अहमदाबाद।
1: अहमदाबाद जी
2: तो ये चारों जगह डिप्लोमा होता है और इसके लिए वैकेंसी निकाली जाती है और अभी पब्लिश हुआ है ये एडवर्टीजमेंट। जो भी बच्चे, जो भी श्रोता हमारे सुन रहे हैं,
1: जी जी
2: अगर वो डिप्लोमा कोर्स को लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी अभी समय है और वो रिटेन एग्जामिनेशन होता है, फिजिकल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है
1: जी
2: और वो क्वालिफाई करने के बाद आपका एडमिशन वहाँ हो जाता है और वहाँ पे पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है आपको। 4 एलाइड साइंसेज होता है,
1: जी
2: स्पोर्ट्स मेडिसिन है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग मेथड। स्पोर्ट्स थ्योरी के अलावा अपना जो मेन गेम होता है उसके अलावा
1: इन चार
2: प्लस
1: चीज़ों में दिया
2: इन
1: जाता है
2: चारों चारों चीज़ों का वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है।
1: जी जी
2: बहुत ही अच्छा ये कोर्स है और हम तो जानते हैं चूंकि हमने ये कोर्स किया है,
1: जी
2: बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स यहाँ से डिप्लोमा करते हैं कोचिंग के लिए,
1: काफ़ी
2: तो
1: समृद्ध कोचिंग यहाँ पर
2: बहुत
1: कोचिंग की
2: समृद्ध,
1: जाती
2: बहुत
1: है।
2: बहुत
1: तो ये जो है जिस तरह से अभी निकल रहा है, ये वार्षिक तौर पर नियमित इसका समय है, शेड्यूल है या फिर चेंज होता
2: नहीं
1: रहता है?
2: नियमित शेड्यूल है।
1: जी
2: अप्रैल मई जून से स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल
1: जी
2: से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है
1: जी
2: एडमिशन का और जून से ये कोर्सेज स्टार्ट हो जाता है।
1: विभिन्न प्रकार का प्रेमचंद झा जी आपसे हम ये मेरी सवाल है कि जो खिलाड़ी हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए रोजगार के साथ साथ क्या कुछ ऐसी स्कॉलरशिप वगैरह हो गया जिससे आर्थिक सहायता खिलाड़ियों को मिले, इस प्रकार की योजनाएं भी हैं?
3: स्कूल लेवल से ही स्कॉलरशिप है।
1: जी
3: आप जैसे ही नेशनल्स में सब जूनियर्स वगैरह में आपकी प्लेस लग जाती है ना,
1: जी
3: हमारा स्टेट भी स्कॉलरशिप देता है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण भी देता है स्कॉलरशिप। छोटे बच्चों को उनकी फर्दर ट्रेनिंग के लिए अच्छा खासा दिया जाता है और ये स्कॉलरशिप बिहार सरकार ही नहीं देती है, NSNIS पटियाला द्वारा भी दिया जाता है स्कॉलरशिप।
1: जी
3: तो
1: जी
3: हमने कहा ना कि आज बच्चे यदि स्पोर्ट्स में कुछ करते हैं तो सरकार की सहायता और सरकार का संरक्षण दोनों खिलाड़ियों को प्राप्त है।
1: राजीव रंजन जी,
0: जी
1: जैसा कि
0: जी
1: आप बात कर रहे थे, खासकर आपने इस क्षेत्र में जो लोग जुड़े हुए हैं निजी रूप से व्यक्तिगत तौर पर अवसर को डेवलप कर सकते हैं या फिर चुन सकते हैं, खास करके कॉरपोरेट क्षेत्र में। इसके अलावा जिस तरह से कमेंट्री हुआ या फिर अन्य पहलू है, इसके अलावा उद्योग के रूप में किस प्रकार डेवलप कर सकते हैं कोई खिलाड़ी?
0: देखिए, उद्योग के रूप में तो वस्तुतः बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ है।
1: जी जी
0: आप देखिए कि एक खेल को बहुत सारे कॉर्पोरेट घराना अपनाते हैं, उसको एडॉप्ट करते हैं।
1: जी
0: वो
1: जी
0: क्या करते हैं कि बहुत यंग एज में, बिलो 16, 16 से कम वर्ष की उम्र में खिलाड़ियों का चयन करते हैं और लंबी ट्रेनिंग देते हैं, विदेशों में भेजते हैं ताकि देश को मेडल मिल सके। तो इंडिविजुअल स्तर पर हुआ। लेकिन आप देखिए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण जैसे,
1: जी जी
0: वो क्या करता है कि आप बिहार में जितने ज्यादा प्रतियोगिताएं पिछले 2-4 वर्ष में आयोजित हुई हैं उतने पिछले 10-12 वर्ष में नहीं हुई
1: नहीं हुई है,
0: होगी।
1: बिल्कुल
0: खेलो इंडिया का आयोजन हुआ, राजगीर में अभी सब जूनियर हॉकी हुआ, उससे पहले एशियन हॉकी हुआ, इसके अलावा बहुत सारा वॉलीबॉल की प्रतियोगिता हुई। तो जब बहुत सारे जब प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा तो उसके लिए एसोसिएटेड लोग भी चाहिए।
1: बिल्कुल
0: आपको कमेंटेटर चाहिए, आपको एम्पायर रेफरी चाहिए। अब मान लीजिए आप कमेंटेटर बनने की आपकी इच्छा है अंदर से,
1: जी
0: तो होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं या यंग होते हैं वो जब रेडियो पर कमेंट्री सुनते हैं या टीवी पर देखते हैं तो उसके अंदर एक भाव पैदा होता है, काश हम भी कमेंटेटर बन जाए। ये जो स्वाभाविक इच्छा जो उत्पन्न होती है तो उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। तो उसके लिए आप सुन के और आप जैसे आकाशवाणी केंद्र में जाइएगा, वहां से आपको पता चल सकता है कि किस तरह कमेंटेटर बनने के लिए मुझे क्या करना होगा, कैसे हम कोई भी टीवी पर मैच देकर रिकॉर्डिंग करके भी उसे भेज सकते हैं, स्क्रीनिंग होकर हम भी कमेंटेटर बन सकते हैं, उसके पैनल में आ सकते हैं। तो शुरुआत किया जाता है तो छोटे से की जाती है।
1: जी
0: आप
1: जी
0: अचानक तक राष्ट्रीय स्तर के कमेंटेटर एक दिन में तो बन नहीं जाएगा, लेकिन अगर लगन

0: हो, लगातार हो, तो आप इसमें भी आगे बढ़ सकते हैं।
1: महिलाओं की बात
0: जी
1: आजकल देख रहे हैं कि लगातार सरकार से लेकर हर लोग महिला को जितना ज्यादा हो प्रतिभाग उनका बढ़ाया जा रहा है। उनके लिए अगर हम बात करें तो महिलाओं, जो महिला खिलाड़ी हमारी है खेल में, उनके लिए रोजगार के क्या कुछ अवसर हैं
0: बिल्कुल,
1: प्रेमचंद जी?
0: बहुत सही सवाल आपने पूछा है कि महिलाओं का जॉब का अवसर आज ही नहीं पहले भी बहुत ज्यादा था। जॉब में यदि आप बात करिएगा ना, तो खास करके बिहार की यदि हम बात करते हैं, तो बिहार की महिला टीम, बिहार पुलिस एक ऐसा जगह था जिन्होंने महिलाओं की हर गेम की टीम बनाई थी, और ना टीम बनाई थी इनका, ऑल इंडिया पुलिस गेम जो होता था ना,
1: जी,
0: उसमें जो मेडल आता था उनको प्रमोशन भी दिया जाता था। तो जैसे दो लड़कियों का हम जिक्र करना चाहेंगे, एक का नाम है श्रीमती सरोजनी लकड़ा और एक का नाम है एमल्डा एका, दोनों बिहार पुलिस में एथलेटिक्स कोटे से बहाल हुई थी। और आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि आज से 2 साल पहले दोनों को आईपीएस
1: आईपीएस
0: मिला
1: मिला
0: है।
1: जी।
0: उसी तरह से कम डीएसपी और सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर, कितनी भी लड़कियां हैं, मैं पुष्पा भगत, ओली ग्रेस कुल्लू, रीना मिश्रा, अंजलि लकड़ा, पद्मा कुमारी आदि कई ऐसे नाम हैं
1: जी,
0: जिन्होंने, जिन्हें नियुक्ति भी मिली और जिन्हें प्रमोशन भी मिला। तो आज भी बिहार पुलिस की बात आप छोड़ दीजिए, पैरा मिलिट्री फोर्सेज में भी हम आपको बताना चाहेंगे, सीआईएसएफ की महिला टीम जो है वो बड़ी स्ट्रांग टीम है। तो महिलाओं को रोजगार जो है ना, वो सिर्फ सीपीओज में ही नहीं मिल रहा है, रेलवे में भी। पापिया दत्ता गुप्ता जो बिहार की कई बार चैंपियन रही, स्टेट बैंक में है, टेबल टेनिस में है, उसी तरह मधु कुमारी जो इंडिया टीम की वाइस कैप्टन रही, 8 बार इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया है। अभी स्पोर्ट्स कोटे से बिहार सरकार में सेक्शन अफसर है। सुधा कुमारी जो इंटरनेशनल पावर लिफ्टर है, अभी वो भी सेक्शन अफसर बनी है। तो महिलाओं के लिए यह फील्ड बहुत ही महफूज है और बहुत ही अच्छा है, उनके प्रमोशन का प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है। और इन लड़कियों को देखकर हमारी आने वाली जो महिलाओं की नस्लें हैं वो
1: जी,
0: खेल की ओर जमकर आकर्षित हो रही हैं, और हमारी महिलाओं का संख्या जो खेलों में है वो दिन पर दिन बढ़ता ही
1: बढ़ता
0: जा
1: जा रहा
0: रहा
1: है।
0: है।
1: एक प्रशिक्षक के तौर पर हम बात करेंगे अविनाश चंद जी, महिलाओं को लेकर, क्योंकि जिस तरह से सर ने कहा प्रेमचंद झा जी ने कि उनके लिए भी उतना ही महफूज है और अवसर उतना ही बराबर का है, तो प्रशिक्षण के समय या उस दौरान कितना उनको मतलब ज़रूरत होती है या कितना सहज होती हैं वो, और किस प्रकार उनको प्रशिक्षित करते हैं ताकि वो भी आगे बढ़कर इस क्षेत्र में, खेल में भी और इसके अलावा जो सरकारी नौकरियां उसमें अवसर प्राप्त कर सकें?
2: आज की तिथि में जो प्रशिक्षण बच्चों के लिए किया जा रहा है,
1: जी,
2: वही प्रशिक्षण लड़कियों के लिए भी किया जा रहा है। सरकार, निजी संस्थान और खेल संगठन तीनों आज के तिथि में इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा निवेश कर रहे हैं बच्चों को आगे लेकर आने में। आज
1: जी
2: हमारा उन्नति का एक द्योतक है स्पोर्ट्स, इसीलिए आज के डेट में, आज की तिथि में बिहार सरकार इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। और स्पेशली अभी सेपक टकरा और रग्बी
1: जी जी
2: में हमारी टीम, बिहार की टीम
1: नंबर वन
2: मेडलिस्ट है, और बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट एसआई में, सब इंस्पेक्टर में, पुलिस में सब इंस्पेक्टर में बहाल किया गया है। अभी इन लोगों का प्रशिक्षण राजगीर में चल रहा है।
1: जी,
0: पिछले साल नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में बिहार की एक लड़की बिहार का इतिहास बनाते हुए 100 मीटर और 200 मीटर में गोल्ड मेडल जीती है, जो बिहार का बिहारी लड़की द्वारा पहला मेडल था। नतीजा ये हुआ कि उस लड़की को मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से बहुत बड़ा कैश अवार्ड दिया और उसकी डायरेक्ट नियुक्ति सब इंस्पेक्टर में हुई।
1: ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और हाँ, एक उज्जवल भविष्य है खेल का, खासकर हमारे बिहार में जिस प्रकार से सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा राजीव रंजन श्रीवास्तव जी से हम जानना चाहेंगे कि खेल के अलावा कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो बीच में उनका किसी कारणवश खेल छूट जाता है, तो उनके लिए क्या कुछ अवसर, जैसे कि खेल से संबंधित
0: बिल्कुल
1: उपकरण या कई
0: बिल्कुल
1: ऐसे चीज़ें हैं
0: बिल्कुल,
1: उसमें अवसर उपलब्ध हैं?
0: आपने खेल शुरू किया, किसी कारणवश आप बहुत आगे नहीं भी बढ़ पाए,
1: जी
0: लेकिन
1: जी
0: अगर आपकी पृष्ठभूमि खेल की है तो आपके
1: जी
0: लिए बहुत सारे अवसर हैं। जैसे कि आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एक अवसर है, आप खेल पत्रकार बन सकते हैं।
1: जी
0: खेल पत्रकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। जब बहुत सारे आयोजन होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि आज के समय में सरकारों का फोकस खेल पर है।
1: बिल्कुल,
0: अभी इन्होंने कहा कि जो राज्य खेल में आगे है वो राज्य विकसित भी है। देश के मामले में यही है, आप ओलंपिक्स वगैरह में मेडल तालिका देखिएगा, जो जितने ही विकसित देश हैं उनके मेडल की
1: मेडल
0: संख्या
1: उतने
0: उतनी
1: ही
0: ज्यादा
1: ज्यादा।
0: होती है। इसका
1: बिल्कुल
0: सीधा संबंध हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से है, तो
1: बिल्कुल
0: स्वाभाविक है कि
3: आयोजन ज्यादा हो रहे हैं, प्रखंड स्तर पर हो रहे हैं, तो खेल पत्रकारिता वो अपना सकते हैं जो कि पृष्ठभूमि खेल का है। आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आप ट्रेनर बन सकते हैं, प्रशिक्षक बन सकते हैं, बहुत सारे अवसर

0: एसोसिएटिव इतना ज्यादा है, खिलाड़ी के रूप में एक सीमा होती है, एक उम्र तक आप खेल सकते हैं, तब तक अगर आपने नौकरी पाली, आपने यश प्रतिष्ठा पाली, मान सम्मान हो गया, लोग आपको जान गए, जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा हो गया, नौकरी के बाद आपका जीवन चला। और अगर आप नौकरी नहीं पाना चाहते हैं और भी चाहते हैं कि फ्रीलांस होकर भी काम करें,
1: जी
0: कोई जरूरी नहीं है हर कोई नौकरी ही
1: नौकरी
0: चाहे,
1: ही चाहे,
0: तो आपके लिए एम्पायर बनिए, आप शारीरिक शिक्षा के रूप में काम कीजिए, बहुत सारे अवसर हैं, तमाम अवसर दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो अब जो हम लोग कहते हैं ना कि खेल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, सिर्फ स्वस्थ रहने का साधन नहीं, रोजगार सृजन का बहुत बड़ा सोर्स है।
1: सोर्स है निश्चित रूप से, जैसा कि आज की चर्चा में यह स्पष्ट हुआ कि जो खेल भी है उतना ही रोजगार के अवसर, खासकर सरकारी हो या फिर ऐसे फ्रीलांसर के रूप में या फिर इसके प्रशिक्षक के रूप में, फिजियोथेरेपिस्ट, अन्य इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और बहुत सारे एक व्यापक इसमें अगर कहें तो संभावनाएं हैं। खेल सिर्फ मेडल या प्रतियोगिता का नाम नहीं है, अनुशासन, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व के साथ साथ आजीविका, जिसे हम रोजगार कह रहे हैं, उसका भी एक
0: बिल्कुल
1: विशाल क्षेत्र है। आज की चर्चा से स्पष्ट है कि खेल में अब सिर्फ खिलाड़ी बनकर ही नहीं, या इसे उद्यम के रूप में भी अपनाकर अपनी जो अवसर है, रोजगार के अवसर इसमें प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार में भी जो लगातार, हमारी बिहार सरकार भी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हम आशा करते हैं आज की चर्चा से हमारे जो कार्यक्रम है युवाओं को प्रेरित करेगा, वह खेल को सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक मजबूत करियर विकल्प के रूप में देखेंगे। समय निकालकर आज के इस परिचर्चा में प्रेमचंद झा जी, जो आप खेल समीक्षक हैं, अविनाश चंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय खिलाड़ी एवं प्रशिक्षक, और राजीव रंजन श्रीवास्तव, खेल विशेषज्ञ के रूप में समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और महत्वपूर्ण एक जानकारी हमारे जो भी श्रोता हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन्हें दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी।
2: आज रोचक तथ्य में जानेंगे 1996 के अटलांटा ओलंपिक में फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक विजेता कर्ट एंगल के बारे में।
3: श्रोताओं, रोचक तथ्य के अंतर्गत आज हम बात करेंगे उत्साही कुश्ती खिलाड़ी कर्ट स्टीवन एंगल के बारे में। कर्ट स्टीवन एंगल ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक में फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि उस वक्त उनकी गर्दन में गंभीर चोट लगी हुई थी। कर्ट ने ईरान के अब्बास जदीदी को हराकर यह खिताब जीता। इस जीत के बाद भी उन्होंने यह जाहिर नहीं होने दिया कि उनकी गर्दन में कितनी चोट थी, जबकि उनकी दो ग्रीवा कशेरुकाएं फ्रैक्चर थी, दो डिस्क हर्निया और चार मांसपेशियों में खिंचाव था। एंगल ने 21 से अधिक पेशेवर कुश्ती चैंपियनशिप जीता और कुल मिलाकर 13 बार विश्व चैंपियन रहे। 2004 में रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर ने एंगल को अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया और बाद में उन्हें 2000 के दशक के लिए रेसलर ऑफ द डिकेड का नाम दिया।
2: अंत में खेल प्रश्नोत्तरी, जिसमें हर बार हम आपसे पूछते हैं दो सवाल और बताते हैं पिछले अंक में पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब। तो बिना देर किए आपको पिछले अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बता देते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा?
4: सही जवाब है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में पदक तालिका में कर्नाटक 38 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा।
2: और दूसरा प्रश्न था, 1983 में भारत को पहली बार क्रिकेट विश्व कप जिताने वाली टीम में कप्तान कौन थे?
4: सही जवाब है, 1983 में भारत को पहली बार क्रिकेट विश्व कप जिताने वाले कप्तान का नाम है कपिल देव।
2: इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब देने वाले हमारे श्रोताओं के नाम है, आकाश कुमार सैदपुर से, प्रकाश कुमार हैं गायघाट पटना से, राजन कुमार भी गायघाट से हैं, परी और नेहा श्रीवास्तवा हैं राजेंद्र नगर पटना से। सही जवाब देने वाले सभी श्रोताओं को धन्यवाद। इसी तरह बने रहें कार्यक्रम से और भेजते रहें पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब, साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रियाएं और अपने सुझाव। अब आज के दो प्रश्न, पहला प्रश्न है, 2026 में आयोजित पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेलों का शुभांकर यानी मैस्कट क्या था? और दूसरा प्रश्न था, 2026 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा? इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब देने के लिए आपके पास पूरे एक सप्ताह का समय है, यानी अगले मंगलवार की शाम तक। तो बिना देर किए फटाफट आप हमें अपने जवाब लिख भेजें पत्राचार के पते पर या फिर ईमेल आईडी के माध्यम से। नोट करें पत्राचार का पता,
4: कार्यक्रम खेल परिक्रमा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी पटना 800001।
2: हमारा ईमेल पता है kp.air.patna@ gmail.com।
4: और इसी के साथ इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, जहां हम आपसे विदा लेंगे और कहना चाहेंगे

0: कि स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और हमारी खेल गतिविधियों से जुड़े रहें। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर रुपेश कुमार रूप के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर
1: और एलपी को
0: आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेल परिक्रमा। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। श्रोताओं, अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में।

अब से कुछ देर बाद 6:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल, और इसके तुरंत बाद 7 बजे आप सुनेंगे खेती गृहस्थी का कार्यक्रम। 7:30 पर प्रादेशिक समाचार होंगे।

जिले की हलचल आप सुनेंगे 7:47 पर। समाचार ध्वनि चित्र आप सुनेंगे 7:52 पर। फिल्म संगीत का आनंद लेंगे आप 8:00। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गजल, कलाकार होंगे रूपम किशोर, समय होगा 8:30। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 10:00 और 10:30 पर।

श्रोताओं, दैनिक कार्यक्रम आप सुनते हैं। सुबह 6:05 से भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। इसके तुरंत बाद 6:35 पर आप सुनते हैं प्रत्येक दिन रामचरितमानस पाठ। 7:05 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम हालचाल।

श्रोताओं, अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शीर्ष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

कार्यक्रम में पहला गीत आप सुन रहे हैं दिल तेरा आशिक फिल्म का, मुकुल अग्रवाल और अलका याग्निक की आवाज़ में। गीतकार हैं समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।

0: विपणन 1776 सप्तविंशत्यधिकद्विसहस्रतमवर्षयोः कृते चतुर्दश खरीफ इति ग्रैष्मिकसस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्ये वृद्धिं स्वीकृतम्। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य सभायाः अनन्तरं प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् सर्वकारेण ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धितम् अस्ति, येन उत्पादकेभ्यः तेषां उत्पादानां कृते लाभप्रदं मूल्यं सुनिश्चितं भविष्यति। सः अवदत् यत् ग्रैष्मिक कालस्य कृते कृषकाणां कृते प्रायः 60,000,000,000 रूप्यकाणि प्रदीयन्ते। सः अवदत् यत् अस्मिन् ऋतौ 24,800,000 मैट्रिक टन इत्यतोप्यधिकानि सस्यानि प्राप्तानि भविष्यन्ति। श्री वैष्णवः अवदत् यत् MSP मध्ये सर्वाधिकं 22,600,000 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल वृद्धि सूर्यमुखी बीजानां कृते अनुशंसितम्। तदनन्तरं 57,500 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल कर्पासस्य कृते, 500 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल तिलस्य कृते च अनुशंसितम् अस्ति।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: प्रिया श्रोतार संस्कृत वार्ताया संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन भू अंगारस्य तथा लिग्नाइट गैसिफिकेशन परियोजनायाः प्रोत्साहनाय 37,50,000,000,000 रूप्यकाणां वित्तीय व्ययस्य योजना अनुमोदिता। प्रसार माध्यमान् संबोधयन् केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अवदत् यत् इयं योजना भारतस्य अंगारस्य लिग्नाइट गैसिफिकेशन इत्यस्य च कार्यक्रमं गतिप्रदानाय प्रमुखं पदाक्षेपमस्ति। श्री वैष्णव अवदत् यत् योजनायाः अन्तर्गतं 3,00,000,000,000 रूप्यकाणां अपेक्षित निवेशः भविष्यति।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलगा वेट्रिकझगम दलस्य सर्वकारेण तमिलनाडु विधानसभायां बहुमत परीक्षणं विजितम्। चतुश्चत्वारिंशोत्तरैकशत विधायकाः पक्षे मतदानं कृत्वा सभायां स्पष्टं बहुमतं प्रदर्शितवन्तः। अत्रांतरे 22 विधायकाः विश्वासप्रस्तावस्य विरुद्धं मतदानं कृतवन्तः। कार्याचरणावधौ प्रमुखः विपक्षिदलं DMK विधानसभा सदनात् बहिरागच्छत्। सद्यैव समाप्तेः विधानसभा निर्वाचने तस्य दलेन केवलम् 88 आसनानि प्राप्तानि आसन्। तमिलनाडोः राज्यपालेन राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरवर्येण विजयाय सदने बहुमतं साधयितुम् आज्ञापितमासीत्। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दलस्य नेता एन रंगासामी अद्य पुदुचेरी राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण पंचमं वारं शपथ ग्रहणं कृतवान्। लोकनिवासे आयोजिते समारोहे पुदुचेरी नगरस्य उपराज्यपालः के कैलासनाथन वर्यः पदस्य गोपनीयतायाः च शपथ ग्रहणं कारितवान्। दलस्य मल्लादी कृष्णरावः भाजपेति दलस्य एन नमशिवायं च अस्मिन् समारोहे मंत्री रूपेण शपथं स्वीकृतवन्तः। भारत ऋतु विभागेन अद्य राजस्थान राज्ये उष्णतरंगस्य कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतनायाः सूचना प्रसारिता। गुजरात राज्ये महाराष्ट्रे पश्चिम मध्य प्रदेशे च श्वः यावत् उष्णतरंगस्य स्थितिः भवितुम् अर्हति। अपि च अद्य हिमाचल प्रदेशे उत्तराखण्डे च ओलावृष्ट्या सह वर्षायाः संभावना विद्यते। अद्य दिल्ली चंडीगढ़ हरियाणा जम्मू कश्मीर उत्तर प्रदेश झारखंड पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु

0: विद्युत सहित वृष्टिः तीव्रवायुवेगः च भविष्यति इति भारत ऋतुविभागेन पूर्वानुमानितम्। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा द्वादशी कक्षायाः परीक्षा परिणामाः प्रसारिताः। छात्राः आधिकारिक वेबसाइट डिजिलॉकर इत्यत्र, उमंग ऐप इत्यत्र च स्वानुक्रमान् प्रविश्य परिणामं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्मिन् वर्षे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा द्वादशी कक्षायाः फरवरी मासस्य 17 दिनांकतः अप्रैल मासस्य 10 दिनांक पर्यन्तं लक्ष्योपलक्ष्य छात्राणां कृते परीक्षा आयोजिता। अन्ते मुख्यवार्ताः पुनः एकवारम्। पश्चिम एशिया संघर्षेण उद्भूतस्य वैश्विक ऊर्जा संकट कालस्य मध्ये प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिना आवाहनस्य अनन्तरं केन्द्र राज्ययोः ईंधन संरक्षणस्य उपायाः तीव्राः जाताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन 14 खरीफेति ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं स्वीकृतम्। तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे टीवी के सर्वकारेण सहज बहुमतेन सक्षी परीक्षणं विजितम् इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी।

0: प्रणाम सुधा बहन।
1: नमस्कार मीनू जी।
0: तब बताएं कैसन बानी।
1: सब बढ़िया है, आप कहिए। आप भी तो ठीक
0: हाँ,
1: ठाक
0: हाल
1: हैं।
0: चाल तो बिल्कुल ठीक बाटे।
1: रहना भी चाहिए।
0: हाँ, देखी गर्मी में मतलब कि पानी बुनी होके से मौसम इतना निमन हो
1: थोड़ी
0: गई
1: राहत
0: बा।
1: मिल गई, वरना
0: राहत
1: अचानक
0: खूब।
1: से बहुत गर्मी बढ़ गई थी।
0: हाँ
1: हालांकि गर्मी है तो गर्मी तो अभी पड़ेगी ही। हो सकता है कि भाई मानसून पहले आ जाए, ये अलग बात है, लेकिन
0: हाँ
1: जब गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो पड़ेगी ही।
0: हाँ
1: लेकिन
0: हाँ
1: अलावा इसके देखिए, एक ये बात मेरे दिमाग में आ रही है कि होता क्या है कि हमारे पास जो सुविधा होती है, जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं, हम
0: हाँ
1: उनका अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू कर देते हैं,
0: एकदम
1: बिना
0: सही
1: ये
0: कहा
1: सोचे
0: तुमने,
1: समझे कि हाँ ये भी सीमित है, एक दिन जाकर के ये
0: ये
1: भी
0: भी खत्म
1: ख़त्म
0: हो
1: होगा।
0: जाए। हाँ,
1: लेकिन आगे की हम सोचते नहीं है, आगे आने वाली
0: मतलब
1: पीढ़ी
0: अभी
1: का उसका
0: जेबा।
1: सोचते नहीं।
0: हाँ
1: अभी है तो चलो फिर उड़ा
0: खूब।
1: देते हैं। तो ऐसा ही कमोबेश हम जो प्राकृतिक संसाधन है उनके साथ भी कर रहे हैं। नतीजा देखिए ये भी हो रहा है कि जल संकट की समस्या, कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जल बहुत, मतलब लोगों को नहीं मिलेगा, कमी हो जाएगी।
0: हाँ
1: तो देखिए, एक तरफ तो जहाँ आबादी बढ़ रही है, लेकिन ये
0: हाँ
1: संसाधन तो सीमित हैं, घटते जा रहे हैं।
0: हाँ
1: तो अगर
0: हाँ
1: हम अभी से इसका उचित तरीके से प्रयोग नहीं करें, इनका संरक्षण नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में क्या होगा ये तो हम समझ ही सकते हैं।
0: मतलब कि आज के समय में जे रउआ कहे के चाहतनी कि पानी के कमी, सूखा, बाढ़ और मिट्टी के कटाव, इस सब के सब समस्या दिन प्रतिदिन बढ़त जात बा। देखिए, जल बा तो कल बा, और जल से ही जीवन के पहचान बा। पानी के हर एक बूंद बचावल हमनी सबन के अभियान बा। तो देखिए, इस सबन समस्या से निकले खातिर वाटर सेड मैनेजमेंट ढेर मनी महत्वपूर्ण भूमिका निभावेला। ये खाली पानी बचावे के प्रक्रिया नहा, बल्कि मट्टी हो गए, पेड़ पौधा और पर्यावरण के संतुलन के बनावल रखे के खातिर एगो प्रभावी तरीका भी है।
1: मतलब कह सकते हैं कि वर्षा जल, भूमि और वनस्पति संसाधनों का एक तरह से वैज्ञानिक तरीके से विकास और संरक्षण करने की जो एक एकीकृत प्रक्रिया है, वो
0: हाँ,
1: है वाटरशेड मैनेजमेंट।
0: अब वाटरशेड का है। देखिए, जौना क्षेत्र में गिरे वाला बारिश के पानी बह के कोनो एगो नदी में चल गेल, तालाब, झील या नाला में जाके इकट्ठा होखेला, ओकरा वाटरशेड माने कि जलागम क्षेत्र कहल जाला।
1: मतलब हम उसे रोकते हैं एक तरह से, या तो तालाब बनाकर या पोखरा बनाकर, कुछ भी करके, जो वर्षा का जल बेकार चला जाता है उसको हम एक जगह रोकते हैं, इकट्ठा
0: मतलब
1: करते
0: कि
1: हैं।
0: वाटरशेड मैनेजमेंट वो है जे बारिश के पानी के रोके खातिर, मट्टी के कटाव के कम करे के खातिर, भूजल

0: बढ़ावे और भूमि के उर्वरता बनावल रखे के खातिर जी योजनाबद्ध काम कैल जाला ओकरे वाटर शेड मैनेजमेंट कहल जाला। एकर मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधन के मतलब कि सही से उपयोग और संरक्षण करना बा। वाटर शेड मैनेजमेंट के मुख्य उद्देश्य की बात में सबसे पहले वर्षा जल के संरक्षण बा, माने कि बारिश के पानी के व्यर्थ में ना बहाई, ओकरा कोनो ना कोनो काम के खातिर जमा करके उपयोग करना बा। दूसर बात करी मट्टी के कटाव के रोके के, तो देखी तेज बारिश पानी बुनी से उपजाऊ मट्टी के बहाव होखे लगेला, तो एकरा खातिर वाटर शेड प्रबंधन के माध्यम से रोकल जा सकेला। और वाटर शेड मैनेजमेंट से पानी जमीन के भीतर जाई जिकरा से भूजल स्तर बढ़ी, एकरा से कुआं हो गई, हैंडपम्प हो गई और बोरिंग में भी पानी रही।
1: देखिए, अगर हम बात करें इस पर कि वाटर शेड मैनेजमेंट जो है उसमें मुख्य रूप से कौन कौन से घटक काम करते हैं, तो थोड़ा मैं बताना चाहूँ कि इसमें जैसे कि चेक डैम, तालाब और पोखर बनाकर बारिश के पानी को रोककर वर्षा जल का संचयन किया जाता है। उसके बाद मेढ़बंदी, वृक्षारोपण और जो एक समुच्च खेती कहते हैं उसके द्वारा मिट्टी के कटाव को रोका जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा पहाड़ों पर जो कटाव होती है, ढलान होती है, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप करके खेती की जाती है ताकि मिट्टी का कटाव ना हो सके। कुओं और बोरवेल का पुनर्भरण किया जाता है जिससे कि पानी का स्तर ऊपर उठे। बंजर भूमि पर पेड़ लगाए जाते हैं और टिकाऊ खेती को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही साथ स्थानीय लोगों को भी इस प्रबंधन में शामिल किया जाता है ताकि इसे और अच्छे से किया जा सके और इसे सफल बनाया जा सके।
0: देखिए एगो कंटूर फार्मिंग भी कर सकेला ताकि ढलान वाला जमीन पे मेड़ बना के पानी के रोकल जा सकेला, ताकि मट्टी ना बहे, घास मट्टी के पकड़ के रखेला और कटाव भी कम करेला, तो एकरा खातिर घास और पौधा भी लगाएं। वाटर शेड मैनेजमेंट के लाभ के बात करी तो किसान भाई के लाभ में सिंचाई खातिर पानी मिलेला, फसल उत्पादन बढ़ जाएला, सूखा के प्रभाव भी कम हो जाएला। वहीं पर्यावरण लाभ के बात करी तो हरियाली बढ़ेला, पेड़ पौधा के संरक्षण होखेला, जलवायु संतुलित होखेला। एकरा से आर्थिक लाभ के भी बात कर ली तो किसान के आय बढ़ी, पशुपालन और खेती के फायदा मिली, रोजगार के अवसर बढ़ी। सामाजिक लाभ के बात करी तो गांव में पानी की समस्या कम होगी और लोग के जीवन स्तर जेबा वो काफी निमन हो जाई एकरा
1: बिल्कुल
0: से।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और देखिए सरकार भी ढेर मनी योजना के माध्यम से वाटर शेड विकास कार्यक्रम चला रहल बाड़न ताकि गांव में भी जल संरक्षण और खेती के बढ़ावा मिल सके। हरेक बूंद पानी के अमृत समान बा, ऐसे एकरा बचाना हम सबके पहचान है। वाटर शेड के संदेश अपनाई और धरती के हरा भरा बनाई।
1: बिल्कुल। देखिए, भारत सरकार ने भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत एकीकृत वाटरशेड मैनेजमेंट कार्यक्रम शुरू किया है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधनों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि सरकार के द्वारा भी इस स्तर पर काफी प्रयास किए जा रहे हैं। जरूरत है कि हम भी इसमें अपना योगदान दें। तो जो ये और भी कई योजनाएं हैं, जैसे कि अभी मैंने कहा ना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अलावा इसके जल शक्ति अभियान है, मनरेगा के अंतर्गत जल संरक्षण कार्य, अटल भूजल योजना, इन सब योजनाओं के तहत ये कोशिश की जा रही है
0: मतलब सरकार
1: कि
0: भी एकरा खातिर बहुत प्रयास कर रहल बाड़न कि वाटर शेड मैनेजमेंट के बढ़ावा मिले और एकरा खातिर बहुत सारे योजना भी बाटे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो वाटरशेड मैनेजमेंट जल संरक्षण का एक प्रभावी उपाय है, इससे जल संकट को कम करने, कृषि उत्पादन बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को, यानी हम सभी का ये कर्तव्य है कि जल संरक्षण के प्रति जागरूक हों और पानी को बचाएं, भविष्य के लिए बचाएं।
0: पानी खाली वर्षा के पानी के ही ना बचाएं, घर में भी पानी की बर्बादी ना करें, घर में
1: बिल्कुल,
0: भी जितना उपयोग हो
1: हाँ।
0: सके उतने करें, ये ना
1: अलावा
0: कि
1: इसके
0: पानी की
1: एक और
0: बर्बादी
1: तकनीक होती
0: करें।
1: है, अपशिष्ट जो जल होता है
0: हाँ
1: उनका भी पुनर्चक्रण किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है। मतलब
0: हाँ
1: जो अपशिष्ट जल है उनको भी पुनः उपयोग करके, उनका चक्रण करके उपयोग किया जाता है। इस तरह से हम ये करें तो हम काफी बचत कर सकते हैं पानी की, और जो आने वाला संकट जो हमें दिख रहा है वो
0: हाँ
1: काफी हद तक उसे हम कम कर सकते हैं।
0: तो अभी तो हमने के वाटर शेड मैनेजमेंट पर बहुत बात कही और अब विचार बाकी कार्यक्रम में तनी हम लोग आगे बढ़ी।
1: हाँ, गीत सुनते हैं। तो कलाकार हैं गोपाल पासवान, इनसे सुनते हैं ये गीत।
0: चलिए सुनल जाओ।

0: वाह, बहुत
1: बहुत
0: नीमन ई
1: गीत
0: पूर्वी
1: बढ़िया
0: गीत
1: लगा।
0: रहे। हाँ हाँ बहुत नीमन रहे। इंकरा से तो और भी आगे भी हम
1: हाँ
0: इनके
1: हाँ
0: गीत
1: बिल्कुल
0: सुने के,
1: सुनेंगे।
0: गोपाल पासवान से अभी सुनत रही ई पूर्वी गीत। और अब का विचार वा सुधा
1: अब
0: बहन।
1: एक वार्ता हम लोग सुन लेते हैं,
0: हाँ हाँ
1: भारतीय किसानों की स्थिति एवं सुधार के उपाय, इस विषय पर ये वार्ता सुनते हैं। वार्ताकार हैं मनोज कुमार।
0: चलिए सुनल जाओ।
2: भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की लगभग 50% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर है। भारतीय कृषि और किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। यहाँ जय जवान और जय किसान का नारा भारत की आत्मा को दर्शाता है। यहाँ के मेहनती किसानों की बदौलत ही वर्ष 2024-25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर लगभग 354 मिलियन टन हो चुका है, जो हमारी खाद्य सुरक्षा की मजबूती को दर्शाता है। 1947 की आज़ादी से अब तक देश के हर क्षेत्र ने पर्याप्त विकास किया है। आज भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम विश्व के सफलतम अंतरिक्ष कार्यक्रमों में शामिल है। भारतीय सेना विश्व की सबसे ताकतवर सेनाओं में सम्मिलित है और भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

आज भारत तकनीकों के क्षेत्र में भी नित नई इबारत लिख रहा है। इन उपलब्धियों के बावजूद भी खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला क्षेत्र कृषि आज भी विकास की दौड़ में कहीं पीछे रह गया है। कृषि पर निर्भर देश के करोड़ों लोग आज भी अभावों में जीवन जीने को विवश हैं। मेहनत के बावजूद भारतीय किसानों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। भारत के किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। भारतीय कृषि न केवल भोजन का स्रोत है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 18% है। भारत एक तरफ जहां खाद्यान्न उत्पादन के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसान जलवायु परिवर्तन और बाजार की अनिश्चितताओं जैसी अन्य जटिल चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं। भारतीय किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि देश की आर्थिक संप्रभुता के भी रक्षक हैं। उनकी स्थिति में सुधार तभी संभव है जब हम बीज से बाजार तक के पूरे चक्र को मजबूत करें, उन्हें उपभोक्ता के बजाय उद्यमी के रूप में देखें। चुनौतियों से जूझते किसानों के समक्ष कई तरह की समस्याएं हैं, जिनमें कृषि के लिए छोटे जोत, सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता, ऋण का जाल और बाजार में बिचौलियों की उपस्थिति सहित अन्य स्थितियां भी किसानों की समृद्धि में बाधक हैं। आज भी भारत की आधी से अधिक कृषि भूमि सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है। जलवायु परिवर्तन के कारण कभी सूखा तो कभी अत्यधिक बारिश फसलों को नष्ट कर देती है। निजी तौर पर सिंचाई सुविधाओं का बेहतर प्रबंध वही किसान कर पाते हैं जिनके पास पर्याप्त पूंजी उपलब्ध है। गरीब किसानों के लिए उसे वहन कर पाना संभव नहीं हो पाता। भारतीय किसानों की एक बड़ी आबादी के पास बहुत कम मात्रा में कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। छोटे जोत एवं उत्तराधिकार कानूनों के कारण जमीन के टुकड़े छोटे होते जा रहे हैं, जिससे मशीनीकृत खेती करना कठिन और महंगा होता जा रहा है। खेती की बढ़ती लागत और अनिश्चित पैदावार के कारण किसान अक्सर कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। साहूकारों या बैंकों से ऋण लेकर खेती करते हैं और फसलों के नष्ट होने पर ऋण लौटा नहीं पाते, जिससे बढ़ता ब्याज उनकी कमर तोड़ देता है। किसानों को अक्सर उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, बिचौलिए बड़ा मुनाफा कमा ले जाते हैं। आर्थिक परेशानी की मार झेलता किसान अपनी फसलों को ऋण चुकाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम कीमतों पर बेच देता है, जिससे उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। किसानों की स्थिति में सुधार के लिए सरकार भी लगातार प्रयासरत है। 2025 में विकसित कृषि संकल्प अभियान जैसे प्रयासों ने यह उम्मीद जगाई है कि सही सरकारी नीतियों और आधुनिक तकनीक के समन्वय से भारतीय किसान आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेगा। 7 सूत्रीय रणनीति के तहत इस क्षेत्र में सुधारों और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। प्रति बूंद अधिक फसल की रणनीति अपनाते हुए सूक्ष्म सिंचाई पर बल दिया जा रहा है, जिससे जल संरक्षण के साथ ही सिंचाई की लागत में भी कमी आएगी। कृषि क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का प्रयोग किया जा रहा है, साथ ही मृदा की गुणवत्ता के लिए खेतों में उचित मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए, जिससे मिट्टी और जल प्रदूषित होने से बचे रहें। उपज का सही मूल्य दिलाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार के निर्माण पर बल दिया गया है, जिससे देश भर में कीमतों में समानता आएगी और किसानों को पर्याप्त लाभ मिल सकेगा। वर्तमान समय में कृषि उपज को नष्ट होने से बचाने के लिए उनके भंडारण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए गोदामों और कोल्ड स्टोरेज पर निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिल सके, साथ ही उपज का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात भी किया जा सके। भारत में किसान प्राकृतिक आपदाओं की मार भी लगातार झेलते हैं। मानसून की अनियमितता, सूखा, अतिवृष्टि, अग्नि, चक्रवात और ओले गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसान बेहाल हो जाते हैं। इसका सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए सरकार द्वारा फसल बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिसके उपयोग से किसान अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। इसके लिए किसानों को जागरूक करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों की समृद्धि के लिए डेयरी, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन इत्यादि कृषि सहायक क्षेत्रों में विकास पर बल दिया जा रहा है। किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है, अनुदान के माध्यम से उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। पहले कृषि के लिए किसानों को बैंक व वित्तीय संस्थाएं ऋण देने में कतराती थीं और उन्हें संस्थागत ऋण नहीं मिल पाता था। ऐसे में किसान बाजार से महंगे दरों पर ऋण लेकर ब्याज चुकाने में ही अपनी अधिकांश कमाई गंवा देते थे। इसके लिए सरकार द्वारा बैंकों के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, जिसके माध्यम से किसान कृषि के लिए बहुत कम ब्याज पर ऋण ले सकते हैं। वर्तमान समय में भारतीय किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति

में सुधार के लिए सरकार, वैज्ञानिक और स्वयं किसान भी मिलकर नई कई मोर्चों पर वर्तमान समय में भारतीय किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार, वैज्ञानिक और स्वयं किसान भी मिलकर कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। सरकार द्वारा किसानों के प्रोत्साहन के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत प्रतिवर्ष किसानों को 6,000 रुपये की राशि दी जा रही है, जिससे उनका उत्साह बना रहे व कृषि कार्यों में भी मदद मिले। किसानों को उनकी उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए सरकार द्वारा जारी ई नाम पोर्टल पर देश भर की मंडियों में चल रहे भाव का पता चल जाता है, जिससे किसान अपनी सुविधा के अनुसार अपनी उपज बेच सकते हैं। ई नाम एक इलेक्ट्रॉनिक कृषि पोर्टल है जो पूरे देश में मौजूद कृषि उत्पादन बाजार समिति को एक नेटवर्क में जोड़ता है। यह एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार है जहां किसान अपनी उपज ऑनलाइन बेच सकते हैं। सरकार द्वारा किसानों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार की तरह डिजिटल फार्मर आईडी बनाई जा रही है, जिससे किसानों को सब्सिडी सहित सभी योजनाओं का लाभ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सके। किसानों की स्थिति में सुधार के लिए यह अति आवश्यक है कि किसान कृषि के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करें, जिससे खेती की लागत कम हो सके और उपज बढ़ जाए। भारत में अब कृषि क्षेत्र पारंपरिक तरीकों से निकलकर तकनीक की ओर बढ़ रहा है। आधुनिक तकनीकें न केवल खेती को आसान बनाती हैं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में भी क्रांतिकारी भूमिका निभा रही हैं। IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से सटीक खेती कर आज के किसान अपनी उपज बढ़ा सकते हैं। सटीक खेती का अर्थ है सही समय पर सही मात्रा में संसाधनों यानी पानी, खाद, कीटनाशकों का उपयोग करना। इस तकनीक में जीपीएस सेंसर और डेटा एनालिसिस का प्रयोग होता है। मिट्टी की नमी और पोषक तत्वों की जानकारी के साथ ही यह तकनीक बताती है कि फसल को पानी, खाद और कीटनाशक की जरूरत कब और कितनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मिट्टी की उर्वरता और नमी का विश्लेषण किया जाता है और किसानों को मोबाइल ऐप पर सारी जानकारी उपलब्ध हो जाती है। अब ड्रोन तकनीक के माध्यम से फसल की निगरानी, कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव किया जा रहा है। इसके इस्तेमाल से किसान कम लागत में कृषि कार्यों को बेहतर ढंग से कर रहे हैं। इसके लिए सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर नमो ड्रोन दीदी योजना चलाई गई है, जिसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण और ड्रोन के रख रखाव का प्रशिक्षण देकर उन्हें ड्रोन दीदी के रूप में तैयार किया जाता है। ड्रोन दीदी के सहयोग से ग्रामीण स्तर पर भी किसान कम समय में खाद, पानी, कीटनाशकों का प्रयोग बड़े क्षेत्र में कर सकते हैं। इससे पानी और रसायनों की बचत होती है। भारत जैसे देश में जहां पानी की किल्लत है, वहां स्मार्ट सिंचाई प्रणाली के तहत ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम वरदान साबित हुए हैं। इस तकनीक में खेतों में सेंसर लगे होते हैं, जिसके माध्यम से यह सिंचाई प्रणाली काम करती है। सेंसर मिट्टी की नमी, तापमान और हवा की गति मापते हैं और मशीन का स्मार्ट कंट्रोलर इस डेटा का विश्लेषण कर सिंचाई की जरूरत तय करता है। यदि मिट्टी सूखी है तो सिस्टम अपने आप वाल्व खोल देता है और जड़ों तक पानी पहुंचाता है। इस तकनीक से किसान 70% तक पानी बचा सकते हैं। इस तकनीक को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आधुनिक सिंचाई उपकरणों पर 50% से 90% तक की सब्सिडी भी दी जाती है, ताकि किसान आधुनिक तकनीक से जुड़ सकें। किसान भारत की आत्मा हैं और ये खुशहाल रहेंगे तो देश खुशहाल होगा। इनके विकास के लिए सरकार तथा संस्थाएं लगातार प्रयत्नशील हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री आशा योजना से किसान सीधे लाभ ले सकते हैं। किसानों की बेहतरी के लिए तकनीकों और बुनियादी ढांचों के विकास पर बल देकर हम उनकी समृद्धि तय कर सकते हैं। उनकी आय बढ़ाने के लिए कृषि विविधीकरण के तहत पशुपालन, मधुमक्खी पालन, फूल फल व सब्जियों की खेती पर विशेष बल देने की जरूरत है। किसानों को अपनी उपज सही मूल्य पर बेचने के लिए बाजार की सही जानकारी मिलनी चाहिए, ताकि वे उत्पादों को सही मूल्य व सही समय पर बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। अब हम कह सकते हैं कि किसानों की स्थिति में सुधार के लिए उन तक सरकारी योजनाओं की जानकारी, आधुनिक तकनीक का ज्ञान व उनकी समस्याओं पर संज्ञान, ये निहायत ही जरूरी है। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को संसाधनों का ज्ञान, सब्सिडी, ऋण और बीमा सहित कृषि के लिए अन्य सहायताओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।
ब्लॉक स्तर पर पंचायतों में शिविर लगाकर उन्हें आधुनिक तकनीकों सहित योजनाओं

0: का ज्ञान देकर उत्साहित करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत से छोटे ग्रामीण किसान जानकारी के अभाव में योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। जागरूकता से ही उनकी स्थिति सुधर सकती है।
1: अभी हम लोग सुन रहे थे ये वार्ता भारतीय किसानों की स्थिति एवं उसमें सुधार के उपाय पर। वार्ताकार थे मनोज कुमार, बहुत ही अच्छे तरीके
2: बहुत
1: से बताने
2: फरिया
1: में,
2: फरिया को बताइलन कि
1: बहुत
2: भारतीय
1: बहुत
2: किसान
1: धन्यवाद।
2: के स्थिति के कैसे सुधार
1: बिल्कुल,
2: जा
1: और ये
2: सके।
1: सही भी है ना मीनू जी, कि देखिए अब अधिकांश जनसंख्या तो कृषि पर निर्भर करती है, तो ऐसे में अगर किसानों की आय नहीं बढ़ेगी तो देश की आर्थिक प्रगति कैसे होगी।
2: अब बहुत तरह के योजना के बारे में भी बतेलन जरा से किसान अपना लाभ ले सकेलन, उनकर स्थिति में सुधार हो सकेला
1: बिल्कुल,
2: और स्थिति के सुधारे खातिर उपाय भी कर सकेलन। तो मनोज कुमार के बहुत बहुत धन्यवाद। और अब का विचार बा सुधा बहिन?
1: एक और गीत सुन लेते हैं हम लोग।
2: हाँ तो चलिए गोपाल पासवान से फिर से सुनतनी एगो गीत।

0: बहुत ही मार्मिक गीत ये,
1: विवाह
0: कन्यादान गीत
1: गीत।
0: था।
1: हाँ
0: कन्यादान का समय ऐसा होता है कि
1: कि
0: सबकी
1: आंख में आंसू
0: आंखें
1: आ
0: आ
1: जाला,
0: जाती
1: आ
0: हैं।
1: कितना निमन से गीत गईलन
0: तो
1: सुनईलन।
0: गोपाल पासवान को इस गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
1: हाँ
0: अब समय समाप्त हो रहा है चौपाल का, बढ़ते हैं आगे खेती
1: खेती
0: गृहस्थी
1: गृहस्थी
0: कार्यक्रम
1: में।
0: की ओर। और पहले सुनते हैं ये प्रायोजित कार्यक्रम, पैरा मेडिकल है पारस।
1: चलिए सुनल जाओ।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: हाँ तो अब सुनल जाओ, प्रायोजित कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
4: नमस्कार, राजेश बोल रहा हूँ। एक बार फिर से आज बुधवार का दिन है और आज के दिन आप सुनते हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस। पैरामेडिकल है पारस लेकर आते हुए एक दशक 10 साल से ज्यादा हो गए और लगातार हम बुधवार के दिन आपके इसी रेडियो स्टेशन से इसी समय आपके घर आंगन में पहुंचते हैं और युवा साथियों से बातें करते हैं कि अगर हेल्थ के सेक्टर में जाना है तो आपको क्या करना चाहिए। सिर्फ हम बातों को रख देते हैं, मानना न मानना आपकी मर्जी होती है। बड़े बुजुर्गों से भी हम अपील करते हैं कि आप भी अपनी बात नहीं थोपिए, युवाओं को अपने बच्चों को निर्णय लेने दीजिए, क्योंकि हर बच्चा अलग-अलग प्रकृति का होता है और अलग-अलग एम्बिशन लेकर आगे बढ़ना चाहता है। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। ये जो कार्यक्रम हम लेकर आते हैं, इसको सुनते सुनते न जाने कितने युवा साथी आज अपने करियर में आगे बढ़ गए और अपने लिए एक मुकाम बना लिए हैं। हमें अच्छा लगता है जब वो कहते हैं कि पैरामेडिकल की वजह से ही हमने पैरामेडिकल के करियर को चुना और आज हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं या यहाँ अपना व्यवसाय कर रहे हैं। श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पटना में है, पुराना बस स्टैंड जो है उसके जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने में है। हम ये कभी नहीं कहते कि आप आइए यहाँ एडमिशन ले लीजिए, ना ना ना, कभी नहीं। आपको संतुष्ट होना जरूरी है। हम ये जरूर कहते हैं कि संस्थानों को देखिए, समझिए, जानिए, परखिए, जाइए तो देखिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ के फैकल्टी हैं, ये संस्थान कहाँ से एफिलिएटेड है, रहने की क्या व्यवस्था है, सारी चीजों को। और सबसे बड़ी बात जो है, दो चीजें, लाइब्रेरी, क्योंकि हेल्थ सेक्टर की किताबें बहुत महंगी होती हैं, इसलिए एक रिच लाइब्रेरी का होना बहुत जरूरी है। और दूसरा प्रैक्टिकल, हाँ, कि क्या व्यवस्था है हेल्थ सेक्टर में। अगर जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर फिजियोथेरेपी है, पैरामेडिकल के और भी जो रेडियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, नर्सिंग है, अगर आप जो पढ़ाई कर रहे हैं तो इसमें प्रैक्टिकल की बहुत अहम भूमिका होती है। अगर आपको ऐसा लगे कि आप श्रीराज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट आना चाहते हैं या कोई सवाल है तो नंबर हम दे रहे हैं 9162413233, 9162413233, और दूसरा नंबर है 9155558888। हमने कहा 9155558888, ये नंबर है, इस पर आप सवाल पूछ सकते हैं। आज भी हमारे साथ विशेषज्ञ बैठे हैं, 4 कोर्स के बारे में हम इनसे बात करेंगे। एक ऐसा कोर्स भी है जो मैट्रिक पास करने के बाद किया जा सकता है और महज 1 साल का कोर्स है, करके आप अपने लिए एक अच्छा मुकाम बना सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, सामाजिक सेवा दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, और हमारे साथ हैं डॉक्टर रंजन कुमार, ये हैं।

0: प्राचार्य, प्रिंसिपल हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में हैं। प्रोफेशन से ये MBBS और MS भी हैं, है ना। आज इनसे बात करेंगे, युवा साथियों आपके लिए छोटे छोटे कोर्सेज जो हैं, जैसे एक्सरे टेक्नोलॉजी है, OT टेक्नोलॉजी है, या फिर इसी तरीके से लैब टेक्नोलॉजी है, या फिर ड्रेसर का कोर्स है। इस सिलसिले में आज हम डॉक्टर रंजन से जानना चाहेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले डॉक्टर रंजन, आपका स्वागत है हमारे आज के इस एपिसोड में।
1: नमस्ते राजेश बाबू, नमस्ते बच्चों।
0: सर, जैसा कि आपने सुना कि हम बच्चों के लिए आज आपसे छोटे छोटे कोर्स के बारे में एक एक करके जानकारियां लेंगे। सबसे पहले हम ड्रेसर से शुरुआत करते हैं कि ड्रेसर कोर्स के बारे में लोगों को बताइए थोड़ा।
1: ड्रेसर कोर्स एक वर्ष का यहाँ हो रहा है हम लोगों के संस्थान में, और इसमें है कि मरीज की प्रारंभिक में जो ड्रेसिंग की जो कार्यक्रम किया जाता है, ड्रेसिंग जो किया जाता है वो कैसे किया जाए, इसकी शिक्षा दी जाती है। और इसमें कोई सुई लगाने की बात है या मरहम पट्टी करने की बात है उसके विषय में बताया जाता है। ये भी एक अच्छा कोर्स है, और खास करके जहाँ चिकित्सक नहीं है देहात में, वहाँ तो खास करके इन लोगों की पूरी आवश्यकता है। इसमें सर्विस भी लगती है और व्यक्तिगत रूप से भी चाहें तो अपना कार्यक्रम कर सकते हैं।
0: एक साल का कोर्स है ये?
1: जी हाँ, ये कोर्स है, एक साल का है।
0: कौन लोग कर सकते हैं इस कोर्स को?
1: मैट्रिक पास कम से कम होना चाहिए, अगर ऊपर की शिक्षा प्राप्त कर लिए हों तो वो भी आ सकते हैं। जैसे इंटर की कोई परीक्षा पास कर लिए हों तो उनके लिए भी बेहतर है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं कि मैट्रिक में रुकते नहीं, इंटर तक चले ही जाते हैं, तो फिर लौट के आकर के भी ये कार्यक्रम वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं।
0: डॉक्टर रंजन कुमार ने बहुत अच्छे तरीके से ड्रेसर कोर्स के बारे में बताया। आपके तरफ से लगातार ये फोन कॉल आते रहे हैं कि कोई छोटा कोर्स है, कम अवधि का, कम खर्च का अगर कोर्स है और जिससे हम कमाई अच्छी कर सकें, लोगों के बीच पहचान बन सके। तो डॉक्टर साहब ने देखिए आज आप लोगों को ड्रेसर कोर्स के बारे में जानकारी दी है, और जो लोग मैट्रिक पास हैं, सिर्फ मैट्रिक पास हैं, वो भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कहीं इस तरीके से काम भी कर रहे हैं लेकिन डिग्री नहीं है उनके पास, तो ये कोर्स कर ले, और सरकारी क्षेत्र में जब भी रोजगार की संभावना हुई, वैकेंसी आई, तो आपको जरूर मौका मिलेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम चल रहा है पैरामेडिकल है पारस, जिसे हम लेकर आ रहे हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से। एक बार नंबर बता दें आप सबों को फिर से, नंबर है 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं एक बार फिर से डॉक्टर रंजन कुमार साहब के पास, जो प्राचार्य हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के। सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में जानकारी दें।
1: एक्सरे टेक्नीशियन का कोर्स 2 वर्ष का है
0: जी,
1: और इसमें कहीं एक्सरे का कार्यक्रम चल रहा होगा, कोई डॉक्टर अगर एक्सरे संस्थान अगर स्थापित किए हुए हैं तो वहाँ भी इनकी आवश्यकता रहती है। और सरकार के यहाँ भी, सरकारी संस्थान में भी जहाँ एक्सरे की व्यवस्था है वहाँ भी एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति होती है, और ये कक्षा में 2 वर्ष का एक कोर्स है, तो इसमें नामांकन लिया जा सकता है, अभी नामांकन जारी है।
0: डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सरे टेक्नीशियन के बारे में जानकारी दी। ये छोटे छोटे कोर्स हैं जो आपके जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, आप इससे शुरुआत करके फिर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर NP प्रियदर्शी जब आए थे उन्होंने बताया भी था कि बहुत सारे ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जो डिप्लोमा से डिग्री में ब्रिज कोर्स करके आप जा सकते हैं और अपने करियर को आगे बना सकते हैं। बहरहाल एक बार फिर से नंबर हम बता रहे हैं 9155558888 और 9162413233। ढेर सारे फोन कॉल आए थे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी के बारे में, उसके बारे में भी आने वाले एपिसोड में जानकारी दी जाएगी। इसी नंबर पर डॉक्टर NP प्रियदर्शी से बात करके और जानकारियां आप ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आप MBBS MS हैं, आपका एक इतना लंबा अनुभव है हेल्थ सेक्टर में, और आप अभी अनुभव को साझा कर रहे हैं आज के युवाओं के साथ श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट जैसे एक प्रतिष्ठित संस्थान में आप प्राचार्य हैं। हाँ, हमारे सुनने वालों को OT असिस्टेंट के बारे में जानकारी दीजिए।
1: ऑपरेशन थिएटर में जो

0: डॉक्टर काम करते हैं उनके सहयोग के लिए स्टाफ की आवश्यकता होती है
1: जी।
0: जो ट्रेंड स्टाफ होंगे तभी डॉक्टर को मदद कर सकते हैं
1: जी।
0: ये बहुत ही महत्वपूर्ण है काम, तो उनके लिए जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी अच्छे ढंग से तो फिर डॉक्टर को सहयोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनकी ट्रेनिंग लेना आवश्यकता है। तो यहाँ पर डिप्लोमा का भी कोर्स है 2 वर्ष का, और इसे आगे बढ़ करके बैचलर की भी डिग्री लिया जा सकता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसको करना चाहिए।
1: ओटी असिस्टेंट को करना चाहिए, आप रिकमेंड करते हैं
0: जी?
1: आप रिकमेंड करते हैं
0: जी? जी
1: जी रिकमेंड करते हैं। जब डॉक्टर साहब का रिकमेंडेशन हो गया और ये प्रिंसिपल भी हैं, तो सोचिए कि ये कोर्स अपने आप में बहुत ही संपूर्ण कोर्स है। आप जरूर इसको आजमा सकते हैं अपने लाइफ में, अपने एक बेहतर करियर के लिए। सर एक कोर्स और है जिसकी जानकारी हम चाहेंगे आपसे, लैब टेक्नीशियन की जानकारी हम चाहेंगे सर।
0: राजेश बाबू
1: जी सर,
0: ये लैब टेक्नीशियन की बात आप पूछ रहे हैं
1: हाँ।
0: तो जितना भी जांच होता है पैथोलॉजी का
1: हाँ हाँ।
0: तो वो लैब टेक्नीशियन ही करते हैं डॉक्टर के सहयोग से, डॉक्टर तो करते ही हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण लैब टेक्नीशियन में जो काम सहयोगी रहते हैं टेक्नीशियन
1: हाँ।
0: उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और इन्हीं पर निर्भर रहता है पूरा कि आखिर काम कैसे हो। लेबोरेटरी का पूरा चीज उनको जानकारी में होना चाहिए, क्या क्या जाँच किया जाता है, कैसे जाँच किया जाता है, क्यों जाँच कराया जाता है पैथोलॉजी में, उसकी जानकारी यहाँ पर लेने के लिए आपको लैब टेक्नीशियन का कोर्स करना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा कोर्स है, अगर 2 वर्ष का करना चाहते हैं तो वो भी है। उसके अलावा अगर चाहें कि बैचलर की डिग्री अगर लेना चाहते हैं तो बैचलर की भी डिग्री बाद में आगे प्राप्त कर सकते हैं।
1: रोजगार ये तो
0: रोजगार परख है, ये रोजगार परख है। कहीं भी लेबोरेटरी चल रहा होगा, प्राइवेट में भी बहुत सारा लेबोरेटरी है, वहाँ लैब टेक्नीशियन की जरूरत वहाँ भी रहती है। वैसे सरकारी संस्थान में भी जहाँ लेबोरेटरी चालू है वहाँ लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति के लिए वैकेंसी भी निकलती है और सभी लड़के जाते हैं जिनको अच्छा डिग्री मिला हुआ है, तो उनको तो नौकरी निश्चित है।
1: अच्छा, डिप्लोमा और डिग्री जो किए हुए हैं बच्चे वो तो अपना लैब भी खोल सकते हैं?
0: जी हाँ, अपने भी लैब खोल सकते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त है कि कोई डॉक्टर के साथ उसका संबंध होना चाहिए, दिखाना पड़ेगा
1: अच्छा,
0: कि हाँ डॉक्टर वहाँ रह रहे हैं, उनके गाइडेंस में काम मात्र इतना ही रहता है। वैसे ही वो अपना प्राइवेट भी काम शुरू कर सकते हैं, अपना लैब खोल सकते हैं, मात्र इतना ही रहता है कोई डॉक्टर का उसमें उनका सहयोग होना चाहिए, उनके गाइडेंस होना चाहिए, मिलना चाहिए, वैसे अपना चला सकते हैं बिल्कुल।
1: डॉक्टर रंजन कुमार, ये चारों कोर्स जिसकी हमने अभी चर्चा की आपके साथ मिलकर और आपने बताया, अगर इन चारों कोर्स में से किसी भी को ऑप्ट किया जाए तो युवा आगे बढ़ सकता है अपने करियर में?
0: जी जी जी जी राजेश बाबू,
1: आगे बढ़ सकता
0: जी
1: है।
0: जी जी,
1: थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद राजेश बाबू,
1: धन्यवाद हो गया अपने विशेषज्ञ का। और अब चलने की बारी आ गई है, चले इससे पहले हम पूछना चाहते हैं इस रेडियो कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस के माध्यम से, कैसा लगा आज का ये कार्यक्रम जो 4 कोर्स बताए गए आपको, और खास करके ड्रेसर का, ओटी असिस्टेंट का, इसके अलावा एक्सरे का, इसके अलावा पैथोलॉजी का, ये सारे कोर्सेज जो है ना बहुत वाइब्रेंट है। अगर जो आप इसको कर लेते हैं ना तो कहीं से भी रोजगार की समस्या नहीं होगी। और एक बात बताएं, सरकारी सेवा में जाने के लिए एक डिग्री का होना, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स हो, चाहे डिप्लोमा हो या बैचलर की डिग्री हो, इसका होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो वैकेंसी आ ही रही है, लगातार वैकेंसियां आ रही हैं, आपके पास अगर डिग्री रहेगा तो आप भर सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए एक डिग्री का होना बहुत जरूरी है। हमारे एक्सपर्ट ने भी बहुत अच्छे से बताया, खुद इनका एक लंबा अनुभव है, MBBS और MS है और अभी प्राचार्य हैं, हाँ प्रिंसिपल हैं श्री राज हाँ नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में। तो सब कुछ सही सही हम करना चाहते हैं, एक भरोसा है, आप भी कहते हैं कि आप पर एक भरोसा है, हम भी कहते हैं कि आप हमारे अपने हैं, आपके लिए एकदम सब कुछ सत्य सत्य आपको बताया जाएगा। और ये भी कहते हैं कि हम कोई बात नहीं करेंगे, डिसीजन आपको लेना होगा। हाँ, डिसीजन आपको लेना होगा, अपनी मर्जी के अनुसार से लेना होगा कि आप ANM कीजिएगा, GNM कीजिएगा, फिजियोथेरेपी कीजिएगा या ऑक्यूपेशनल थेरेपी कीजिएगा, आप पैथोलॉजी में जाइएगा या आप एक्सरे में जाइएगा। लेकिन अगर हम इतना कहते हैं कि अगर जो टेक्निकल पढ़ाई हेल्थ सेक्टर में आपने कर लिया ना, तो रोजगार मिलना बहुत आसान हो जाएगा, स्वरोजगार भी कर सकते हैं। चलते चलते हम एक बार नंबर फिर से बता देते हैं, 9162413233, 9162413233।

0: और दूसरा नंबर 9155558888। तो बस आज हम थैंक यू कहते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो पटना के जक्कनपुर इलाके में है, पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है, कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम राजेश को लेकर आने का वर्षों से मौका दिया है और लोग इस पर अमल भी कर रहे हैं। तो मुलाकात होगी अब अगले बुधवार को आप सबों से, तब तक के लिए नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट।
2: हाँ, तो अभी हमने की सुनत रही प्रायोजित कार्यक्रम पैरामेडिकल है पारस।
3: और अब कुछ बातें भाई अपने काम की हो जाए।
2: हाँ हाँ, किसान भाइयों के फायदा वाला बात अभी हमने के कर जाओ।
3: देखिए, किसान कृषि के साथ साथ पशुपालन भी तो जरूरी होता है और बहुत से लोग तो स्वतंत्र रूप से ये व्यवसाय के रूप में करते हैं।
2: हाँ, पशु
3: तो चाहे जैसे भी करें, लेकिन मवेशी तो सबके पास होता ही है, कम या ज्यादा। तो मवेशियों की देखभाल भी एक, मतलब कहा जाए तो, चुनौती भरा कार्य है।
2: एकदम
3: हर तरह से उन्हें बचाना, ताकि भाई अगर जरा से भी प्रभावित होते हैं पशु तो असर पड़ता है उत्पादन पर, और सीधा असर फिर हमें नुकसान होता है।
2: मतलब कि पशुन सभन में तरह तरह के बीमारी भी होखे लगेला। तो आज खेती गृहस्थी में किसान भाइयन के मतलब पशुन सभन में होखे वाला काहे ना टीवी रोग के बारे में हमने कितनी चर्चा कर ले बोल जाओ।
3: अच्छा, टीबी यानी कि क्षय रोग, तो ये पशुओं में भी होता है।
2: हाँ।
3: सही बात है, पशुओं में भी होता है, मनुष्यों में तो होता ही है। तो ये रोग गाय भैंस बकरी सुअर और अन्य पालतू जानवरों में भी हो सकता है।
2: हाँ।
3: बल्कि ये जानवरों से मनुष्यों को भी हो सकता।
2: हाँ,
3: है
2: उनकरा जरिए मनुष्य में हो
3: संक्रमण। हाँ, हो सकता है।
2: जे की मुख्य रूप से बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम बोविस के कारण होखेला, जिसन की रवा कहनी कि गाय भैंस बकरी सहित ढेर मनी पशुअन में पावल जाला। कभी कभी तो पशुअन से ई टीवी रोग मनुष्य तक भी फैल जाएला, जिकरा जूनोटिक रोग भी कहल जाला,
3: यानी कि पशुजन्य रोग।
2: हाँ, पशु से मतलब जे होखे वाला रोग मनुष्य के ओकरा जूनोटिक रोग भी कहल जाला। टीवी रोग कैसे फैलेला, तो देखिए संक्रमित पशु के खांसे या छींके से या दूषित चारा या गंदा पानी पिए से भी हो सकेला। टीवी रोग मनुष्य के संक्रमित पशु के दूध से भी होखेला, लंबा समय तक संक्रमित पशुअन के संगे रहे से भी हो जाएला। एक
3: जैसे कि जो छोटे बछड़े हैं, गाय के बच्चे हैं, अगर उसको हुआ है टीवी और
2: हाँ,
3: बच्चा उसका दूध पी ले तो
2: हाँ,
3: उससे भी हो सकता
2: भी
3: है। अलावा इसके संक्रमण सांस और आहार की नली, भोजन, पानी, दूध से तो होता ही है। स्वस्थ पशु जो रोगी पशु के संपर्क में रहते हैं,
2: अब वहाँ पे
3: उनसे भी हो सकता है।
2: हाँ,
3: तो इस रोग के जीवाणु जो है संक्रमित पशुओं के दूध, लार, मल या नासिका श्राव, नाक से जो श्राव होता है उससे विसर्जित होते हैं। तो इस रोग की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें रोगी पशु में बेचैनी के अलावा कोई खास लक्षण नहीं दिखाई देता है, मतलब
2: हाँ,
3: शुरू में पता भी नहीं चलता है अगर जांच नहीं किया जाए तो।
2: हाँ,
3: इससे ग्रसित पशुओं में कमजोरी, भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है, उनमें लगातार कमजोरी आती है, दुर्बल होते जाते
2: मतलब
3: हैं।
2: हो
3: हाँ, हाँ, और हमेशा हल्का बुखार बना रहता है। तो रोगी पशु को सूखी खांसी भी आती है और वो धीरे धीरे कमजोर होता जाता है,
2: भूख भी कम लगे लायक।
3: हाँ, खाने में अरुचि, मैंने बताया ना कि मतलब वो खाते नहीं है,
2: दूध उत्पादन में भी कमी आ जाला।
3: तो पशुओं में जो क्षय रोग है उसकी रोकथाम के लिए देखिए अभी तक कुछ खास दवा नहीं है, टीके नहीं बने हैं, इसलिए ज़रूरी है कि कुछ सावधानी बरती जाए, कुछ तरीके अपना सकते हैं जिससे कि हम पशुओं को इस रोग से बचा सकते हैं। जैसे पशुओं को खरीदने से पहले पशुओं का टेस्ट करवाया जाए।
2: ब्लड टेस्ट करवा ली है।
3: हाँ, जो मतलब ये टीबी का टेस्ट अगर करवा सकते हैं तो वही करवा लें। जो पशु रोगी पाए जाएं उन्हें स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए।
2: हाँ।
3: पशुओं के रहने का जो स्थान होता है वो पर्याप्त हवादार होना चाहिए,
2: साफ सुथरा भी रहे।
3: हाँ, स्वच्छता का ख्याल तो रखना चाहिए, उसमें जो कीटनाशक घोल होते हैं उनसे सफाई कर दी जाए। और दिन के समय सूर्य का प्रकाश आए तो बहुत अच्छा होता है। जो व्यक्ति पशुओं की देखभाल करता हो वो भी बीमार ना हो, अगर उसे टीबी रोग हुआ तो वो भी पशुओं को हो सकता है, तो इसलिए उसे भी
2: मतलब
3: स्वस्थ रहना चाहिए।
2: पशु के टीबी रोग
3: संक्रमण जो अगर वो किसी को है, अगर खांसता छींकता है तो वो संक्रमण तो फिर फैलेगा।
2: हाँ, एक दूसरे के फैल सकेला। मतलब कि समय समय पे पशुओं की जांच कराते रहें, टीबी रोग के उपचार

0: कठिन और लंबा बा, यही से टीवी से ग्रसित पशुअन के पशु चिकित्सक से सलाह लेके जैसे चिकित्सक मतलब डॉक्टर सलाह दीहन वैसे ही पशु के रखें।
1: रोगी पशु के गोबर मूत्र एवं चारे को जला देना चाहिए या गहरे गड्ढे में गाड़ देना चाहिए।
0: हाँ
1: तो पशुओं में इस रोग से बचाव के लिए देखिए अभी तक तो कोई टीका नहीं है, इसलिए पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए और समय समय पर पहचान, स्वच्छता, नियमित जांच और उचित देखभाल से इस रोग से पशुओं को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। बस ज़रूरत है थोड़ी सावधानी की। अगर पशु खाने में अरुचि दिखा रहे हों, सुस्त हों, कमज़ोरी बढ़ रही है, तो समझने की आवश्यकता है कि उनकी जांच करवाएं।
0: हाँ
1: मान लीजिए अन्य जांच में कुछ नहीं निकलता, फिर टीवी का जांच करवाएं।
0: हाँ जरूर करें। अब देखिए, स्वस्थ पशु तक किसान के शान बाढ़न, टीबी रोग से बचाव और ध्यान ही किसान के सबसे जरूरी काम बाटे। पशु स्वस्थ किसान के आय में वृद्धि होगी। पशु अनबोलल जीव है, तरक्की इनकर खूबे ध्यान, काहे कि ना बता पाई है ये अपन मन मिजाज कैसन बा।
1: और ये भी ध्यान रखना है कि अगर किसी पशु को मान लो निकल ही जाता है कि टीबी रोग उसको है, तो
0: हाँ
1: इलाज तो काफ़ी लंबा चलता है,
0: हाँ एकर
1: तो
0: इलाज
1: उस
0: बहुत
1: दौरान
0: लंबा
1: उसके
0: बा,
1: दूध का सेवन नहीं
0: एकदम ना
1: करना
0: करे
1: चाहिए,
0: के
1: बिल्कुल नहीं
0: चाहिए।
1: करना चाहिए, क्योंकि उसके दूध के सेवन से फिर मनुष्यों में
0: अजी
1: वो
0: पशु
1: हो
0: पाला
1: सकता है।
0: तरन ऐसा ना कि बीमार पशु के, टीवी ग्रसित पशु के दूध बाजार हाट में या केकरो बेच
1: हाँ ये
0: देते।
1: मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम नहीं
0: हाँ
1: सेवन करें लेकिन
0: हाँ
1: दूसरे को देना,
0: दूसरा के
1: ऐसा
0: बेच
1: नहीं
0: दिए
1: करना चाहिए।
0: अपना
1: बिल्कुल
0: आय खातिर, तो
1: दूसरे
0: ये
1: के
0: भी ना
1: स्वास्थ्य
0: होए
1: के
0: के
1: साथ
0: चाहिए।
1: खिलवाड़ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसीलिए देखिए कहा जाता है कि अगर हम पाश्चरीकृत दूध का प्रयोग करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, या फिर
0: हाँ
1: बहुत अच्छे से उबाल करके उसका प्रयोग करना चाहिए। ऐसे भी कुछ अन्य गंदगी जो होती है, बैक्टीरिया होते हैं,
0: वो
1: जीवाणु होते हैं, वो
0: हाँ
1: ख़त्म हो
0: मतलब
1: जाते हैं।
0: गरम कईला पर खत्म हो जाला।
1: तो चलिए अब श्रोता इंतजार कर रहे होंगे कि भाई एक गीत सुनाने का वादा किया गया
0: हाँ
1: था।
0: हाँ हमारे मन में तो चलत रहे कि काहे ना एगो कृषि
1: तो
0: गीत हम
1: भाई
0: एके
1: अब
0: सुन लेवल जाओ।
1: तुरंत सुनवा दीजिए श्रोताओं को।
0: तो चलिए गोपाल पासवान से सुनतनी ई कृषि गीत।

0: बढ़िया गीत था भाई,
1: हाँ तो
0: गोपाल पासवान से ये कृषि गीत हम लोग सुन रहे थे।
1: अंकृता अभी सब गीत ला हमने के
0: बहुत बहुत
1: धन्यवाद दे
0: धन्यवाद।
1: दी हल जा।
0: फिलहाल ये कटनी करने चले और हम लोग चले, श्रोताओं से भी चले, अपने घर चले।
1: तो प्रणाम सुधा बहन।
0: नमस्कार मीनू जी।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर
3: इधर।
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
5: और इस गीत के बाद
6: छाया गीत।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सीवान में ग्रामीण एसपी के पद सृजन की मिली मंजूरी। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव से गहराते ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया। और जनगणना में मकान सूचीकरण के तहत दर्ज गलत जानकारी को संशोधित किया जा सकता है। जनगणना निदेशक रंजीता ने साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। प्रमुख एजेंडों में गृह विभाग की आरक्षी शाखा के तहत राज्य के 5 और जिलों में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पद को सृजन का निर्णय शामिल है। इन जिलों को अपराध और सांप्रदायिक रूप से अत्यंत संवेदनशील बताया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी है।
1: गृह विभाग का एजेंडा था जिसमें 5 जिलों पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली एवं सिवान में, जो कि अत्यंत संवेदनशील जिले हैं, इनमें ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के एक एक पद, कुल 5 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
0: श्री चौधरी ने कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ोतरी की जानकारी देते हुए बताया कि 7वें वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 58% से बढ़ाकर 60% कर दिया गया है।
1: राज्य के सरकारी सेवकों एवं पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता एवं राहत के दर में वृद्धि की गई। पंचम वेतनमान वाले में 474% से बढ़ाकर 483% महंगाई भत्ता कर दिया गया। षष्ठम के मामले में 257% के स्थान पर 262% और सप्तम वेतनमान के मामले में 58% के स्थान पर 60% महंगाई राहत का भुगतान की स्वीकृति दी गई। यह 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से लागू होगी।
0: इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इन वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने की योजना बनाई है। श्री चौधरी ने बताया है कि इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के तहत महिलाओं समेत अन्य वर्गों को DBT के माध्यम से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
1: परिवहन विभाग का एजेंडा था जिसमें मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना का गठन और उसके क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए कुल 110 करोड़ रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन संशोधन नीति 2026 की स्वीकृति दी गई अगले एजेंडा में।
0: इधर प्रदेश की सरकार ने किशनगंज में CISF ट्रेनिंग सेंटर के लिए 110.12 एकड़ जमीन केंद्रीय गृह मंत्रालय को मुफ्त हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य के महाविद्यालयों में 132 नए पदों के सृजन की मंजूरी भी मिली है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और वैश्विक स्तर पर गहराते ऊर्जा संकट की आशंकाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन की खपत कम करने और ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री के इस आह्वान के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत को लेकर ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट किया है कि देश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत के पास 60 दिनों का कच्चे तेल का भंडार, 60 दिनों की LNG तथा 45 दिनों का LPG भंडार उपलब्ध है।
2: किचन में इस्तेमाल

0: होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35 या 36 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36 हजार से बढ़ाकर 54 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
1: प्रधानमंत्री की अपील के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।
2: मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कारकेड में वाहनों की संख्या न्यूनतम करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मंत्रीगण निगम बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधियों से बिना अतिरिक्त वाहनों के सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता से मेट्रो, बस, ऑटो और अन्य सार्वजनिक परिवहन के अधिकाधिक उपयोग का आग्रह किया है। राज्य सरकार के सभी विभागों को सरकारी बैठकों और कॉन्फ्रेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करने का भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सरकारी कैंटीनों में पाम ऑयल के कम इस्तेमाल, सरकारी एवं निजी कार्यालय में वर्क फ्रॉम होम संस्कृति को बढ़ावा देने तथा सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की अपील भी की गई है। आकाशवाणी समाचार से मैं निधिश्री।
1: उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रधानमंत्री की पहल को स्वागत योग्य और प्रशंसनीय बताते हुए कहा कि बचत की मानसिकता विकसित करना समय की आवश्यकता है।
3: प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ बातें सलाह या सुझाव के तौर पर देश के नागरिकों को दी है वो न सिर्फ सराहनीय है बल्कि प्रशंसनीय है। लगभग 25% विदेशी मुद्रा जो खर्च होती है सरकार की वो पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर होती है, तो उन्होंने कहा है कि इसका खर्चा कम करिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोलियम उत्पादों को बचाने और एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने की अपील का प्रदेश में आम लोगों ने स्वागत कर सहयोग करने की बात कही है।
4: मैं राहुल कुमार मधेपुरा से। वैश्विक संकट के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए बयान का हम सभी समर्थन करते हैं। जिस प्रकार से तेल, पेट्रोल और गैस में किल्लत हुआ है वो वैश्विक स्तर पर है और उसका हम सभी कैसे सहयोग करके भारत को इस संकट से बचा सकते हैं।
5: मैं सुरेश शेखर शिवहर का निवासी हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आम जनता से अपील की है वह एक दूरदर्शी और सराहनीय पहल है। हम सभी नागरिकों को उनके इस सलाह का पालन करना चाहिए।
6: मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद। प्रधानमंत्री कह रहे हैं मान लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भविष्य की बात उन्होंने की, इसलिए वो जो कहे हैं एकदम सही कहे हैं और इसको हम लोग को मानना चाहिए।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
7: कहाँ चलती है? इधर तो आओ।
8: इधर आइए। इधर
9: इधर
8: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
10: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
9: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
10: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
9: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
11: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
10: शुभ वाणी,
11: लाभ वाणी,
10: आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक उत्तीर्ण हुए। 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई इस परीक्षा में 88.86

प्रतिशत छात्र और 82.13% छात्राएं उत्तीर्ण हुई। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजीलॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। जनगणना 2027 का पहला चरण 2 मई से 31 मई तक चलेगा। इसके अंतर्गत मकान सूचीकरण का कार्य किया जा रहा है। जनगणना कार्य निदेशालय की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी सह निदेशक रंजीता ने आकाशवाणी समाचार से

0: जनगणना कार्य निदेशालय की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी सह निदेशक रंजीता ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि मकान सूचीकरण के तहत प्रगणक स्वगणना के दौरान दर्ज गलत जानकारी को संशोधित कर सकेंगे। उन्होंने लोगों से इस बीच साइबर फ्रॉड को लेकर भी सतर्क रहने की अपील की।
1: कोई भी जनगणना कर्मी आपके घर आते हैं तो वो आपसे वित्तीय जानकारी या किसी प्रकार का दस्तावेज उसकी मांग नहीं करते। तो अगर कोई भी इस प्रकार का मैसेज आता है या कोई व्यक्ति आपको इसके लिए संपर्क करता है तो आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है और साइबर हेल्पलाइन 1930 उस पर संपर्क कर सकते हैं या जो हमारा टोल फ्री नंबर है 1855 उस पर संपर्क कर सकते हैं। नजदीकी थाने में इसकी सूचना दे सकते हैं या जिला प्रशासन स्थित शिकायत प्रकोष्ठ में इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
0: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 37,500 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ सतही कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है।
2: भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है। कोल गैसिफिकेशन की स्कीम 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: केंद्र सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सोने और चांदी पर 5% और प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। राजधानी पटना, अररिया और कटिहार समेत प्रदेश के 6 जिलों में कल ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। मॉक ड्रिल के तहत कल शाम 7 बजे से 7:10 तक पूर्व निर्धारित नागरिक सुरक्षा अभ्यास के तहत ब्लैकआउट किया जाएगा। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन SM ने बताया कि इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी सार्वजनिक लाइटें बंद कर दी जाएंगी। जिलाधिकारी ने लोगों से अपने घर, दुकान और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सभी लाइटें बंद रखने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जमुई, बांका, खगड़िया, बेगूसराय, दरभंगा, समस्तीपुर और सहरसा सहित कई जिलों में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस दौरान धूल भरी आंधी चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष मानसून का आगमन निर्धारित समय से पहले होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व जिलों में तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार से चल सकती है, साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने की भी संभावना है।
3: दिनांक 14 मई राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्री चिराग पासवान ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सूरजमुखी बीज के MSP में सबसे अधिक 622 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। इसके अलावा कपास पर 557 रुपये, राम तिल पर 515 रुपये तथा तिल पर 500 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में कल देर रात STF और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया गया। ये अपराधी किसी बड़े आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। अरवल जिले की अग्निशमन पदाधिकारी रश्मि की अध्यक्षता में 36 जगहों पर मॉक ड्रिल और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। इस दौरान आग से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सीतामढ़ी में सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर नेताओं और समर्थकों से मुलाकात की। श्री कुमार ने समर्थकों को संबोधित करते हुए पिछली सरकार पर काम न करने का आरोप लगाया। दरभंगा शहर के रामबाग किला घाट के पास आज सुबह चेन छिनते की घटना का विरोध कर रहे एक युवक की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

0: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली और सीवान में ग्रामीण एसपी के पद सृजन की मिली मंजूरी। पश्चिमी एशिया में जारी तनाव से गहराते ऊर्जा संकट के बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया और जनगणना में मकान सूचीकरण के तहत दर्ज गलत जानकारी को संशोधित किया जा सकता है। जनगणना निदेशक रंजीता ने साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने की अपील की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: और इस गीत के बाद
5: छाया गीत।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है औरंगाबाद जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता कमल किशोर।
1: औरंगाबाद जिले के बड़े भूभाग को सिंचित करने के उद्देश्य से निर्माणाधीन उत्तर कोयल नहर परियोजना के काम में तेजी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत प्रत्येक सप्ताह जिला प्रशासन और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अलावा निर्माण कंपनी के अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उत्तर कोयल नहर परियोजना झारखंड से प्रारंभ होकर जिले के नबीनगर, कुटुम्बा, देव, मदनपुर और औरंगाबाद प्रखंडों से होकर गया जिले में प्रवेश करती है। परियोजना कार्य पूरा होने से 1,11,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इसका अधिकांश हिस्सा बिहार में है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने उत्तर कोयल नहर के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और किसानों के हित में इसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने उत्तर कोयल नहर परियोजना के कार्यों में तेजी आने पर प्रसन्नता जाहिर की है और कहा है कि इस परियोजना के पूरा होने से औरंगाबाद तथा गया जिले के असिंचित इलाके में खुशहाली आएगी। भारत की जनगणना 2027 का कार्य जिले में सुचारू रूप से चल रहा है। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा जनगणना कार्य की लगातार समीक्षा कर रही हैं। इसके तहत 2 मई से जिले में हाउस टू हाउस सर्वे का कार्य चल रहा है। इस कार्य में जिले के लगभग 5,031 प्रगणक सक्रिय रूप से अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर सर्वेक्षण कर रहे हैं। मकान का चिन्हांकन और सूचीकरण का कार्य 31 मई तक चलेगा। जिलाधिकारी ने जनगणना कार्य में जिले वासियों से सहयोग करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर औरंगाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह, विधायक त्रिविक्रम नारायण सिंह, पार्टी के महामंत्री सतीश कुमार सिंह, अनिल कुमार सिंह ने इस सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और सरकार के जनहित में किए गए कार्यों को दिया है। आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए जिले में पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने बताया कि 19 मई 2026 को जिले के सभी प्रखंडों के चुने हुए पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन होगा। शिविर में आम नागरिकों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर उनका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जिले के लॉर्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल में भगवान बुद्ध की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। लॉर्ड बुद्धा शैक्षिक विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय कुमार ने इसका उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि आज के प्रति स्पर्धात्मक और तनावपूर्ण युग में बुद्ध के सत्य अहिंसा

0: अहिंसा और करुणा के सिद्धांत पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल ने मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस अधिकारियों को अपराध के मामलों में तत्परता से कार्य करने को कहा है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। 9 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन कुमार, परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अरुण कुमार और पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। इसमें 2015 मामलों का निस्तारण किया गया, 5 करोड़ से अधिक का समझौता भी किया गया। जिले के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सच्चिदानंद सिन्हा महाविद्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा ने कहा कि सफलता की एकमात्र पूंजी कठिन परिश्रम और ईमानदारी है। भारतीय रेल और एनटीपीसी लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम भारतीय रेल बिजली कंपनी की नवी नगर स्थित परियोजना के विस्तार की पहल की गई है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक रंजन देहुरी ने बताया कि यहां 800 मेगावाट बिजली उत्पादन की एक इकाई स्थापित किए जाने को लेकर प्रारंभिक प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना विस्तार से भारतीय रेल बिजली कंपनी की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 1800 मेगावाट हो जाएगी। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा, रेड क्रॉस के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह, ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर रवि रंजन ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर रेड क्रॉस के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह ने कहा कि रक्तदान जीवन दान के समान है। एनटीपीसी लिमिटेड की नवी नगर परियोजना में इस वर्ष आयोजित होने वाले बालिका सशक्तिकरण अभियान की तैयारी शुरू हो गई है। कंपनी के कार्यकारी निदेशक एल के बेहरा ने बताया कि अभियान के तहत 60 बालिकाओं का चयन कर 12वीं कक्षा तक उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मदनपुर में पत्तल निर्माण उद्योग की स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन नाबार्ड के उप महाप्रबंधक सुशील कुमार सिंह और जिला विकास प्रबंधक कृष्ण कुमार ओझा ने संयुक्त रूप से किया।
1: अभी आप सुन रहे थे औरंगाबाद जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता कमल किशोर।
2: आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से अपील। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम लागू करने की अधिसूचना जारी। और होगी एक रिपोर्ट ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों से साझेदार बनने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने या ऐसे खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया है। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत की आवश्यकता है।
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
2: प्रधानमंत्री के आह्वान पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है।
4: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी

0: की मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
1: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोगों से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाने का संकल्प लेने की अपील की है।
3: देशवासियों से जो पीएम ने अपील की, हमारी विदेशी मुद्रा खर्च जिन चीजों में होता है, तेल में सबसे ज्यादा होता है, क्या हम नई गाड़ी खरीद सकते हैं तो ईवी खरीदे, मेट्रो से चले, बस से चले और एलपीजी और पीएनजी के बदले इंडक्शन चूल्हा जलाएं, अगर हो सके तो सोलर प्लेट लगाएं।
2: इधर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच लोगों को पेट्रोलियम उत्पादों के इस्तेमाल में अनुशासन बरतने का संकल्प लेना चाहिए।
4: वैश्विक समस्या है, सभी जगह पे दिक्कत हो रही है, हर देश में रेशनिंग का काम आज हो रहा है, उसी तरीके से रेशनिंग करने की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है। कुछ जब समस्या आती है तो समय थोड़ा अनुशासित होकर अगर हम लोग समस्या को झेल जाते हैं तो फिर आने वाले समय के लिए बेहतर होता है, अर्थव्यवस्था और बेहतर होकर उभरेगी और मजबूत होकर उभरेगी।
2: केंद्र सरकार ने विकसित भारत, जी राम जी, गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
5: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई के रूप में याद किए जाने वाले इस अभियान ने देश की सुरक्षा नीति और सैन्य रणनीति को नई दिशा दी थी। एक रिपोर्ट।
6: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
7: विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीते, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीति। जी श्रोताओं, बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में, जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। सिंदूर नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर सम्मान, सुरक्षा और अस्मिता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। ये अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुण, भुजंगक्ष्व राज्यम समृद्धम, मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम, भव सव्य साचिन।
6: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
2: इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

अभी आप सुन रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में दिल का क्या कसूर फिल्म का गीत। गीतकार हैं अनवर सागर और संगीतकार नदीम शर्वाणा।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे फिल्म आरजू का। गायक कलाकार होंगे कुमार सानू और अलका याग्निक। गीतकार हैं आनंद बख्शी।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

पंकज उधास और साधना सरगम के द्वारा गाए हुए मोहरा फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। श्रोताओं, फिल्म संगीत का आनंद अब आप लेंगे रात 10 बजे। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, आइए सुनते हैं सुगम संगीत के कार्यक्रम में गजल। कलाकार हैं रूपम किशोर।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप गजल सुन रहे थे। कलाकार थे रूपम किशोर। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के लिए
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: वकील के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का

0: उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वाहनों के भीड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
1: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा

0: घोषणा की। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
1: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने पांचवी बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2020.

0: सफर में एक अहम संग मील है। वजीर आजम ने कहा कि काबीना से मंजूर शुदा जमीन की सतह के करीब के कोयले और लिग्नाइट से गैस की पैदावार के प्रोजेक्टों को फरोग देने की स्कीम तवानाई की यकीनी फराहमी को मजीद मुस्तहकम करेगी, सरमायाकारी में इजाफा करेगी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करेगी। मरकजी तहकीकती ब्यूरो यानी CBI ने नीट UG 2026 इम्तहान से मुताल्लिक मुबैना बेजाबतगियों और पेपर लीक के मामले में 5 मुलजिम अफराद को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 5 मुलजिमों में से 3 का ताल्लुक जयपुर, 1 गुरुग्राम और 1 का ताल्लुक नासिक से है। फिलहाल मुतअद्दिद दिगर मुश्तबा अफराद की जांच की जा रही है। एजेंसी ने आज मुल्क भर के मुख्तलिफ मकामात पर भी तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। तलाशी और गिरफ्तारी के दौरान एजेंसी ने मोबाइल फोन समेत मुतअद्दिद काबिल एतराज अशिया और इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त किए हैं। एजेंसी राजस्थान के खसूसी ऑपरेशंस ग्रुप के साथ भी मिलकर कार्रवाई कर रही है, जिसने मामले की शुरुआती जांच की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम ने मोदी जुमे को मुत्तहिद अरब अमारात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में आज शाम मीडिया को तफसील बताते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने मुत्तला किया कि अपने दौरे के पहले मरहले के तहत जनाब मोदी जुमे के रोज UAE पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात के साथ साथ खास तौर से तवानाई के सिलसिले में इश्तराक समेत बाहमी मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक 5 मुल्कों का दौरा करेंगे, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात और 4 यूरोपीय ममालिक नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली शामिल हैं। वजीर आजम के दौरे का आगाज 15 मई से होगा, जिसके तहत वो UAE पहुंचेंगे, जहां वो UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात के साथ साथ तवानाई में इश्तराक पर बाहमी बातचीत करेंगे।
0: जनाब जॉर्ज ने कहा कि अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत वजीर आजम उसी दिन नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इस दौरान जनाब मोदी शाह विलियम अलेक्जेंडर और मलका मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम रॉब जेटन्स के साथ बातचीत करेंगे। अपने दौरे के तीसरे मरहले के तहत जनाब मोदी इतवार के रोज स्वीडन पहुंचेंगे। वजीर आजम ने मोदी की ईंधन के इस्तेमाल में कमी की अपील का गहरा असर देखने में आया है, जिसके नतीजे में पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम किया जा रहा है। वजीर आजम ने इसकी नजीर कायम करते हुए खुद अपने काफिले का हजम नुमाया तौर पर कम किया, जिसके बाद BJP के कई वज़रा आला और दिगर रहनुमाओं ने भी इस तर्ज अमल को अपनाया। वजीर आजम की अपील को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सरकारी गाड़ियों के काफिले में फौरी तौर पर 50% कमी करने की हिदायत दी है। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने भी ऐलान किया कि वो अपने काफिले में कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे और अपने वजीरों को भी ऐसा करने को कहा है। उन्होंने आवाम को सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की भी तरगीब दी। मगरबी एशिया में जारी तनाजे के दौरान वजीर आजम ने इतवार को आवाम से पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल में कमी लाने और जरे मुबादला की बचत के लिए सरकारी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की थी। वजीर आजम ने मोदी ने हरियाणा के बल्दियाती इंतखाबात में BJP की कामयाबी पर अवाम का शुक्रिया अदा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस जीत ने एक बार फिर वाजे कर दिया है कि अवाम ने तरक्की और बेहतर हुक्मरानी की पॉलिसियों पर अपना मुसलसल एतमाद जाहिर किया है। वजीर आजम ने कहा कि ये कामयाबी इस बात की भी अलामत है कि हरियाणा के अवाम रियासत की डबल इंजन हुकूमत पर भरपूर एतमाद रखते हैं। वजीर आजम ने उन तमाम पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद दी, जिन्होंने BJP की इस कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फलों, सब्जियों, तिलहन, गजाई अजनास, मवेशियों के इस्तेमाल की अशिया और दिगर लाजमी मसनूआत की बैन रियासती नकल व हरकत पर तमाम पाबंदियां हटा दी हैं। साबिक TMC हुकूमत ने इन अशिया पर पाबंदी आयद की थी। इख्तदार में आने से कबल BJP ने किसानों को पाबंदियां हटाने की यकीन दहानी कराई थी। दूसरी तरफ एक अहम कदम उठाते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत ने टीचरों, म्यूनिसपैलिटी और कोऑपरेटिव की भर्ती में हुए घोटाले के मामलों को मरकजी तहकीकती ब्यूरो CBI के हवाले करने का फैसला किया है।

0: वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने आज टीएमसी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि उसने बदउनवान अफसरों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए इन मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की। हुकूमत ने उन अफराद की मुलाजमत भी खत्म कर दी है जिन्हें टीएमसी हुकूमत ने रिटायरमेंट के बाद मुलाजमत दी थी। आसाम हुकूमत इस माह की 26 तारीख को रियासती असम्बली में यकसां सिविल कोड यूसीसी बिल पेश करेगी। वजीर आला हेमंत बिस्व सरमा ने नई मुद्दतेकार की पहली काबीना मीटिंग की सदारत के बाद सहाफियों से गुफ्तगु करते हुए इसका ऐलान किया। जनाब सरमा ने कहा कि आसाम असम्बली का खसूसी इजलास 21 से 26 मई तक मुनाकिद होगा जिसके दौरान 9 मुंतखब अरकान असम्बली हलफ लेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि यकसां सिविल कोड बिल असम्बली इजलास के आखिरी दिन पेश किया जाएगा। इस इकदाम के साथ आसाम उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसां सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बन जाएगी। मणिपुर में आज सुबह तकरीबन 10:10 पर नामालूम मुसल्ला अफराद ने 2 बोलेरो गाड़ियों पर फायरिंग कर दी जिसके नतीजे में 3 अफराद हलाक और 4 दिगर जख्मी हो गए। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि अमरीका में स्मिथसोनियन के नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट से चुराए गए 3 भारतीय नवादरात की वतन वापसी का मकसद भारत के सकाफती विरसे की हिफाजत है। नई दिल्ली में इन तारीखी नवादरात की वापसी के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि ये कुछ अजायब घरों में अखलाकी उसूलों को मजबूत बनाने के लिए भारत के अज़्म को जाहिर करती है।
1: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के अपने हमनसब शी जिनपिंग के साथ सरबराह मुलाकात के लिए आज बीजिंग पहुंचे हैं। कल शुरू होने वाली अपनी 2 रोजा बातचीत के दौरान इम्कान है कि दोनों रहनुमा ईरान के साथ जंग, ताइवान को अमरीकी हथियारों की फरोख्त, तिजारत और मसनूई जहानत समेत अहम मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमा दुनिया की 2 सबसे बड़ी मईशतों के दरमियान महसूलात और बढ़ती इकतसादी और तकनीकी कशीदगी पर भी बातचीत कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग में आज गांधीनगर में एशियन सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 तमगे जीते जिसमें चांदी और कांसे का एक एक तमगा शामिल है। ज्ञानेश्वरी ने 53 किलोग्राम स्नैच जुमरे में चांदी का तमगा जीता और फिर मजमूई तौर पर 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांसे का तमगा अपने नाम किया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत ने बैंकॉक में मुनाकिदा सिंगल्स मुकाबलों के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। काबीना ने कोयले और लिग्नाइट को गैस में तब्दील करने से मुतालिक 37,500 करोड़ रुपये मालियत के प्रोजेक्टों को फरोग दिए जाने की भी मंजूरी दी है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 के पेपर लीक के सिलसिले में 5 अफराद को हिरासत में लिया है। मुख्तलिफ रियासतों में छापों की कार्रवाई जारी है। वजीर आजम मोदी ने अपने काफिले से गाड़ियों की तादाद को कम कर दिया है जिसके बाद बीजेपी के वज़ीर आला और दिगर रहनुमाओं ने अखराजात को कम करने से मुतालिक इकदाम किए हैं। और वेट लिफ्टिंग में गांधीनगर में एशिया सीनियर चैंपियनशिप में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने चांदी और कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
2: चर्चा का विषय है।
3: दुनिया की नब्ज पश्चिमी एशिया के तेल कुओं की धड़कनों से जुड़ी है। जब इन धड़कनों में युद्ध का शोर सुनाई देने लगे तो वैश्विक बाजार की सांसें फूलने लगती हैं। लाल सागर की लहरों से लेकर तेल के टैंकरों के बदलते रास्तों तक आज एक बार फिर दुनिया ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की अस्थिरता के मुहाने पर खड़ी है। जब हॉर्मुज की जलधारा में हलचल होती है तो दिल्ली, मुंबई और हर भारतीय शहर की सड़कों

0: पर उसकी गूंज सुनाई देती है। लेकिन 2026 का भारत कल की तुलना में कहीं अधिक सजग है। आज हम केवल तेल के दाम गिरने का इंतजार नहीं करते, बल्कि ऊर्जा के नए विकल्पों और सामरिक भंडारों से अपनी सुरक्षा की दीवार ऊंची कर रहे हैं। नमस्कार, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक के साथ मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिम एशिया संकट और ऊर्जा बाजार, उभरती चुनौतियों के बीच भारत की तैयारियों पर। आज के कार्यक्रम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत पश्चिम एशिया के इस झटके को सहने के लिए तैयार है और कैसे हमारी एनर्जी डिप्लोमेसी वैश्विक राजनीति के नए समीकरण लिख रही है। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व सीएमडी ओएनजीसी के सुभाष कुमार और ऊर्जा विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
2: थैंक्स आनंद।
0: सुभाष जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% आयात करता है। जो इस समय हॉर्मूज की मौजूदा स्थिति है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि भारत की जो सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है, जिसमें रूस, इराक और अमेरिका के बीच जो संतुलन भी है, कितना प्रभावी सिद्ध हो रही है?
2: आनंद जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। एक्चुअली आज के दिन में भारत जो है अपनी सप्लाई के लिए हॉर्मूज पे ओवरली डिपेंडेंट है। इनफैक्ट यदि हम तेल का देखें तो लगभग 80% से ऊपर वो हॉर्मूज से आता है और 40-50% तो गल्फ स्टेट से आता है। एलपीजी का भी इसी हिसाब से देखें तो लगभग सारी एलपीजी इस प्रॉब्लम से पहले गल्फ स्टेट से ही आती थी। तो अब इस हालात में एक्चुअली जो एनर्जी एक का चीज है, एक और एक एस्पेक्ट है कि इस क्षेत्र में, खाड़ी क्षेत्र में, ना केवल एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे लगभग 1 करोड़ इंडियंस भी रहते हैं और जो कि इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज रिमिट करते थे। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिए हैं उसमें उन्होंने जो क्रूड जो सोर्सिंग है वो डाइवर्सिफाई की है और इस डिफिकल्ट सिचुएशन में किसी तरह मॉलिक्यूल्स पे की सप्लाई को कंटिन्यू करने के लिए अमेरिका, लैटिन अमेरिका, रशिया और अफ्रीका से भी तेल जो है इंपोर्ट किया है। तो ये जो सारा एक्शन है ये अभी तक काफी सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि यदि पूरा इफेक्ट इस डिसरप्शन का पड़ता तो शायद सिर्फ इसके भरोसे एक्चुअली इंडिया में तेल और तेल के प्रोडक्ट्स की किल्लत हो सकती थी।
0: पश्चिम एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि रोजमर्रा के जीवन में वो कैसे बदलाव लाकर इस संकट के समय देश और सरकार को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या अपील की है।
3: मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। जिनके पास कार है वे एक गाड़ी में ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलें, जिनके पास ईवी है वे भी दूसरों की मदद के लिए आगे आएं। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। साथियों, सिर्फ ईंधन ही नहीं, खाने के तेल पर भी देश की बड़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है। अगर हम थोड़ा संयम बरतें, तेल की खपत कम करें खाने के तेल की, तो इससे देश और हमारी शहर दोनों को लाभ होगा।
0: नरेंद्र जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी बात ऊर्जा की होती है और भविष्य की तरफ हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजिक रिजर्व यानी एसपीआर की भी चर्चा होती है और कई सारे मंत्रालय की तरफ से ये बयान दिया गया कि भारत के पास 74 दिन, 80 दिन, 60 दिन के आसपास का रिजर्व है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम विश्लेषण के नजरिए से देखें तो विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पादूर में भारत ने जो अपने नए रिजर्व की खोज की है, क्या आपको लगता है कि अगर युद्ध लंबा चला तो भारत के लिए ये 3 सेंटर्स या कुछ और सेंटर्स एनर्जी शॉक से बचाने के लिए पर्याप्त है?
1: देखिए, हमको देखना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का साइज क्या है। आज हम दुनिया की अगर जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो लार्ज इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और किसी भी अर्थव्यवस्था का, खासतौर से अगर आप विकासशील अर्थव्यवस्था है जो भारत है, उसकी जो बैकबोन होती है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो

0: ऊर्जा होती है। बिना ऊर्जा के अर्थव्यवस्था आगे नहीं बढ़ती है, और जब विकासशील अर्थव्यवस्था जैसी होगी, खासतौर से भारत जैसी, वहां ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। हमारे देश में तेल की खपत जो है वो लगभग 3.5% से 4% प्रति वर्ष बढ़ रही है, क्योंकि देश का विकास हो रहा है, क्योंकि प्रगति हो रही है, क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो जो गरीबी से बाहर आ रहे हैं, मिडिल क्लास के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी खपत बढ़ रही है। हम आज की तारीख में लगभग 57 और 58 लाख बैरल तेल प्रतिदिन उसकी हमारे यहाँ खपत है, 5.8 मिलियन रफली बैरल्स पर डे, और उसका भारी बहुत भारी मात्रा में लगभग 53 लाख बैरल हम आयात करते हैं लगभग 42 अलग अलग देशों से। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे सामने जो है दुविधा ये होती है, क्या हम जो विकास की गति है उसको रोकें, या वो लोग जिनको अभी भी और ऊर्जा की आवश्यकता है क्या उनको हम रोक सकते हैं, या किस हिसाब से हम ऊर्जा का इस तरह का प्रयोग करें जिससे कि हमारे को दिक्कत ना हो। जहां तक अब युद्ध जो है ये भारत ने तो शुरू नहीं किया, जैसे जो कोविड था, कोविड की शुरुआत चाइना से हुई थी, ये युद्ध तो फारस की खाड़ी से शुरू हुआ है, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो है सबसे बड़ी दिक्कत वहां से आ रही है। तो ऐसे में भारत जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का उपभोक्ता है, ऊर्जा का उपभोक्ता है, दूसरा सबसे बड़ा आयातक है, और भारी तेजी से जो आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो हमारे सामने चुनौती ये हो जाती है हम इसको कैसे देखें। जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की आपकी बात करी गई, स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसलिए बनाए जाते हैं कभी कोई ऐसे हालात पैदा हो जाए कि देश के अंदर जो तेल लाने में जो है डिस्ट्रप्शन हो जाए, मतलब विदेशों से तेल लाने में दिक्कत हो, तो हम उसका प्रयोग कर सकें। लेकिन हमारा इतना विशाल देश है और हम इतनी तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है कि हमारी जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व जिनको SPRs बोलते हैं वो हैं, लगभग 25 से 28 दिन के रिजर्व हमारे पास वो हैं। इसके अलावा जो तमाम रिफाइनरीज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो है ऑयल टैंक फार्म्स होते हैं, उनके अंदर भी हमेशा क्रूड ऑयल जो है और प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम उन दोनों को जोड़ लें तो हमारे पास 50 से लेकर के 55 दिन के रिजर्व तो होते हैं। और दूसरा ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पूरी दुनिया के अंदर ऐसे अच्छे रिलेशंस हैं, खासतौर से जो तेल के निर्यातक हैं, ऊर्जा के निर्यातक हैं, कि हमने जो है कहीं ना कहीं से हम तेल का इंतजाम हो रहा है। और आज भी भारत उन गिने चुने देशों के अंदर है जहां पर पेट्रोल या डीजल की कहीं कोई किल्लत नहीं है, उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है,
1: जी
0: और दाम भी भारत में अगर आप देखें अन्य देशों के मुकाबले तो काफी हुए। तो चूंकि हमारे अच्छे रिलेशनशिप हैं, और दूसरी बात एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा, चूंकि हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल के उपभोक्ता हैं
1: जी
0: और दूसरे सबसे बड़े आयातक, हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी होती है टू सिक्योर सप्लाई। लेकिन जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, सऊदी अरब हो गया, अमेरिका हो गया, कुवैत हो गया, ईरान, इनके लिए आवश्यक होता है भारत से अच्छे संबंध रखें, क्योंकि उनकी एनर्जी सिक्योरिटी डिमांड से ताल्लुक रखती है। और डिमांड कहाँ सबसे ज्यादा पैदा हो रही है, वो भारत में। पूरी दुनिया में ऑयल की डिमांड का लीडर आज कौन है, वो भारत है, तो वो भी भारत से अच्छे संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए ये भी हमको सिक्योरिटी देता है। आपने जिक्र किया एनर्जी डिप्लोमेसी का, साथ में मैंने आपको ये बताया किस हिसाब से उनके लिए भारत एक हम बाजार है, इसलिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमारा अभी तक जो देखा जाए, अब बहुत लंबा युद्ध चलता है, डिस्ट्रप्शन बहुत बड़ा हो जाता है, वो तो भविष्य के गर्भ में है, उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। लेकिन आज के धरातल पे जब मैं देखता हूं, ठीक है, तैयारी हमको चाहिए, कंजर्वेशन हमको करना है, तेल को हमको वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन पैनिक बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है।
1: जी बिल्कुल, आपने जिस तरफ चर्चा को आगे बढ़ाया कि भारत के पास अभी पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि भारत के पास आने वाले कुछ महीनों के लिए रिजर्व मौजूद हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: Our LPG, the cylinder gas which you use in kitchens, about 60% used to come from the Strait of Hormuz. Now we had to make arrangements. I am amazed at what we were able to do. Our domestic production of LPG prior to the crisis was 35 or 36,000 metric tons per day. We ramped up our domestic production from 36 to 54,000 metric tons. This by itself is a mind-boggling thing.
1: सुभाष जी, भारत सरकार लगातार कुछ नए प्रयोग कर रही है और इसी दिशा में आज कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया कि जो कोल गैसीकरण परियोजना है उसको बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत स्वच्छ कोयला उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा और आयात पर निर्भरता कम होगी। हम सब जानते हैं कि आज के समय में जब तेल बिल्कुल अस्थिर हो गया है, उसकी कीमतें और रिसोर्सेस कम होते जा रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे विकल्पों पर हम ध्यान दे रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पहल को जो आज कोल गैसीकरण योजना को मंजूरी दी गई है?
3: जैसे कि तनेजा जी ने पहले ही बताया था कि भारत एक तेजी से विकसित होती हुई इकोनॉमी है और लगभग थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ऑयल और गैस का, तो इंडिया का जो

प्रोजेक्शन है वो एक बहुत ही तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी का है, और इकोनॉमी को यदि ग्रो करना है तो उसके लिए एक असेंशियल रिक्वायरमेंट है, वो है एनर्जी। और लकीली इंडिया में कोयले के काफी विशाल भंडार हैं, तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी पहल है कि हम कोल गैसिफिकेशन, अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज हैं उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए। बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है

0: उसको किसी तरह इकोनॉमिकली सस्टेनेबल मैनर में यूज कर पाए, बिकॉज कोल के साथ जनरली ये कहा जाता है कि उससे एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, एमिशन रेट इज वेरी हाई। बट यदि कोल गैसिफिकेशन होता है इंस्टीट्यूट, तो आपको ना तो बड़ी बड़ी खदानें खोदनी पड़ेंगी और ना ही उसका जो एमिशन है वो एक पॉइंट के बियॉन्ड जाएगा। इनफैक्ट उससे ये होगा, आपको दोनों एक टाइमली एनर्जी भी मिल जाएगी और एमिशन लेवल जो है ग्रोथ के लिए, जो इंडिया अगेन हैज कमिटेड टू कंफॉर्म विद द ग्लोबल कमिटमेंट्स टू फॉर ए क्लीन एनवायरमेंट, तो उसको भी अचीव करने में एक सहायता मिलेगी। तो इंडिया को एक्चुअली चाहे वो बायोफ्यूल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो जो पोटेंशियल सीबीजी का हो, वो सब कुछ हार्नेस करना पड़ेगा, बिकॉज हमारी आवश्यकताएं आज ही बहुत बड़ी हैं और आगे आने वाले दिनों में, जबकि हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 25 से 30 ट्रिलियन इकोनॉमी जो कि 6 गुना के बराबर होती है आज के स्तर से, तो उसके लिए ये सब तरह के साधन, और यदि डोमेस्टिक है तो ये सोने पे सुहागे की तरह है।
1: हम अपने श्रोताओं को बता दें कि कोयला गैसीकरण आपके लिए अगर नई चीज है तो ये होता क्या है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोयले को उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और पानी के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इसे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से युक्त सिनी गैस प्राप्त होती है, जिसे औद्योगिक उपयोग के लिए संसाधित किया जा सकता है। ये पहल भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत प्राकृतिक गैस, उर्वरक और रसायनों के आयात पर निर्भरता को कम कर आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाना है। इस योजना के तहत प्रोजेक्ट का चयन एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। और इसी पर और जानकारी दी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका आज फैसला लिया गया है और बहुत ही सामयिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है, कोल गैसिफिकेशन की स्कीम। इस गैस से आगे उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: नरेंद्र जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में इथेनॉल ब्लेंडिंग और ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर दिया है। क्या ये ग्रीन फ्यूल्स आने वाले समय में, चाहे शॉर्ट टर्म की ही हम बात करें, कच्चे तेल की कीमतों के झटके को सहने में हमारी मदद कर सकते हैं?
3: ये हम बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जैसे मैंने पहले कहा, और हमारी अर्थव्यवस्था जो है कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है। फॉसिल फ्यूल का मतलब हुआ तेल, गैस और कोयला, कोयला भी फॉसिल फ्यूल होता है। पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था 80% आज की तारीख में भी वो फॉसिल फ्यूल इकोनॉमी है, लेकिन क्योंकि हमारी निर्भरता तेल पे, गैस पे बहुत ज्यादा है अन्य देशों के मुकाबले अगर आप देखें तो, इसलिए हमारी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्सेज को ढूंढें जिससे हमारी आयात पर निर्भरता कम हो सके। हालांकि ये अलग बात है कि हमारी आयात पर निर्भरता एकदम कम होने वाली नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत तेजी से हमारा विकास हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत तेजी से उसका विस्तार हो रहा है, इसलिए आने वाले समय में हमारे देश में तेल की जो जरूरत है वो भी बढ़ने वाली है, गैस की भी बढ़ने वाली है और कोयले की भी बढ़ने वाली है। लेकिन साथ में जो है हमने इथेनॉल जो ब्लेंडिंग करके उसमें जो लगभग 20% पेट्रोल में भी वो किया जाता है, डीजल में नहीं किया जाता, पर उससे हमने आयात में थोड़ी सी निर्भरता जो है कम करी है। ठीक उसी तरीके से जो देश होता है वो भविष्य की तरफ भी देखता है और जिसमें हाइड्रोजन को एक ऐसी ऊर्जा माना जाना है कि आने वाले समय के अंदर जो हमारा मिशन है कि एनर्जी इंडिपेंडेंस मतलब ऊर्जा की स्वतंत्रता हमको चाहिए 2047 तक, 2047 तक, उसमें हाइड्रोजन जो है एक फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है और उसमें बड़ी भूमिका वो निभाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें जिसका भी मैंने जिक्र किया, इसका जो ये भविष्य के बारे में ज्यादा है, भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 100 साल बाद, लेकिन अभी इनको थोड़ा समय लगने वाला है, हाइड्रोजन का को भी समय लगने वाला है, लेकिन ये है कि देश उस तरफ बढ़ रहा है। लेकिन जो सबसे जरूरत चीज ये है वो है कि इस समय हमारी सरकार की कोशिश कि जो ऊर्जा की

0: गरीबी के नीचे के लोग हैं उनको कैसे ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए, उसके तहत एलपीजी हर एक को दी गई उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत। साथ में भी ये कोशिश है कि जो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो या वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो या जो हमारी ऊर्जा एनर्जी की आवश्यकता है उसके लिए हमको क्या करना है, क्योंकि युद्ध जो है कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, और खत्म भी हो जाएगा फिर भी उसका जो असर है हमारी अर्थव्यवस्था पर, विश्व की अर्थव्यवस्था पर, वो एक लंबे समय तक रह पाएगा। तो एक तरफ तो सरकार जो है इस बात की तैयारी कर रही है, फ्यूचर के लिए तैयारी हो रही है, भविष्य की तैयारी हो रही है, लेकिन साथ में जो वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां से जो है तेल लेके आया जा सकता है, प्राकृतिक गैस लेके आया जा सकती है, उसको लाया जा रहा है। उसके लिए दो चीजों का प्रयोग करा जा रहा है। एक तो ये कि हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, जो हमारी गुडविल है, जो G20 में हमारा दबदबा है, और इसके अलावा विकसित देशों में भी जो हमारा अच्छे संबंध है, जैसे क्वाड के अंदर है उसको साथ में, इसके अलावा ब्रिक्स के अंदर है, आपको पता है ब्रिक्स की मीटिंग भी विदेश मंत्री की जा रही है, जहां भी एक विषय रही रहने वाला है, उस सबका यूज करा जा रहा है जिससे कि जो तेल की जो सप्लाई है उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। जो इस समय सरकार का सबसे बड़ा फोकस है कि सप्लाई डिसरप्शन नहीं होना चाहिए, और भारत तो उन गिने चुने देशों में है, खासतौर से विकासशील दुनिया में या ग्लोबल साउथ में, जहां अभी तक सप्लाई का डिसरप्शन आपने नहीं देखा है, खासतौर से तेल को लेकर के। एलपीजी में थोड़ी चुनौतियां आई हैं लेकिन उसको भी काफी हद तक एड्रेस कर दिया गया है, काफी हद तक। तो मेरा ये मानना है कि हमको दो चीजें, एक तो प्रेजेंट और एक साथ में मीडियम टू लॉन्ग टर्म, और दूसरा फ्यूचर, ये तमाम चीजें जिसमें हमने जो कोल गैसिफिकेशन की बात करी, ये जो है मीडियम टारगेट्स में ज्यादा आती हैं और लॉन्ग टर्म की तैयारी में आती है कि आज से अगर 15 साल बाद, 10 साल बाद वो हालात पैदा जो आज हैं, तो हम जो है काफी हद तक उसमें बिना किसी घबराहट के उसका जो है जो सोल्यूशन है वो हम देश के अंदर ही ढूंढ पाए। देखिए, हमको ध्यान रखना पड़ेगा जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, वो आर्थिक सुरक्षा या इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बुनियाद होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद होती है। अगर आप तीनों सिक्योरिटीज को देखते हैं, सबके बॉटम में या बुनियाद में वो एनर्जी सिक्योरिटी होती है। एनर्जी के बिना कुछ नहीं मूव करता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो या समाज हो, मोहल्ला हो, शहर हो, देश हो, बिना एनर्जी के कुछ नहीं चलता। और इसलिए सरकार की पूरी कोशिश है कि दुनिया में चुनौतियां आती रहती हैं, ये तो सुनामी जैसी चुनौती है, तमाम अर्थशास्त्री इसको जो है एनर्जी कोविड के नाम से बुला रहे हैं, यूरोप में कुछ अर्थशास्त्री इसको जो है इकोनॉमिक कोविड के नाम से बुला रहे हैं, लेकिन भारत ने जिस जिम्मेदारी और मुस्तैदी से इसका जवाब दिया है, देश को तैयार किया है, और अब अगर प्रधानमंत्री की स्पीच को देखें तो प्रधानमंत्री ने आम जनता से संवाद किया है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करी है खुले प्लेटफॉर्म पर, प्रधानमंत्री के ब्रेन स्टॉर्मिंग और संवाद ये है दुनिया में ऐसा ऐसा हो रहा है और हमको उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है इतनी जरूरत ना पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री वो देश से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं खुल के, जैसे डेमोक्रेसी में होना चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं कि दुनिया के हालात क्या है और हम जो है कैसे कैसे हमने जो है इसकी तैयारी करनी चाहिए, उनके विचार जो है वो आम आदमी से साझा कर रहे हैं, इसी को लोकतंत्र कहते हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल, और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत ने काफी प्रगति की है और आने वाले वर्षों में हमें इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: ग्रीन हाइड्रोजन इज द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। ग्रीन हाइड्रोजन विल अल्टीमेटली सक्सीड वेयर देर इज लोकल डिमांड, देर इज लोकल प्रोडक्शन एंड देर इज लोकल कंजम्पशन, एंड देर आर नॉट मेनी प्लेसेज इन द वर्ल्ड एज यूनिकली क्वालिफाइड एज इंडिया इज to make that happen. We set ourselves a target of producing 5 million tons of green hydrogen annually by 2030, supported by a strong policy framework and a significant financial outlay.
1: सुभाष जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जब पश्चिमी एशिया का संकट है और दुनिया के कई देश प्रभावित हो रहे हैं और भारत भी इससे अलग नहीं है, ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आने वाले समय में आप और किस तरह की पहल की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या निजी कंपनियों की तरफ से?
3: जी, ये आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया। एक्चुअली जहां तक ऊर्जा सुरक्षा की बात है और जिस तरह का ये क्राइसिस है उसमें सबको आगे आना पड़ेगा। गवर्नमेंट जो अपने स्तर पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकती थी वो कर रही है और आगे भी करती रहेगी। अभी क्योंकि देश को आगे बढ़ना है और उसके लिए बड़ी क्लैरिटी है कि अगले 25 साल में कहां जाना है और 2070 तक कहां जाना है, वो क्लैरिटी है। तो इसके लिए मैं जो कुछ चीजें समझता हूँ कि बहुत जरूरी है, एक तो जो एनर्जी एफिशिएंसी है, टू बी एबल टू, जो एग्जिस्टिंग एनर्जी जितनी कंज्यूम हो रही है उससे जितना ज्यादा से ज्यादा वर्क या आउटपुट ली जा सके, दैट शुड बी आइटम ऑन प्रायोरिटी। जो दूसरा इशू है वो जो डोमेस्टिक एंडोमेंट्स है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उनको किसी तरह यूज करके यदि हम अपनी जो ऊर्जा की सप्लाई है उसको बढ़ा पाए। और

0: इसमें मिसाल जैसे आपने एथेनॉल की दी, मैं एक्चुअली उससे एक स्टेप और आगे जाऊंगा। सीबीजी एक ऐसा पोटेंशियल है जो आइडेंटिफाइड है और 15 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सतत प्रोग्राम एनविसेज किया था। टोटल पोटेंशियल जो है वो लगभग 62 मिलियन टन का है। तो अब क्योंकि इस तरह की स्थिति में वो एक एरिया होगा जहां हम ट्रिगर करें और जो सीबीजी का पूरा पोटेंशियल है उसके यूज करें, और ये सबसे लो कॉस्ट ऑप्शन होगा फॉर द रीजन के सारा कंट्री लकीली सीजीडी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तो आपको सेपरेट सप्लाई चेन्स नहीं बनानी है, सप्लाई चेन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। यदि आप डोमेस्टिक सप्लाई को बढ़ा सकते हैं तो देश को ही जो किसान है और जो गांव है हमारे, क्योंकि सीबीजी लार्जली उन एरियाज में प्रोड्यूस होगी, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक साधन बनेगा। तीसरा जो है, जो देश में बाकी जितने साधन है, चाहे वो जो हाइड्रोजन की बात हो रही है, आपकी सोलर की बात है, या इवन थर्मल पावर की बात है, सब जो है वो इस टाइम ट्रिगर करने के लिए एक दीर्घकालीन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि आगे कोई इस तरह का डिसरप्शन आता है। ऑफ कोर्स इस बार भी इंडिया ने उसको बड़ा बखूबी फेस किया है, पर क्योंकि आने वाले समय में 10 साल बाद लेट से यदि इकोनॉमी 2.5-3 गुना हो जाती है, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम से कम दुगनी होगी, और यदि वो दुगनी होगी तो आप डोमेस्टिकली कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं वो होना चाहिए। और एक जो बात है, जो पिछले कुछ सालों में अच्छा भला देश ने काफी ऑयल और गैस प्रॉपर्टीज भी काफी एक्वायर की थी दुनिया में, और वो एक बहुत बड़ा कुशन की तरह काम कर सकती है। तो हमें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोशिश करिए कि आपका अपने रिसोर्सेज हो, पर यदि वो बाई चांस आपके वो एडिक्वेट नहीं है तो कोशिश कीजिए कि एटलीस्ट आपको ग्लोबली इतनी ओनरशिप है कि जब जरूरत पड़े तो आप इंडिया को भेज सकें। तो
1: जी
0: और कोल गैसिफिकेशन तो एक बहुत ही बढ़िया कदम है जो उठाया जा रहा है, और यदि इसका ही भी पोटेंशियल और कंट्रीब्यूशन काफी रहेगा,
1: जी
0: तो मैं
1: बिल्कुल
0: सोचता हूँ ये 4-5 चीजें डेफिनेटली गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में होंगी, और काम ऑलरेडी चल रहा है तो ये काफी कंट्रीब्यूट करेंगी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ।
1: और हम बात कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा की और देशवासियों की चिंताओं को लेकर लगातार अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि भारत की क्या स्थिति है ऊर्जा को लेकर।
2: वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते, जैसा आप जानते हैं कि ऊर्जा आपूर्ति वर्ल्ड सप्लाइड डिसरप्शंस हुए हैं ऊर्जा आपूर्ति में, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी प्राइस वॉलेटिलिटी देखी जा रही है, परंतु भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि आम उपभोक्ता को कम से कम असुविधा के साथ फ्यूल सप्लाई की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। और इन सभी जो स्टेप्स लिए हैं उनके फलस्वरूप हमारी क्रूड इन्वेंट्री मेंटेन है, टाइड अप है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट कर रही है, किसी रिटेल आउटलेट पर कोई ड्राई आउट नहीं है, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर भी कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त स्टॉक्स अवेलेबल हैं, और घरेलू कुकिंग के लिए एलपीजी की आपूर्ति की जा रही है।
1: नरेंद्र जी, कार्यक्रम में समय बहुत ज्यादा नहीं है, आपसे एक सवाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपसे चाहेंगे कि तेल की कीमतों में जो अस्थिरता का असर हो रहा है भारतीय रुपए और करंट अकाउंट डेफिसिट पर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि तेल व्यापार के लिए रुपया पेमेंट मैकेनिज्म, जिसकी चर्चा कुछ समय से चल रही है, इसको और प्रभावी बनाने से कुछ राहत मिल सकती है?
3: नहीं, अच्छा प्रश्न है और काफी इसकी चर्चा भी है, लेकिन ये जो हमारे जो कुल मिला के संबंध है पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों से, उस पर डिपेंड करेगा हम उसको कैसे बैलेंस करते हैं। अमेरिका से हमारे बड़े अच्छे संबंध है, सामरिक संबंध है और लॉन्ग टर्म संबंध है, हम क्वाड के मेंबर हैं और अमेरिका को हम चाहते हैं या ज्यादा और निवेश करे, और वो जो फ्री वर्ल्ड जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, उसका अमेरिका काफी उसमें दबदबा है, और अमेरिका जो है वो पेट्रो डॉलर को मजबूत रखना चाहता है, वो बड़ी आपत्ति करता है अगर कोई लोकल करेंसीज में तेल खरीदता है, लेकिन हमको अपने राष्ट्रीय हित देखने हैं, और पिछले दिनों को हमने रूस के साथ तमाम जो डील हुई है उसमें रुपए की बड़ी भूमिका रही है, और इस तरीके की बातचीत कुछ अन्य देशों से भी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमको बैलेंस बना के चलना होता है राजनीति के अंदर, क्योंकि तेल के बारे में कहा जाता है तेल 90% जियोपॉलिटिक्स है, तो उसमें हमको उसको भी बैलेंस रख के चलना है, लेकिन साथ साथ मुझे लगता है आवश्यक हमारे लिए यह है कि हम एक लॉन्ग टर्म जो हमारा प्लान रहेगा उस पर और थोड़ा जोर डालें, देश के

0: अंदर जो तेल का खनन है, उत्पादन है, उसको और इंसेंटिवाइज करें, विदेशों में जाकर के जहां भी तेल के भंडारों में हम हिस्सेदारी खरीद सकते हैं उसको थोड़ा और एग्रेसिवली खरीदें, और साथ में जो रिन्यूएबल एनर्जी को हम काफी जोर दे ही रहे हैं, लेकिन हमको ये भी साथ में समझना पड़ेगा कि हमारी देश का जो प्रगति है, जो हमारा विकास, उससे तो हम समझौता कर नहीं सकते, और आने वाले समय के अंदर हमें और तेल की जरूरत पड़ेगी हमारी अर्थव्यवस्था को, और गैस की भी जरूरत पड़ने वाली है, और ये सारा कुछ सौभाग्य से हमारे आसपास के देशों में उपलब्ध है, खासतौर से खाड़ी के देशों में। एक नया वेस्ट एशिया बनेगा, ये जब भी युद्ध समाप्त होता है ईरान की अर्थव्यवस्था शायद खुलेगी, यूनाइटेड अरब एमिरेट से जो है वहां नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, सऊदी अरब का रवैया जो बड़ा कड़ा रहा है वो थोड़ा नरम पड़ेगा, तो मुझे लगता है हमारे देश के आसपास ही नई संभावनाएं जो है उनका शीघ्र जन्म होगा, और हमको देखना पड़ेगा क्या वहां से हम पाइपलाइन बना सकते हैं, या हम अपने एलएनजी टैंकर बना सकते हैं, अपने टैंकर्स बना सकते हैं, बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो मुझे लगता है युद्ध तो है, लेकिन युद्ध में हमको देखना है कि अवसर क्या है, और हमारे इतने अच्छे संबंध हैं तमाम देशों से जो तेल के बड़े निर्यातक हैं, और साथ में हमारी जो भारत की जो लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है,
1: जी
0: अपने विजन में बिल्कुल क्लियर है, तो मुझे लगता है कि हमको चिंता का विषय नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि समय के साथ साथ जरा थोड़ा हमको इस दिशा में खासतौर से एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ थोड़ा और स्मार्टली और तेजी से बढ़ना पड़ेगा।
1: जब हमारे आपके परिवार पर संकट आता है तो हम अपने अभिभावकों की तरफ देखते हैं और उनके दिशा निर्देशों का पालन करना जरूरी समझते हैं। जब पश्चिम एशिया में संकट है तो भारत के प्रधान सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है कि वो टीम इंडिया की तरह एकजुट होकर इसका सामना करें। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: कहते हैं संकट ही समाधान की जननी है। पश्चिम एशिया की ये चुनौतियां भारत को याद दिलाती हैं कि हमारा रास्ता आत्मनिर्भरता की ओर ही जाता है। चाहे वो हमारी सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां हों, रेलवे का सोलर विजन हो, या फिर रेगिस्तानों के नीचे छुपा हमारा सामरिक तेल भंडार, भारत अपनी सुरक्षा की कहानी खुद लिख रहा है। पश्चिम एशिया की रेत में भले ही हलचल हो, लेकिन भारत का संकल्प अडिग है। हम न केवल इस संकट से उभरेंगे बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह भी दिखाएंगे। सुभाष जी आपका, नरेंद्र जी आपका, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू,
3: धन्यवाद।
1: आप ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
4: चर्चा का विषय है।

आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव के 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज़ पर आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

थानेदार फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे पंकज उधास और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार थे अनजान और संगीतकार बप्पी लहिड़ी। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं पंकज उधास की आवाज़ में। फिल्म का नाम है नाम। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हम आपको सुनवा रहे हैं अमित कुमार और अलका याग्निक की आवाज़ में नरसिम्हा फिल्म का गीत। गीत

0: और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, लेकिन एक अंतराल के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: ऐ मेरी हमराह मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म यलगार का, उदित नारायण और सपना मुखर्जी की आवाज़ में। गीतकार हैं सुदर्शन फकीर और

बाहर आने तक फिल्म से अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे, अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास और साथी की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं इब्राहिम इश्क ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

0: बाहर आने तक फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। अनुराधा पौडवाल, पंकज उधास और साथी की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे इब्राहिम इश्क ने और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। मीडियम वेव के 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और इसके तुरंत बाद 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे, बस थोड़ी ही देर में।
1: अर्थात

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन

0: उनको इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the government has increased the MSP of kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera semi-high-speed double-line project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price MSP for kharif crops for the marketing season 2026-27 will ensure that growth